0: घाट एक व्यवस्थित आधार बन गए।
1: लेकिन भातखंडे जी का काम केवल वर्गीकरण तक सीमित नहीं था, उन्होंने संगीत के सिद्धांत और व्यवहार के बीच पुल बनाने का काम किया। भारतीय संगीत के प्राचीन ग्रंथों में संगीत का विशाल शास्त्रीय साहित्य मौजूद था। दूसरी ओर अपने समय के संगीतज्ञ व्यवहार में संगीत की अलग अलग परंपराएं निभा रहे थे। भातखंडे जी ने दोनों संसारों को साथ रख कर देखा।
0: उन्होंने पुराने संस्कृत ग्रंथों का अध्ययन किया, उन्होंने प्राचीन संगीत परंपराओं को समझने का प्रयास किया, साथ ही उन्होंने जीवित संगीतज्ञों से सीखा कि वास्तव में उनके समय में राग कैसे गाए जा रहे हैं। इसका परिणाम ये हुआ कि वे केवल पुस्तकालय के विद्वान नहीं बने और न केवल मंच के संगीतज्ञ,
1: वे शोधकर्ता भी थे, संगीत शास्त्री भी थे, शिक्षक भी थे और संगीत के दस्तावेजीकरण के अग्रदूत भी। उनका काम हमें ये बताता है कि परंपरा को बचाने का अर्थ उसे केवल अतीत में रख देना नहीं है, परंपरा को बचाने का अर्थ है उसे समझना, उसके मूल तत्वों को पहचानना और उसे आने वाली पीढ़ी तक पहुंचने योग्य बनाना। भातखंडे जी ने यही किया।
0: उन्होंने अपने अध्ययन और यात्राओं के आधार पर अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथ तैयार किए। उनकी प्रमुख कृतियों में हिंदुस्तानी संगीत पद्धति और क्रमिक पुस्तक मालिका का विशेष महत्व है। हिंदुस्तानी संगीत पद्धति 4 खंडों में प्रकाशित हुई, जबकि क्रमिक पुस्तक मालिका 6 भागों में विस्तृत हुई। इन ग्रंथों में रागों के सिद्धांत के साथ साथ अनेक रचनाओं को स्वरलिपि में दर्ज किया गया।
1: आज भी ये पुस्तकें हिंदुस्तानी संगीत के अध्ययन में महत्वपूर्ण संदर्भ मानी जाती हैं। यहाँ एक दृश्य की कल्पना कीजिए। एक ओर गुरु अपने शिष्य को बंदिश सिखा रहा है और दूसरी ओर कोई व्यक्ति उसी परंपरा को ध्यान पूर्वक सुनकर कागज पर दर्ज कर रहा है। एक व्यक्ति संगीत को अगली पीढ़ी तक आवाज के माध्यम से पहुंचा रहा है, दूसरा व्यक्ति उसी संगीत की स्मृति को शब्द और स्वर के माध्यम से स्थायी बना रहा है। भातखंडे जी की भूमिका कुछ ऐसी ही थी।
0: उन्होंने कलाकारों के अनुभव को विद्वानों के अध्ययन से जोड़ा, उन्होंने परंपरा को पुस्तक से जोड़ा, उन्होंने मौखिक ज्ञान को लिखित ज्ञान से जोड़ा और सबसे महत्वपूर्ण, उन्होंने संगीत को केवल कुछ परिवारों या घरानों तक सीमित रहने के बजाय व्यापक शिक्षा व्यवस्था में पहुंचाने की दिशा में काम किया।
1: यहीं से उनकी दृष्टि का एक और महत्वपूर्ण पक्ष सामने आता है, संगीत शिक्षा का लोकतंत्रीकरण। उनके समय में शास्त्रीय संगीत सीखना मुख्यतः गुरु शिष्य परंपरा और संगीतज्ञ परिवारों तक सीमित था। ये व्यवस्था अपनी जगह अत्यंत प्रभावशाली थी, लेकिन समाज के हर व्यक्ति को उसमें प्रवेश मिलना आसान नहीं था। भातखंडे जी चाहते थे कि संगीत की शिक्षा व्यवस्थित संस्थानों में उपलब्ध हो। इसी विचार ने संगीत महाविद्यालयों और पाठ्यक्रमों की दिशा को प्रभावित किया।
0: लखनऊ में 1926 में मॉरिस कॉलेज ऑफ म्यूजिक की स्थापना हुई। इसमें राय उमानाथ बली और राय राजेश्वर बली जैसे सहयोगियों की महत्वपूर्ण भूमिका थी और भातखंडे ने संगीत के पाठ्यक्रम तथा शैक्षणिक व्यवस्था को आकार देने में निर्णायक योगदान दिया। बाद में यही संस्था भातखंडे के नाम से जानी गई और आज भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हो चुकी है।
1: लखनऊ का ये संस्थान केवल एक इमारत नहीं था, ये उस विचार का प्रतीक था कि संगीत को भी गंभीर शैक्षणिक अनुशासन के रूप में पढ़ाया जा सकता है, कि संगीत केवल मनोरंजन नहीं, संगीत अध्ययन का विषय है, संगीत शोध का विषय है, संगीत में व्याकरण है, संगीत में इतिहास है, संगीत में सौंदर्य शास्त्र है और संगीत में ज्ञान की एक पूरी परंपरा है।
0: भातखंडे जी ने इसी सोच को संस्थागत रूप दिया। उन्होंने ग्वालियर और बड़ौदा जैसे केंद्रों में भी व्यवस्थित संगीत शिक्षा के विकास में योगदान दिया। उनकी दृष्टि में विद्यार्थियों को केवल राग गाना नहीं चाहिए, उसे यह भी समझना चाहिए कि राग की संरचना क्या है, ताल क्या है, स्वर का संबंध क्या है, रचना की प्रकृति क्या है, परंपरा का इतिहास क्या है, और सबसे महत्वपूर्ण जो वह गा रहा है उसके पीछे का ज्ञान क्या है। यही वह दृष्टि थी जिसने संगीत शिक्षा को एक नए आयाम तक पहुंचाया।
1: भातखंडे का एक और महत्वपूर्ण योगदान था संगीत के अलग अलग प्रवाहों के बीच संवाद। भारत में हिंदुस्तानी और कर्नाटक दोनों महान शास्त्रीय संगीत परंपराएं हैं। दोनों की अपनी भाषा है, अपनी संरचना है, अपनी परंपराएं हैं और अपना सौंदर्य है।
0: भातखंडे जी ने इन परंपराओं को एक दूसरे से समझने और संवाद करने की दिशा में भी प्रयास किए। उन्होंने संगीत सम्मेलनों की परंपरा को बढ़ावा दिया, जिससे अलग अलग क्षेत्रों और संगीत प्रणालियों के कलाकारों को संवाद का अवसर मिला। ये विचार आज के समय में और भी महत्वपूर्ण लगता है,
1: क्योंकि किसी कला को मजबूत बनाने का एक रास्ता ये नहीं है कि वो स्वयं को बंद कर ले, बल्कि ये है कि वो अपनी पहचान को बनाए रखते हुए दूसरे अनुभवों से संवाद करे। भातखंडे की दृष्टि में शोध का अर्थ केवल पुराने ग्रंथ पढ़ना नहीं था, शोध का अर्थ था सुनना, प्रश्न करना, तुलना करना, यात्रा करना, कलाकारों से मिलना, परंपराओं को समझना और फिर निष्कर्ष निकालना। इस दृष्टि से वे अपने समय से आगे दिखाई देते हैं।
0: आज हम जिस शब्द का बहुत इस्तेमाल करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन यानी दस्तावेजीकरण, भातखंडे जी ने उस काम को एक सदी से भी पहले गंभीरता से किया। आज हमारे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग है, वीडियो है, डिजिटल आर्काइव है, क्लाउड स्टोरेज है,
1: लेकिन उस समय कागज, कलम और कान और उनका असाधारण धैर्य ही उनके सबसे बड़े साधन थे। उन्होंने संगीत को सुनकर लिखा, लिखकर व्यवस्थित किया, व्यवस्थित करके प्रकाशित किया और प्रकाशित करके विद्यार्थियों तक पहुंचाया। ये यात्रा भातखंडे जी की सबसे बड़ी विरासतों में से एक है।
0: उनकी निजी जिंदगी में भी ऐसे क्षण आए जिन्होंने उनके जीवन की दिशा बदल दी। सन 1900 में उनकी पत्नी का निधन हुआ और 1903 में उनकी बेटी भी नहीं रही। इन निजी आघातों के बाद उन्होंने अपने जीवन को लगभग पूरी तरह संगीत अध्ययन और संगीत सेवा के लिए समर्पित कर दिया। कभी कभी जीवन के सबसे बड़े दुख मनुष्य को उस काम की ओर धकेल देते हैं जिसे वह भीतर से अपना मानता है।
1: अब वो समय आ गया था जब भातखंडे जी के लिए स्वयं के लिए संगीत से इतर कोई दृष्टि नजर नहीं आ रही थी। संगीत और सिर्फ संगीत जीवन का उद्देश्य बन गया और इसके बाद उनके जीवन का बड़ा हिस्सा यात्रा, अध्ययन, लेखन और संगीत के पुनर्गठन में बीता। उन्होंने अनेक बंदिशें एकत्र की, अलग अलग घरानों की परंपराओं को समझा, पुराने ग्रंथों का अध्ययन किया, तब एक नई चुनौती उनको महसूस हुई।
0: अलग अलग घरानों में एक ही राग के रूप, बंदिश और प्रस्तुति में भी अंतर मिल सकता था। भातखंडे जी को इन विविधताओं के बीच से संगीत का एक व्यवस्थित व्याकरण निकालना था। ये किसी एक दिन का काम नहीं था, ये दशकों की साधना थी और यही कारण है कि उनके योगदान को केवल 10 थाट देने वाले व्यक्ति के रूप में देखना उनके काम को छोटा कर देना होगा।
1: थाट उनकी विरासत का केवल एक हिस्सा है, उनकी असली विरासत है एक विशाल, जीवंत और विविध संगीत परंपरा को व्यवस्थित ढंग से समझने का प्रयास। उनकी असली विरासत है स्वर लिपि, उनकी असली विरासत है

0: कलाकारों के नाम से याद करते हैं। तानसेन का नाम लेते हैं, उस्ताद बड़े गुलाम अली खां को याद करते हैं, पंडित भीमसेन जोशी को याद करते हैं, पंडित रविशंकर को याद करते हैं, लता मंगेशकर, कुमार गंधर्व, उस्ताद अमीर खां, ऐसे असंख्य कलाकारों की आवाजें हमारी सांस्कृतिक स्मृति का हिस्सा हैं।
1: लेकिन कलाकारों की उपलब्धियों के पीछे एक पूरी ज्ञान परंपरा भी होती है। उसे लिखने वाले लोग होते हैं, उसे संकलित करने वाले लोग होते हैं, उसे पढ़ाने वाले लोग होते हैं, उसे संस्थागत रूप देने वाले लोग होते हैं।
0: पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी उसी परंपरा के महान व्यक्तित्व थे। वे मंच पर खड़े होकर अपने नाम की लोकप्रियता के पीछे नहीं भागे। उन्होंने उस संगीत की नींव मजबूत करने का काम किया जिसे आने वाली पीढ़ियां मंच पर प्रस्तुत करेंगी। इसीलिए उन्हें संगीत का वास्तुकार कहना असंगत नहीं होगा।
1: एक वास्तुकार स्वयं हमेशा उस भवन के भीतर दिखाई नहीं देता, लेकिन भवन की संरचना उसके विचारों को व्यक्त करती है। भातखंडे जी भी कुछ ऐसे ही थे।
0: आज यदि संगीत का विद्यार्थी रागों को एक व्यवस्थित प्रणाली में पढ़ता है तो उसमें भातखंडे की छाप है। यदि विद्यार्थी बंदिश को स्वर लिपि में पढ़कर अभ्यास करता है तो उसमें भातखंडे की छाप है। यदि संगीत के पाठ्यक्रम में सिद्धांत और व्यवहार दोनों साथ पढ़ाए जाते हैं तो उसमें भातखंडे की दृष्टि दिखाई देती है।
1: यदि संगीत के पुराने ज्ञान को पुस्तकों में सुरक्षित देखकर हम आज उसका अध्ययन कर पा रहे हैं तो उसमें भातखंडे की तपस्या का अंश है, और शायद इसी कारण उनके योगदान को समझना आज भी जरूरी है। क्योंकि हम जिस डिजिटल युग में जी रहे हैं उसमें सूचना को सुरक्षित करना पहले से आसान है, लेकिन ज्ञान को सही रूप में सुरक्षित करना अभी भी उतना ही कठिन है। एक वीडियो बना लेना दस्तावेजीकरण नहीं है, एक ऑडियो रिकॉर्ड कर लेना भी पर्याप्त नहीं है।
0: दस्तावेजीकरण का अर्थ है संदर्भ को समझना, कलाकार को समझना, परंपरा को समझना, उसके स्रोत को दर्ज करना, उसकी विविधताओं को सुरक्षित रखना और उसे ऐसी व्यवस्था में रखना कि भविष्य का विद्यार्थी उसे समझ सके। भातखंडे जी का काम हमें इस गंभीर दस्तावेजीकरण की प्रेरणा देता है।
1: अगर आप संगीत के विद्यार्थी नहीं हैं, सिर्फ शौकिया तौर पर भी जब आप भातखंडे जी की लिखी संगीत की किताबें पढ़ते हैं तो आप संगीत को समझने में मुश्किलों का सामना नहीं करते। बस यही समझ आती है भातखंडे जी की अथक लगन और मेहनत।
0: क्या केवल ये कह देना पर्याप्त है कि हमारी संस्कृति महान है? नहीं, महान संस्कृति को महान बनाए रखने के लिए मेहनत भी करनी पड़ती है। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी ने यही किया।
1: उनकी कहानी हमें एक और बात सिखाती है, कला केवल कलाकार की नहीं होती, कला के पीछे समाज होता है, गुरु होते हैं, शिष्य होते हैं, शोधकर्ता होते हैं, और वे लोग भी होते हैं जो चुपचाप अपना पूरा जीवन इस बात में लगा देते हैं कि कला का ज्ञान नष्ट ना हो। भातखंडे जी ऐसे ही व्यक्ति थे।
0: उनका जीवन हमें ये बताता है कि किसी विरासत को बचाने के लिए केवल भावुक होना पर्याप्त नहीं, उसके लिए अनुशासन चाहिए, अध्ययन चाहिए, जिज्ञासा चाहिए और सबसे बढ़कर धैर्य चाहिए।
1: यही कारण है कि उनका नाम भारतीय संगीत के इतिहास में एक ऐसे मोड़ के रूप में दिखाई देता है जहां परंपरा ने आधुनिक शैक्षणिक संरचना से संवाद शुरू किया। हमें उस विचार को भी याद करना चाहिए जो उनके जीवन के केंद्र में था, ज्ञान को सुरक्षित करना, परंपरा को समझना और उसे सबके लिए उपलब्ध कराना। क्योंकि संगीत केवल सुनने की चीज नहीं है, संगीत एक ज्ञान परंपरा है, संगीत स्मृति है, संगीत इतिहास है, संगीत अनुभव है, संगीत साधना है। और जब कोई व्यक्ति इस पूरी परंपरा को आने वाली पीढ़ियों के लिए व्यवस्थित करके छोड़ जाता है तो वह केवल अपने समय की सेवा नहीं करता, वह भविष्य की सेवा करता है।
0: पंडित विष्णु नारायण भातखंडे ने भविष्य की सेवा की। एक वकील से संगीत शास्त्री बनने की उनकी यात्रा केवल पेशा बदलने की कहानी नहीं है, ये उस आंतरिक पुकार की कहानी है जिसे उन्होंने पहचाना।
1: इसलिए जब अगली बार किसी राग की चर्चा हो, जब कोई विद्यार्थी सारे गामा लिखकर किसी बंदिश को सीखने का प्रयास करे, कोई बच्चा छोटा ख्याल गुनगुनाए या कोई संगीतज्ञ बड़ी तान लगाए, तब मन ही मन पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी को प्रणाम जरूर करिएगा।

0: इसी विचार के साथ कला कल्लोलिनी का आज का ये अंक यहीं समाप्त होता है।
1: कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना है अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम और लेखक है मनीषा चतुर्वेदी, और मैं हूं आपके साथ आपका ध्वनि मित्र रत्नेश सोनी,
0: और मैं हूं वर्षा सिंह। लेते हैं इजाजत, सुनते रहिए 90.8 रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कला कल्लोलिनी। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ, देश का चैनल देश के लिए, सुनते रहिए। अगला कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, बस एक छोटे से अंतराल के बाद। हमारा ये प्रसारण यूं ही जारी रहेगा रात्रि 10 बजे तक, बने रहिए विविध भारती, क्षमा कीजिएगा, रेडियो आजाद हिंद के साथ।

0: सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नब्बे दशमलव आठ मेगाहर्ट्ज पर आप है रेडियो आजाद हिंद के साथ। आइए सुने कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।
2: स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: डेट्रॉइट से विदा लेकर स्वामी जी पहले नॉर्दम्पटन पहुंचे। वहां उनका भव्य स्वागत हुआ। नॉर्दम्पटन डेली हेरॉल्ड नामक एक अखबार में 13 अप्रैल को संवाद प्रकाशित हुआ।
1: समाज की एक प्रतिष्ठित महिला ने विवेकानंद के लिए घरेलू सभा की व्यवस्था की थी। उन्होंने अपने सभी मेहमानों को सूचित कर रखा था कि दर्शन, विज्ञान अथवा धर्म के अपने सर्वाधिक दुरूह प्रश्न हिंदू सन्यासी के समक्ष रखें। वे आए, पूछा, उत्तर पाया और ये कहते हुए लौटे, इस सत्य का आधा भी पहले कभी नहीं कहा गया था।
2: 14 अप्रैल को स्वामी जी ने नॉर्दम्पटन नगर की जनता के लिए तथा अगले दिन वहां के स्मिथ कॉलेज में व्याख्यान दिए। स्वामी जी की नॉर्दम्पटन में उपस्थिति के संबंध में स्मिथ कॉलेज की तत्कालीन छात्रा श्रीमती मार्था ब्राउन फिंके की सन 1936 में लिखित स्मृति कथा में ये विवरण मिलता है।
3: 1875 ईस्वी में सोफिया स्मिथ ने महिलाओं की उच्च शिक्षा के हेतु स्मिथ कॉलेज की स्थापना की। 1893 में जब मैंने एक 18 वर्ष की अपरिपक्व बालिका के रूप में इस कॉलेज में प्रवेश लिया, उस समय मैं कोई अनुशासन नहीं मानती थी, परंतु मनोजगत तथा आत्मिक जगत में सत्य लाभ के लिए अतीव उत्सुक थी। कॉलेज के छात्रावास में सबके लिए पर्याप्त स्थान न हो पाने के कारण मैं और भी 3 छात्राओं के साथ परिसर के बाहर स्थित एक वर्गाकार बादामी रंग के मकान में निवास करती थी। अप्रैल की बुलेटिन में छपा कि स्वामी विवेकानंद वहां 2 शाम व्याख्यान देंगे। हम लोग केवल इतना ही जानती थी कि वे एक हिंदू सन्यासी हैं और कुछ भी नहीं, क्योंकि हाल ही के धर्मसभा में हुई उनकी ख्याति हमारे पास नहीं पहुंची थी। ये भी सुना कि वे हमारे ही मकान में ठहरेंगे, हमारे ही साथ भोजन करेंगे और हम उनसे जो चाहे प्रश्न कर सकेंगे। हमारी गृह स्वामिनी की उदारता का परिचय इसी तथ्य से मिल जाता है कि उन्होंने एक ऐसे अश्वेत व्यक्ति का अपने घर में स्वागत किया जिसे निश्चय ही किसी होटल में स्थान नहीं मिला। नियत दिन आ पहुंचा, छोटा सा अतिथि कक्ष तैयार था और एक महामहिम व्यक्तित्व ने हमारे भवन में प्रवेश किया। उन्होंने काले रंग का प्रिंस अल्बर्ट कोट तथा काले रंग का ही पतलून पहन रखा था। उनके सुगठित मस्तक पर जटिल घुमावों के साथ पीली पगड़ी बंधी हुई थी, परंतु उनका चेहरा, ज्योति से परिपूर्ण आंखें और उनसे निस्तृत होती शक्ति वर्णातीत थी। हम तो भौचक्के और मौन रह गए, परंतु हमारी गृह स्वामिनी सहज ही अभिभूत होने वाली ना थी और उन्होंने स्वामी जी के साथ जोरदार चर्चा की। उस संध्या के व्याख्यान के विषय में मुझे कुछ स्मरण नहीं, परंतु उसके बाद होने वाली विचार गोष्ठी के बारे में मुझे याद है। उस समय कॉलेज के अध्यक्ष, दर्शन विभाग के प्रमुख, कई प्राध्यापक, नॉर्दम्पटन के चर्चों के कुछ पादरी तथा एक सुविख्यात लेखक हमारे मकान में पधारे थे।
2: मार्था ब्राउन का संस्मरण सुनने में एक रोचक कहानी जैसी लगती है। उनका लिखने का ढंग भी बड़ा सुंदर था। उन्होंने आगे और लिखा है,
3: उस दिन परिचर्चा का विषय था ईसाई धर्म और क्या वही एकमात्र सच्चा धर्म है। स्वामी जी ने यह विषय चुना हो ऐसी बात नहीं थी। अपने शास्त्रों में पारंगत इन लोगों के समक्ष सुदूर भारत से आए हिंदू के टिक पाने की आशा भला कौन कर सकता था, परंतु इसका जो अद्भुत परिणाम निकला वो पूर्णतः मेरी निजी धारणा होने पर भी उसकी प्रचंडता के बारे में मैं अतिशयोक्ति नहीं कर रही हूँ। बाइबल से उद्धरण के प्रत्युत्तर में स्वामी जी ने उसी ग्रंथ से और भी युक्तियुक्त उदाहरण दिए। अपने पक्ष के समर्थन में उन्होंने अंग्रेज दार्शनिकों तथा धर्म विषयक लेखकों के उदाहरण दिए। वहां तक कि कवियों को भी वे भलीभांति जानते थे और उन्होंने वर्ड्सवर्थ तथा थॉमस ग्रे की कविताओं के भी उदाहरण दिए। मेरे अपने ही जगत के लोगों के प्रति मेरी सहानुभूति क्यों नहीं हुई? स्वामी जी ने जब धर्म के क्षेत्र का विस्तार करते हुए संपूर्ण मानव जाति को उसमें समेट लिया, तब उस कमरे में स्वाधीनता की जो मुक्ति वायु प्रवाहित हुई, मैं क्यों उसमें आह्लादित हो उठी कह नहीं सकती। केवल इतना ही जानती हूँ कि उनकी विजय पर मुझे गर्व का अनुभव हुआ था। बैलूट मठ के एक सन्यासी ने कहा था कि उनकी दृष्टि में स्वामी जी प्रेम की प्रतिमूर्ति हैं। उस रात मुझे वे शक्ति की प्रतिमूर्ति लगे थे। निसंदेह हमारे कॉलेज जगत की ये महान हस्तियां संकीर्ण मन की थी। उनकी निष्ठा के द्वार बंद हो चुके थे। वे भला यह बात कैसे स्वीकार कर पाते, जो कोई जिस रूप में मेरी उपासना करता है उसे मैं उसी रूप में प्राप्त होता हूँ। उन लोगों को प्रेम की भाषा मान्य नहीं थी, परंतु असहमति के बावजूद वे शक्ति के सामने लाचार थे। आखिरकार उन्होंने पराजय स्वीकार कर ली।
0: मार्था ने छोटी छोटी बातों को भी ध्यान रखा था और उसे अपने संस्मरण में शामिल किया था। स्वामी जी के प्रति वे सचमुच आकर्षित हुई थी। उन्हें और भी बातें याद थी। उन्होंने लिखा था,
3: अगले दिन प्रातःकाल स्नानागार में पानी गिरने की जोर की आवाज के साथ साथ एक अज्ञात भाषा में उच्चरित गंभीर सुर कानों में पड़े। हम सभी दरवाजे से कान लगाकर सुनने लगे। जलपान के समय उस मंत्र पाठ के बारे में पूछने पर उन्होंने बताया, जल को पहले मैं मस्तक से और फिर सीने में स्पर्श करता हूँ और प्रति बार मैं जगत के समस्त प्राणियों के कल्याण हेतु प्रार्थना करता हूँ। ये बात मेरे हृदय में दृढ़ता पूर्वक अंकित हो गई। मैं भी हर सुबह प्रार्थना करती थी, पर पहले अपने लिए और तदुपरांत अपने परिवार के लिए। परंतु संपूर्ण मानव जाति को अपना परिवार मानकर अपने पहले उन्हीं को रखने की बात कभी मेरे ध्यान में नहीं आई थी।
2: मार्था ब्राउन ने और भी लिखा था कि जलपान के बाद स्वामी जी ने थोड़ा टहलने की इच्छा व्यक्त की। तब हम उनके दोनों ओर दो दो करके चार छात्राएं उस गरिमामय व्यक्तित्व के साथ सड़कों पर चलने लगी। चलते चलते हमने संकोच पूर्वक कोई विषय छेड़ने का प्रयास किया और उन्होंने अपनी धवल दंत पंक्तियों से मुस्कान बिखेरते हुए तुरंत उत्तर दिया। मुझे केवल एक बात याद है, ईसाई मतवाद के प्रसंग में उन्होंने कहा कि सर्वदा ईसा मसीह के रक्त का उल्लेख उन्हें बड़ा विभत्स प्रतीत होता है। इससे मुझे चिंतन का विषय मिल गया। रक्त से भरा हुआ एक पात्र है जो इमैनुअल की शिराओं से निकाला गया है। इस स्रोत से मैं सदा ही घृणा करती थी, परंतु उनका दुस्साहस देखिए कि वे चर्च द्वारा स्वीकृत एक सिद्धांत की समालोचना कर रहे थे। इस स्वतंत्रता प्रिय आत्मा के द्वारा जागृति आने के बाद निश्चित रूप से मेरे मुक्त चिंतन की शुरुआत हुई।
0: मार्था ने दीर्घ काल तक स्वामी जी को याद रखा था और उन्हीं के आकर्षण से भारत भ्रमण करने भी आई थी। स्वामी जी द्वारा प्रचारित जीव रूपी ब्रह्म तत्व ने उन्हें जीवन के दुखों के बीच भी शांति प्रदान की थी।
2: नॉर्दम्पटन के सिटी हॉल में 14 अप्रैल की शाम को स्वामी जी का व्याख्यान हुआ। उसमें स्वामी जी ने बताया कि भाषा, वर्ण एवं रीति रिवाजों में पार्थक्य के बावजूद जगत की प्रमुख जातियां मूलतः एक है। नॉर्दम्पटन डेली हेराल्ड ने दूसरे दिन छापा,
1: जबकि हम अपनी जाति की आयु सैकड़े में गिनते हैं, तब वे अपनी आयु की गणना हजारों वर्षों में करते हैं। उसी भारत के मानसिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक संस्कृति के सर्वोत्तम विभूति के आलोक पुंज को देखने की जिसे परवाह हो, उस प्रत्येक बुद्धिमान एवं विचारशील अमेरिकन को चाहिए कि वे स्वामी विवेकानंद को देखने और सुनने का अवसर हाथ से ना जाने दें। वे प्रत्येक अमेरिकी के लिए अध्ययन के एक सुयोग्य पात्र हैं।

0: नॉर्दम्पटन से स्वामी जी मैसाचुसेट्स प्रांत के लीन नगर में जाकर श्रीमती फ्रांसिस डब्ल्यू ब्रीड के घर पर अतिथि हुए। लीन नगर चमड़े के कारखाने के लिए प्रसिद्ध था और श्री ब्रीड का अपना निजी कारखाना था। वे बड़े धनी थे। स्वामी जी ने वहां दो व्याख्यान दिए, एक नॉर्थ शोर क्लब में और दूसरा ऑक्सफोर्ड हॉल में हुआ था। बोस्टन में भी श्री ब्रीड का मकान था। स्वामी जी वहां भी कुछ दिन ठहरे। लीन से बोस्टन की दूरी मात्र 10 मील है।
1: कुमारी इजाबेल मैककिंडली को लिखित स्वामी जी के एक पत्र से इस काल की थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है।
2: बोस्टन में श्रीमती ब्रीड के यहाँ मेरा समय बड़ा अच्छा बीता। प्राध्यापक राइट के साथ भी मुलाकात हुई। मैं पुनः बोस्टन जा रहा हूँ। दर्जी मेरा नया गाउन बना रहे हैं। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में मेरा व्याख्यान होगा और वहां मैं प्राध्यापक राइट का मेहमान रहूंगा। बोस्टन के समाचार पत्र मेरे स्वागत में काफी कुछ लिख रहे हैं। इन सब वाहियात कामों से मैं थक गया हूं। मई के अंत में शिकागो जाऊंगा। वहां कुछ दिन बिताने के बाद मैं फिर पूर्व की ओर लौटूंगा। पिछली रात मैंने वॉल्डोर्फ होटल में व्याख्यान दिया। श्रीमती स्मिथ ने $2 की दर से टिकट बेचे। यद्यपि हॉल छोटा था पर श्रोताओं से भर गया था। लीन में मुझे $100 प्राप्त हुए, परंतु उन्हें भेज नहीं रहा हूं क्योंकि मुझे नया गांव तथा अन्य ऊट पटांग चीजें लेनी है। बोस्टन में मुझे धन मिलने की आशा नहीं है, तो भी मुझे अमेरिका के लोगों के माथे को छूने तथा उसे हिलाने डुलाने का प्रयास तो करना ही होगा।
0: स्वामी जी 24 अप्रैल से 6 मई तक न्यूयॉर्क में रहे और वहां अनेक व्याख्यान दिए। इजाबेल को उन्होंने 2 मई को पत्र लिखा। उसमें उनकी गतिविधियों का, कार्य प्रणाली का तथा मानसिक अवस्था के बारे में कुछ बातों का पता चलता है।
2: उस दिन वॉल्डोर्फ के व्याख्यान से मुझे $70 प्राप्त हुए। कल के भाषण से कुछ और भी मिलने की आशा है। 7 से 19 तारीख तक बोस्टन में कार्यक्रम है, पर वहां से काफी कम पैसे मिलने की उम्मीद है। कल मैंने $13 का एक पाइप खरीदा है। कृपया फादर पोप श्री हेल के सामने इसका जिक्र न करना। कोर्ट के लिए $30 लगेंगे। समय बहुत अच्छा बीत रहा है, सिर्फ उस लेक्चरबाजी को छोड़कर। हार्वर्ड में 3-3 व्याख्यान आयोजित किए गए हैं। यहां पर भी वे लोग कुछ कर रहे हैं, अतः शिकागो जाते समय एक बार पुनः न्यूयॉर्क आऊंगा और कुछ कड़ी बातें सुनाकर डॉलर हथियाने के बाद शिकागो उड़ जाऊंगा। न्यूयॉर्क या बोस्टन से यदि तुम्हें कुछ मंगाना हो जो शिकागो में ना मिलता हो तो शीघ्र लिखना। इस समय मेरे पास ढेर सारे डॉलर हैं। तुम जो भी चाहोगी क्षण भर में भेज दूंगा। ऐसा ना सोचना कि इसमें कुछ अशोभनीय होगा। मेरे साथ कोई धोखाधड़ी नहीं। मैं यदि भाई हूं तो भाई हूं। मैं दुनिया में यदि किसी चीज से नफरत करता हूं तो पाखंड से।
0: न्यूयॉर्क में उनका दूसरा व्याख्यान हुआ श्रीमती मैरी फिलिप्स के घर पर। वे पहले व्याख्यान में उपस्थित थीं तथा बाद में स्वामी जी की घनिष्ठ भक्त बन गई थीं। स्वामी जी उनके घर भी ठहरे थे। न्यूयॉर्क में अनेक गणमान्य लोगों से उनका परिचय हुआ, जैसे डॉक्टर गर्नसी तथा उनकी पत्नी लियो लैंडर्सवर्ग, जो लेखक और पत्रकार थे और बाद में स्वामी जी से दीक्षा तथा संन्यास लेकर कृपानंद के नाम से परिचित हुए। सुप्रसिद्ध गायिका एम्मा थर्सबी से भी पहचान हुई। एक अन्य मित्र थे लीमैन एबॉट, जो विख्यात पादरी, ब्रुकलिन चर्च के प्रमुख व सुप्रसिद्ध व प्रभावशाली आउटलुक पत्रिका के प्रधान संपादक थे। स्वामी जी के न्यूयॉर्क निवास का विवरण श्रीमती कॉन्स्टेंस, जो विवाह के पूर्व मिस गिबन्स थीं, की एक स्मृति कथा में प्राप्त होता है। उन्होंने 28 अप्रैल को डॉक्टर गर्नसी के घर पर स्वामी जी को देखा था। उन्होंने लिखा है,
3: मैं जब उनसे मिली उस समय उनकी आयु 27 वर्ष थी। वे प्राचीन ग्रीक देव मूर्ति के समान सुंदर प्रतीत हुए, पर हाँ, उनका रंग सांवला था और उनकी बड़ी बड़ी आंखें मध्यरात्रि के नक्षत्र खचित आकाश की याद दिलाती थी। उनका सिर छोटे छोटे घुंघराले बालों से परिपूर्ण था। उस समय वे प्रसिद्ध डॉक्टर गर्नसी के घर पर अतिथि थे। डॉक्टर गर्नसी एक उदार साहित्य सेवी तथा सच्चे अतिथि परायण व्यक्ति थे। उनका विशाल और सुंदर मकान 5वें एवेन्यू के 44 नंबर स्ट्रीट पर था। डॉक्टर गर्नसी ने एक दिन अपराह्न में डिनर का आयोजन किया था। ऐसा निश्चित हुआ था उनमें प्रत्येक अतिथि एक धर्म के प्रवक्ता होंगे और उस समय इंगरसोल के नगर से अनुपस्थित रहने के कारण डॉक्टर स्वयं ही उनका प्रतिनिधित्व करेंगे। मैं कैथोलिक थी, इस कारण मुझे उस स्मरणीय रात्रि भोज में उपस्थित होने का सौभाग्य मिला था। डॉक्टर गर्नसी हमारे चिकित्सक थे, इसीलिए कैथोलिक मत का प्रतिनिधित्व करने के लिए उन्होंने मुझे बुला भेजा था। उस भोज में डॉक्टर पाघस तथा अमेरिका की सुप्रसिद्ध अभिनेत्री मिनी मैडन फिस्के भी आई थी। मुझे स्मरण है कि कुल मिलाकर 14 अतिथि वहां उपस्थित थे। आपस में अवश्य एक मौन समझौता हुआ था कि सभी एक दूसरे के तथा स्वामी जी के तथा कथित गैर ईसाई मतवाद के प्रति भद्र आचरण करेंगे। परंतु खेद की बात है कि जो जो भोज अग्रसर हुआ त्यों त्यों सर्वाधिक उत्तेजनापूर्ण चर्चा होने लगी। स्वामी जी के साथ नहीं बल्कि बाइबिल पर ही आधारित विभिन्न संप्रदायों के बीच। मेरी कुर्सी स्वामी जी के बगल में ही थी। हम दोनों मजे के साथ चुपचाप इस हास्यास्पद सांप्रदायिक असहिष्णुता को देखते रहे। स्वामी जी बीच बीच में संक्षिप्त व्याख्यान के सहारे ऊपरी तौर पर अपने देश तथा वहां के लोगों के रीति रिवाज समझाने का प्रयास करते, पर उनका असल उद्देश्य होता दर्शन तथा धर्म के किसी विषय में अपने मत की श्रेष्ठता प्रमाणित करना। इस भोज के समय ही हमारी मित्रता का सूत्रपात हुआ। बाद में बैठक खाने में उन्होंने मुझसे कहा, मिस गिबन्स, आपके तथा मेरे दार्शनिक मत एक ही हैं। हमारी धार्मिक आस्था की मूल बातें भी समान हैं। घर लौटकर मैंने अपनी माँ से स्वामी जी की बातें कही और माँ ने कहा,
4: क्या ही भयंकर सभा थी वो, जिसमें मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट और प्रेसबिटेरियन सभी थे, और वो भी था साथ में नारंगी रंग के कपड़े पहने कृष्णवर्ण विधर्मी।
3: परंतु माँ ने क्रमशः विवेकानंद को पसंद करना तथा उनके विचारों के प्रति सम्मान दिखाना सीख लिया था। यहाँ तक कि बाद में वे एक वेदांत केंद्र की सदस्य भी बनी थी। स्वामी जी के लिए मेरी माँ थी बड़ी मजेदार, और इतने वर्षों बाद आज भी मेरे नेत्रों के सामने तैरने लगता है वो दृश्य जिसमें अपने बारे में माँ की टिप्पणियां सुनकर वे हंसते हंसते बेहाल हो जाते थे।
1: सन 1894 ईस्वी के वसंत काल का मौसम। एक रात कुमारी गिबन्स ने स्वामी जी को मेट्रोपॉलिटन ओपेरा में फाउस्ट नाटक देखने का आमंत्रण दिया। स्वामी जी ने पहले कभी ओपेरा नाटक नहीं देखा था। गिबन्स की मां ने आपत्ति की,
5: आप तो काले हैं, आपको हमारे साथ देखकर दुनिया के लोग क्या कहेंगे?
2: मैं तो अपनी बहन के पास बैठूंगा, मैं जानता हूँ वो बुरा नहीं मानेगी।
0: माँ चुप हो गई। ओपेरा गृह में उस दिन स्वामी जी बहुत सुंदर दिख रहे थे। मिस गिबन्स ने लिखा है,
3: आसपास जितने भी लोग बैठे थे वे मुग्ध होकर उन्हें देख रहे थे। उस रात शायद उन लोगों ने ओपेरा सुना तक नहीं। मैंने उन्हें फाउस्ट की कहानी समझाना चाही तो माँ कह उठी,
6: हे भगवान, तेरी जैसी युवा लड़की को ऐसी भयानक कहानी एक पुरुष को नहीं सुनानी चाहिए।
2: अगर ये अच्छा नहीं तो आपने इन्हें आने क्यों दिया?
5: वाह, क्यों ना आती? ओपेरा देखने जाना एक सामाजिक प्रथा है। कथा वस्तु खराब है पर उस पर चर्चा करना ठीक नहीं।
3: ओपेरा के वक्त स्वामी जी ने पूछा,
2: अच्छा बहन, वो व्यक्ति जो गाना गाकर उस सुंदर स्त्री के सामने प्रेम जता रहा है, क्या वो सचमुच उससे प्यार करता है?
3: हाँ स्वामी जी।
2: परंतु उस व्यक्ति ने तो महिला के प्रति अन्याय किया है और उसे दुखी बना दिया है।
3: हाँ स्वामी जी।
2: ओह, अब समझा, वो उस स्त्री से प्रेम नहीं करता, वो तो उस लाल धारी वाले वस्त्र पहने पूंछ वाले शैतान के प्रेम में डूबा है ना?
3: इसी बीच हमारे समाज की एक लोकप्रिय युवती इंटरवल के समय हमारे पास आई और माँ से बोली, ये नारंगी वस्त्र पहने सुंदर व्यक्ति कौन है? वो बोली, हमारे मेहमान हैं। क्यों? मेरी माँ उनसे परिचय कराने के लिए उतावली हो रही है। और स्वामी जी फिर हंस पड़े।
0: स्वामी जी के संबंध में कई महत्वपूर्ण व्यक्तियों के संस्मरण हमें प्राप्त हैं, क्योंकि स्वामी जी की स्मृति सर्वदा शाश्वत थी, अविस्मरणीय थी। महिला मूर्तिकार मैरलीना हॉफमैन ने अपने हेड्स एंड टेल्स ग्रंथ में लिखा है,
7: भारत मेरी बालिकाल की एक अति स्पष्ट स्मृति को जगा देता है। वो उद्दीपनामय संध्या मैंने अपने पिता के कृषिदार के यहाँ व्यतीत की थी। वे 38वीं स्ट्रीट पर स्थित एक साधारण से बोर्डिंग हाउस में निवास करते थे। इन प्राचीन पंथी नगरवासियों के साथ सहसा एक नए व्यक्ति का परिचय कराया गया। वे थे प्राच्य दार्शनिक तथा आचार्य स्वामी विवेकानंद। भोजन कक्ष में उनके प्रवेश करते ही सभी नीरव हो गए। उनका सांवला कांसे कासा रंग और उनकी विशाल तहदार पगड़ी एवं अजीब वेशभूषा सहजी दृष्टिगोचर हो रहा था। उनकी काली आँखें शायद ही कभी आसपास के लोगों को देखने के लिए ऊपर उठती थीं, परंतु उनके व्यक्तित्व में शांति एवं शक्ति की एक ऐसी छाप थी जिसने मुझ पर अमिट छाप डाली। वे मुझे भी सच्चे ब्रह्मवेत्ताओं की तरह रहस्यमय तथा आध्यात्मिक प्रतीत हुए। परंतु इसके साथ ही झलक रहा था उनका सभी मानव भाइयों के प्रति सहज कोमल सहानुभूति का भाव। काफ़ी दिनों के बाद 1931 ईस्वी में हम लोग कलकत्ते के बेलूर मठ में उनका संगमरमर का स्मृति मंदिर देखने गए थे। जब मैं उनकी वेदी पर चढ़ाने के लिए जूही की एक माला लेकर गई तो मुझे स्मरण हो आया कि जीवन में जब मैंने एक ही बार इन साधु पुरुष का दर्शन किया था, उस समय बिना कुछ बोले ही उन्होंने भारत का सच्चा अर्थ जितना मुझे समझा दिया था, उतनी जानकारी मुझे भारत के बारे में भारतवासियों से सुने हुए अनेक भाषणों से भी प्राप्त नहीं हुई।
1: न्यूयॉर्क के ही समान बोस्टन में भी स्वामी जी के अनेक मित्र बने। उनमें सबसे प्रमुख थी श्रीमती ओली बुल, जिन्होंने इसके बाद से सर्वदा अनेक प्रकार से स्वामी जी की सहायता की। अपने कैम्ब्रिज के मकान में वे पहली बार स्वामी जी से मिली थी। श्रीमती ओली बुल के बारे में अगली कड़ियों में अनेकों जिक्र आएंगे, क्योंकि स्वामी जी के अमेरिका प्रवास के दिनों में उनका अवदान नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब स्वामी जी के सफरनामे में अगला नगर होगा न्यूयॉर्क। 28 जून प्रातः काल वे न्यूयॉर्क पहुंचे।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। आप है रेडियो आजाद हिंद के साथ, देश का चैनल, देश के लिए सुनते रहिए।
1: आदमी वो नहीं जिसे हालात बदल दे, आदमी तो वो है जो हालात को बदल दे। ऐसे ही महान वीर सपूतों की कहानी सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद पर 90.8 मेगाहर्ट्ज। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
0: अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से सुबह की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। आप है रेडियो आजाद हिंद के साथ, देश का चैनल, देश के लिए। मिक्सलर पर हमारे कार्यक्रम यूं ही जारी रहेंगे। बने रहिए रेडियो आजाद हिंद के साथ 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल, देश के लिए सुनते रहिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। लीजिए पेश है देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल देश के लिए।
1: मैं हूं हरि प्रसाद चौरसिया, आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पे, देश का चैनल देश के लिए।

0: मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर यह रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम भारत भारती। हिंदुस्तान के विभिन्न प्रांतों के संगीत पर केंद्रित कार्यक्रम भारत भारती। भारत भारती।

0: आज के भारत भारती के इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं पंडित छन्नू लाल मिश्र का गायन। तो आइए लेते हैं आनंद इस गायन का।
1: डॉक्टर की मानद उपाधि से अलंकृत हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को नया उन्मेष प्रदान करने वाले पंडित छन्नू लाल मिश्र हमारे समय के अत्यंत सम्मानित गान योगी हैं। संगीत की प्रारंभिक शिक्षा आपने अपने पिता गुणी संगीतज्ञ पंडित बद्री प्रसाद मिश्रा से प्राप्त की और बाद में किराना घराने के प्रमुख गायक उस्ताद अब्दुल गनी खान से आपने संगीत की गहन तालीम ली। आपको प्रख्यात संगीत मनीषी ठाकुर जयदेव सिंह का मार्गदर्शन भी प्राप्त हुआ। पंडित छन्नू लाल मिश्र पूरी दुनिया में आदर से सुने जाते हैं। ख्याल, ठुमरी, दादरा, कजरी और भजन गायन में आप निष्णात हैं। पंडित मिश्र के गायन में पूरब, पंजाब और गया, इन तीनों ही अंचलों की महक घुली है। भारत के अनेक ख्याति लब्ध समारोह और विदेश की संगीत सभाओं में पंडित छन्नू लाल मिश्र अनहद नाद का सौंदर्य बिखेर चुके हैं। आज की सभा में पंडित जी के साथ तबले पर संगत करने के लिए श्री ललित कुमार उपस्थित हैं। आपने संगीत की तालीम पंडित अनोखेलाल जी के शिष्य पंडित सुंदरलाल जी और अनोखेलाल जी के बेटे पंडित रामजी मिश्र से प्राप्त की है। हारमोनियम पर संगत करने के लिए हमारे अपने शहर, अपने प्रदेश के यशस्वी युवा संगीतकार श्री जमीर हुसैन खां उपस्थित हैं। आप सब जानते हैं कि मरहूम सारंगी नवाज उस्ताद नजर हुसैन खां साहब के आप बेटे हैं, अच्छे गायक हैं, संगीत कंपोजर हैं और आज पंडित जी के साथ हारमोनियम पर संगत करने का सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ है। सह गायन करने के लिए एक और महत्वपूर्ण उपस्थिति पंडित जी के शागिर्द श्री संजीव सन्हा है और तानपुरी पर श्री जितेंद्र कालबेले। पंडित जी से निवेदन है आप सबसे संवाद करें और अपना गायन प्रारंभ करें।
2: आपको विलंबित रहे कि ठुमरी सुनाए थे, बोल बनाओ ठुमरी उसको कहते हैं, अब बोल बांट ठुमरी कैसे होती है। हटो जाओ रे, देखिए

यहाँ सुनने वाले लोग हैं, ये भी कला का केंद्र है, इसलिए सुना रहा हूँ। हट जाओ रे ना बोलो कांदा, हट जाओ रे ना बोलो कांदा, हट जाओ रे ना बोलो।

देखिए पहले प्यार से कहती है कि हट जाओ ना बोलो गाना जाओ रे ना बोलो गाना मरी भैया ना जो गोबर जो विनती करूं मैं लगू भैया हट जाओ जाओ जाओ देखिए लहकारी जाओ जाओ प्यार से कहती फिर भी नहीं मानते हैं फिर कहती

0: जाओ जाओ हटो
1: जाओ रे ना बोलो गाना,
0: फिर भी नहीं मानते हैं, कहती अच्छा घबराओ मत,
1: रे ना बोलो गाना हटो जाओ जाओ रे ना बोलो गाना मरी बहिया ना जो वो भर जो

आदत थी, फिर गुस्सा के कहती है अच्छा रुको हटो जाओ रे ना बोलो खाना मोरी भैया ना जो भर जो मेहनती करो मैं लो भैया हटो जा जा जा जा जा गुस्सा के कह

अब एक भोजपुरी भी सुना देते हैं। एक श्रृंगार रस है, एक प्रेम रस है। पहले श्रृंगार

बिंदिया लगा के बजरिया, अगर जाओगी तो जान दे दी है, जान दे दी है लोग।

0: और
1: अरे रेशमी लटके घूंघटा, रेशमी लटके घूंघटा जे मुंह पे परल, रेशमी लटके घूंघटा जे मुंह पे परल, अरे जैसे

अंत में गोर देहिया गोर देहिया गोर देहिया के गोर देहिया के रग रग।

दूसरा है अरे बताव चांद, भोजपुरी है। चांद से कभी कह रहा कि

फिर कभी कह रहा है कि के कह रहा सूरतिया पर तो उसे सुंदर के हो। चांद से कह रहा है कभी कि हे चांद तुमसे सुंदर कौन है जिसको देखने जाते हो।

हमारे लोकगीत गेहूं के कटनी में क्या होता है, देखिए क्या अच्छा भाव है। स्त्री पुरुष हैं और गेहूं काटने के लिए पति क्या कहता है औरत से,

मर्द कहता है कि सोनवा जैसन साड़ी पचलिया दो लय होता है, कहरवा हो गया। सोना के रंग का बाल होता है गेहूं का। अरे सोनवा जैसन ठाड़ी फसलिया हंसुआ लाओ गिराई, सोनवा जैसन ठाड़ी फसलिया हंसुआ लाओ गिराई। अरे झपट झपट के थूहा काटी, एक एक पुंजा काट झपट के, झपट झपट के थूहा काटी सुंदर मांग बनाई वही। अरे सुंदर मांग बनाई नाही को है बटैया मोरी बारी दनिया, कोई बटैया नहीं है, अधिया नहीं है, हमारा खेत है। अरे नाही को है बटैया मोरी बारी दनिया, सबका रंग अलग।

ये सब लय है कि झुलाता है, देखो। फिर पुरुष क्या कहता है, एक सुनो, मुहवा लाल पसीनवा छाए। तुम तो सुकुवार हो, तुम्हारा मुंह लाल हो गया, पसीना चुरा है, तुम क्यों लाओ ले जाओगी बोझा। अरे बुझवा, अरे मुहवा लाल पसीनवा छाए, बुझवा जन ले जाओ। अरे भाई दुपहरी चला घरे, दोपहर के काटना छोड़ देते हैं, खाने पीने जाते हैं लोग। भाई दोपहरी चला घरे, अब ओपहर

अभी सब जो वैरायटी सुना रहे हैं और बहुत कलाकार आएंगे, सुनिएगा देखिएगा, ये सब सुनाते हैं सब लोग। ग्रामीण गीत किसको कहते हैं? देहात में, हमारा देहात में जन्म है, आजमगढ़ में, हरिहरपुर गांव है। सोते रहे तो देखते थे क्या था, क्या होता था, उस पर ये बना है। देखिए, गैया भैंस चराने जाते थे हम लोग बचपन में, चरा करके लाते थे, उस पर इसको बनाया है। बांस के पेड़ के नीचे खटिया बिछा के सोते थे, वो देहात का मजा, चना मटर का खेत किस तरह से खिलता था, ये इसको ग्रामीण गीत कहते हैं। बही गए पूरब कहे वही ठीक है, अरे बही गए पूरब कहे बयरिया डगर की, बही गए पूरब कहे।

गांव में कुएं पर पानी भरने जाती हैं लोग, औरत लोग। अरे पन घट के अम घट पर चर्चा छिड़ गई बाली पन की, ठीक है, पन घट के अम घट पर चर्चा छिड़ गई बाली पन की, खन खन खन खन चुड़िया खन के छन छन पायल छन के छल के गोरी के गगरिया डगर मांगे चमक गोरी के गगरिया, गगरी छलक रही है

0: देहात में क्या होता है?
1: डगर महती आय बसंत,
0: जाड़ा के दिन में बसंत ऋतु में क्या होता है?
1: आय बसंत सजे अममू, आय बसंत सजे अममू बौरन के मोर लगाए।
0: बौर जो लटकता है आम के पेड़ में वो कैसा लगता है?
1: आय बसंत सजे अममू बौरन के मोर लगाए,
0: वो कैसा लगता है?
1: कि गौने के दुल्हिनी असलाजन, गौने के दुल्हिनी असलाजन मारे शीश झुकाए झूमे लागी अरहरिया डगर मागे, झूमे लागी अरहरिया।
0: रहर का पेड़ झूमता है देहात में,
1: झूमे लागे अरहरिया डगर मागी बहगे पूरब के हो बहगे, पूरब के हो बहगे।

चना मटर का खेत जब सूख जाता है छिम्मी उसका, तो आपस में लड़के झुन झुन झुन झुन बोलता है। सब प्रैक्टिकल है देहात। चना मटर जौ के खेतन सब लगे बजावन ताली, चना मटर जौ के खेतन सब लगे बजावन ताली। दूर देखने पर दोपहर नाचता है, इसे से हिलता है। अरे नाचे निकर के महतिन महतो,

0: डगे हो बगे हो बैगे पूरब के बजरिया डगर मागे बैगे।
1: अब देखिए गैया चरा करके जब घर में आते हैं तो बछरू को बांध देते हैं और दूध बाल्टी में दूहते हैं तो क्या होता है,
0: लौट चले पशु और पखेरू अपने थाने थाने, लौट चले पशु और पखेरू चिड़िया और गोरू, लौट चले पशु और पखेरू अपने थाने थाने। तो गैया का थन देखी देखी
1: जब दुहते हैं तो गैया का थन देख के बछरू बड़ा ललचाता है कि हमको पीने को मिले।
0: अरे गैया का थन देखी देखी बछरू मन मा ललचाने बोले, दुधवा केरी धरिया डगर मागे।
1: बाल्टी में छर छर दूध बोलता है, अरे बो

अंत में जाड़ा के दिन में हम लोग क्या करते थे, लकड़ी कहाँ मिलता था वहाँ, पतई बटोर बटोर के जो पेड़ के नीचे पतई गिरता था उसको बटोर के उससे कौड़ा तापते थे सब लोग बटोर के। अरे जला अलाव बैठी ताप है, देहात के लोगों का नाम क्या है, अरे जला अलाव बैठी ताप है सीतलू सूरजू सुखरानी, ये नाम है, जला अलाव बैठी ताप है सीतलू सूरजू सुखरानी। अरे गुड़ गुड़ गुड़ गुड़ हुक्का बोला, हुक्का चढ़ता था, गुड़ गुड़ गुड़ गुड़ हुक्का बोला चर्चा छिड़ी पुरानी पुरानी। भैया तुहार खेत कैसन भल, क्या तुहार बहुत अच्छा भल,

हमारे यहाँ गांव में रविदास जी के जो बूढ़े लोग मरते थे तो उनको सुला करके और क्या निर्गुण गाते थे अपने भाषा में, कैसे गाते थे देखिए भाव, रविदासी निर्गुण इसको कहते हैं, रविदास लोग किस तरह गाते थे

0: भरवा हो जा
1: आवे कौन काम भजन बिनु देहिया आवे कौन काम।
0: सुता जी कहते हैं कि शरीर किस काम में आएगा। देखिए ज्ञान की चीज है, देहात का चीज है, लेकिन उसमें तत्व है। कहते हैं कि सोए हुए हो, ये किस काम में शरीर आएगी।
1: अरे आवे कौन काम भजन बिनु देहिया आवे कौन काम भजन बिनु देहिया।
0: उठ के सुबह क्या करते हो।
1: यही काया के मली मली धोला।
0: सवेरे उठ के स्नान ध्यान खूब साबुन।

उठेगा कभी कभी। आवे कौन काम भजन मेनू आवे कौन काम भजन कबजा नहीं देने दबा करेगा। आवे कौन काम भजन आवे कौन काम। स्नान के बाद क्या हम लोग करते हैं? मेवा मिठाई रे मेवा मिठाई मेवा मिठाई रुचि रुचि खैल और का खैल मेवा।

अब खाए के आराम से सुतल और का करे के तहिए ना प्रभु के नाम काहे लेब। तो सकत किया भोजन होगल पूरा, तब तो सकत किया न

आंसू निकल जाता है, भाव इसका ऐसा है समझने के लिए। आवे कौने काम भजन बीनु देहिया, आवे कौने काम भजन बीनु देहिया, आवे कौने काम भजन। हाँ ये आवे कौने काम भजन बीनु।

सुतल बीत गया, उम्र प्राण निकल गया। रविदास जी क्या कह रहे हैं कि जिंदा थे तो खूब सिल्क का कुर्ता और खूब बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन करके घूमते थे,

बस हमारा टाइम हो गया है। बड़े प्यार से आप लोग सुन रहे थे इसलिए मैं सुनाता गया। अब एक कजरी भी सुना दें, क्योंकि कजरी के समय पर तो नहीं बुलाएंगे ना शुक्ला जी। अगर कजरी के समय में बुलाते तो हम उस वक्त सुनाते, लेकिन देखिए कजरी का

हरी संग झूला झूलते हैं भगवान, झूलत हरी संग राधे पलना झूलत। ये खुले में गाने से सुबह आवाज बैठ जाएगी, क्योंकि ठंड सर में लगता है और 80 बरस का उम्र है, इसलिए ठंडे से बचना चाहिए। अरे झूलत हरी संग राधे पलना, झूलत हरी संग राधे पलना, पहने कुसुम रंग। राधिका कौन से रंग की साड़ी पहन के झूलती हैं? पहने कुसुम रंग।

ये था हमारा आज का भारत भारती कार्यक्रम, जिसमें आपने सुना पंडित छन्नूलाल मिश्र का गायन। इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम समाप्त करने की दीजिए इजाजत 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद से, देश का चैनल देश के लिए। हिंदुस्तान के विभिन्न प्रांतों के संगीत पर केंद्रित कार्यक्रम भारत भारती, भारत भारती।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद पर। मैं हूँ कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। रेडियो आजाद हिंद के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
1: ये मेरा इंडिया।
0: देश के अमर शहीदों को मेरा नमन है जिन्होंने आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जय हिंद। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: सुनो कहानी, कहानी जो बचपन में नानी दादी सुनाया करती थी, कहानी जो हमें स्वप्न लोक और काल्पनिक लोक में ले जाया करती हैं, कहानी जिनको सुनते सुनते हम बड़े हो गए, कहानी जो मन को छू लेती हैं, दिल में उतर जाती हैं, जीवन के अनछुए मार्मिक और ज्ञान वर्धक पहलुओं पर प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम सुनो कहानी।

नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आज़ाद हिंद। मैं हूं आपका रेडियो मित्र संदीप शर्मा और आज मैं आपको इस कार्यक्रम में सुना रहा हूं मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी पशु से मनुष्य।

0: दुर्गा माली डॉक्टर मेहरा बारट लॉ के यहां नौकर था। 5 रुपए मासिक वेतन पाता था। उसके घर में स्त्री और 2-3 छोटे बच्चे थे। स्त्री पड़ोसियों के लिए गेहूं पीसा करती थी। 2 बच्चे जो समझदार थे इधर उधर से लकड़ियां गेहूं उपले चुन लाते थे, किंतु इतना यत्न करने पर भी वे बहुत तकलीफ में रहते थे। दुर्गा डॉक्टर साहब की नजर बचाकर बागीचे से फूल चुन लेता और बाजार में पुजारियों के हाथ बेच दिया करता था। कभी कभी फलों पर भी हाथ साफ किया करता। यही उसकी ऊपरी आमदनी थी। इससे नोन तेल आदि का काम चल जाता था। उसने कई बार डॉक्टर महोदय से वेतन बढ़ाने की प्रार्थना की, परंतु डॉक्टर साहब नौकर की वेतन वृद्धि को छूत की बीमारी समझते थे, जो एक से अनेकों को ग्रस लेती है। वे साफ कह दिया करते, भाई मैं तुम्हें बांधे तो हूं नहीं, तुम्हारे यहां निर्वाह नहीं होता तो कहीं और चले जाओ, मेरे लिए मालियों का काल नहीं है। दुर्गा में इतना साहस न था कि वो लगी हुई रोजी छोड़कर नौकरी ढूंढने निकलता। इससे अधिक वेतन पाने की आशा भी नहीं, इसलिए वो इसी निराशा में पड़ा हुआ जीवन के दिन काटता और अपने भाग्य को रोता था। डॉक्टर महोदय को बागवानी से विशेष प्रेम था। नाना प्रकार के फूल पत्ते लगा रखे थे। अच्छे अच्छे फलों के पौधे दरभंगा, मलिहाबाद, सहारनपुर आदि स्थानों से मंगवाकर लगाए थे। वृक्षों को फलों से लदे देखकर उन्हें हार्दिक आनंद होता था। अपने मित्रों के यहाँ गुलदस्ते और शाक भाजी की डालियां तोहफे के तौर पर भिजवाते रहते थे। उन्हें फलों को आप खाने का शौक न था, पर मित्रों को खिलाने में उन्हें असीम आनंद प्राप्त होता था। प्रत्येक फल के मौसम में मित्रों की दावत करते और पिकनिक पार्टियां उनके मनोरंजन का प्रधान अंग थी। एक बार गर्मियों में उन्होंने अपने कई मित्रों को आम खाने की दावत दी। मलिहाबादी में सुफेदे के फल खूब लगे हुए थे। डॉक्टर साहब इन फलों को प्रतिदिन देखा करते थे। ये पहले ही फले थे, इसलिए वे मित्रों से उनकी मिठास और स्वाद का बखान सुनना चाहते थे। इस विचार से उन्हें वही आमोद था जो किसी पहलवान को अपने पट्टों के करतब दिखाने से होता है। इतने बड़े सुंदर और सुकोमल सुफेदे स्वयं उनकी निगाह से न गुजरे थे। इन फलों के स्वाद पर उन्हें इतना विश्वास था कि वे एक फल चखकर उनकी परीक्षा करना आवश्यक न समझते थे। प्रधानता इसलिए कि एक फल की कमी एक मित्र को रसास्वादन से वंचित कर देगी। संध्या का समय था, चैत का महीना। मित्रगण आकर बगीचे के हौज के किनारे कुर्सियों पर बैठे थे। बर्फ और दूध का प्रबंध पहले से ही कर लिया गया था, पर अभी तक फल न तोड़े गए थे। डॉक्टर साहब पहले फलों को पेड़ में लगे हुए दिखलाने के बाद उन्हें तोड़ना चाहते थे, जिसमें किसी को यह संदेह न हो कि फल इनके बाग के नहीं है। जब सब सज्जन जमा हो गए तब उन्होंने कहा, आप लोगों को कष्ट होगा, पर जरा चलकर फलों को पेड़ में लटकते देखिए, बड़ा ही मनोहर दृश्य है। गुलाब में भी ऐसी लोचन प्रिय लाली न होगी, रंग से स्वाद टपक पड़ता है। मैंने इसकी कलम खास मलिहाबाद से मंगवाई थी और उसका विशेष रीति से पालन किया है। मित्रगण उठे, डॉक्टर साहब आगे आगे चले। रवीशों के दोनों ओर गुलाब की क्यारियां थी। उनकी छटा दिखाते हुए वे अंत में सुफेदे के पेड़ के सामने आ गए, मगर आश्चर्य, वहां एक फल भी न था। डॉक्टर साहब ने समझा शायद वो ये पेड़ नहीं है। 2 पग और आगे चले, दूसरा पेड़ मिल गया और आगे बढ़े, तीसरा पेड़ मिला। फिर पीछे लौटे और एक विस्मित दशा में सुफेदे के वृक्ष के नीचे आकर रुक गए। इसमें संदेह नहीं कि वृक्ष यही है, पर फल क्या हुए? 20-25 आम थे, एक का भी पता नहीं। मित्रों की ओर अपराधपूर्ण नेत्रों से देखकर बोले, आश्चर्य है, इसमें एक भी फल नहीं है। आज सुबह मैंने देखा था, पेड़ फलों से लदा हुआ था। ये देखिए फलों का डंठल है, यह अवश्य माली की शरारत है। मैं आज उसकी हड्डियां तोड़ दूंगा। उस पाजी ने मुझे कितना धोखा दिया। मैं बहुत लज्जित हूं कि आप लोगों को व्यर्थ कष्ट हुआ। मैं सत्य कहता हूं, इस समय मुझे जितना दुख है उसे प्रकट नहीं कर सकता। ऐसे रंगीले कोमल कमनीय फल मैंने अपने जीवन में कभी ना देखे थे। उनके यौन लुप्त हो जाने से मेरे हृदय के टुकड़े हुए जाते हैं। ये कहकर वे नैराश्य वेदना से कुर्सी पर बैठ गए। मित्रों ने सांत्वना देते हुए कहा, नौकरों का सब जगह यही हाल है, ये जाती ही पाजी होती है। आप हम लोगों के कष्ट का खेद ना करें, ये सुफेदे ना सही दूसरे फल सही। एक सज्जन ने कहा, साहब मुझे तो सब आम एक से ही मालूम होते हैं। सुफेदे, मोहन भोग, लंगड़े, बम्बई, फजली, दशहरी, इनमें कोई भेद ही मालूम नहीं होता। न जाने आप लोगों को कैसे उनके स्वाद में फर्क मालूम होता है। दूसरे सज्जन बोले,
1: भाई यहां भी वही हाल है, जो इस समय फल मिले वही मंगवाइए, जो गए उनका क्या अफसोस।
0: डॉक्टर साहब ने व्यथित भाव से कहा, आमों की क्या कमी है, सारा बाग भरा पड़ा है, खूब शौक से खाइए और बांधकर घर ले जाइए, वे हैं और किस लिए, पर वो रस और स्वाद कहां। आपको विश्वास ना होगा, उन सुफेदों पर ऐसा निखार था कि सेब मालूम होते थे। सेब भी देखने में ही सुंदर होता है, उसमें वो रुचिवर्धक लालित्य, वो सुधा में मृदुता कहां। इस माली ने आज वो अनर्थ किया है कि जी चाहता है नमक हराम को गोली मार दूं, इस वक्त सामने आ जाए तो अधमरा कर दूं। माली बाजार गया हुआ था। डॉक्टर साहब ने साइज से कुछ आम तुड़वाए, मित्रों ने आम खाए, दूध पिया और डॉक्टर साहब को धन्यवाद देकर अपने अपने घर की राह ली। लेकिन मिस्टर मेहरा वहां हौज के किनारे हाथ में हंटर लिए माली की बाट जोहते रहे। आकृति से जान पड़ता था मानो साक्षात क्रोध मूर्तिमान हो गया था। कुछ रात गए दुर्गा बाजार से लौटा, वो चौकन्नी आंखों से इधर उधर देख रहा था। ज्यों ही उसने डॉक्टर साहब को हौज के किनारे हाथ में हंटर लिए बैठे देखा, उसके होश उड़ गए, समझ गया कि चोरी पकड़ ली गई। इसी भय से उसने बाजार में खूब देर की थी। उसने समझा था डॉक्टर साहब कहीं सैर करने गए होंगे, मैं चुपके कटहल के नीचे अपनी झोपड़ी में जा बैठूंगा, सवेरे कुछ पूछताछ भी हुई तो मुझे सफाई देने का अवसर मिल जाएगा, कह दूंगा सरकार मेरे झोपड़े की तलाशी ले ले, और इस तरह मामला दब जाएगा। समय सफल चोर का सबसे बड़ा मित्र है, एक एक क्षण उसे निर्दोष सिद्ध करता जाता था, किंतु जब वो रंगे हाथों पकड़ा जाता है तब उसके बच निकलने की कोई राह नहीं रहती। रुधिर के सूखे हुए धब्बे रंग के दाग बन सकते हैं, पर ताजा लहू आप ही आप पुकारता है। दुर्गा के पैर थम गए, छाती धड़कने लगी। डॉक्टर साहब की निगाह उस पर पड़ गई थी, अब उल्टे पांव लौटना व्यर्थ था। डॉक्टर साहब उसे दूर से ही देखते उठे कि चलकर उसकी खूब मरम्मत करूं, लेकिन वकील थे, विचार किया कि इसका बयान लेना आवश्यक है। इशारे से निकट बुलाया और पूछा, सुफेदे के पेड़ में कई आम लगे हुए थे, एक भी दिखाई नहीं देता, कहां चले गए। दुर्गा ने निर्दोष भाव से उत्तर दिया, हुजूर मैं अभी बाजार गया हूं, तब तक तो सब आम लगे थे, इतनी देर में कोई तोड़ ले गया हो तो मैं नहीं कह सकता। तुम्हारा संदेह किस पर है।
1: सरकार अब मैं किसे बताऊं, इतने नौकर चाकर हैं, न जाने किसकी नीयत बिगड़ गई हो।
0: मेरा संदेह तुम्हारे ऊपर है, अगर तोड़कर रखे हूं तो लाकर दे दो, या साफ साफ कह दो कि मैंने तोड़े हैं, नहीं तो बुरी तरह पेश आऊंगा। चोर केवल दंड से ही नहीं बचना चाहता, वो अपमान से भी बचना चाहता है। वो दंड से उतना नहीं डरता जितना अपमान से। जब उसे सजा से बचने की कोई आशा नहीं रहती, उस समय भी वो अपने अपराध को स्वीकार नहीं करता। वो अपराधी बनकर छूट जाने से निर्दोष बनकर दंड भोगना बेहतर समझता है। दुर्गा इस समय अपराध स्वीकार करके सजा से बच सकता था, पर उसने कहा, हुजूर आप मालिक हैं, जो चाहे करें, पर मैंने आम नहीं तोड़े, सरकार ही बताएं, इतने दिन मुझे आपकी ताबेदारी करते हो गए, मैंने एक पत्ती भी छुई है। तुम कसम खा सकते हो, गंगा की कसम, जो मैंने आमों को हाथ से छुआ हो, मुझे इस कसम पर विश्वास नहीं। तुम पहले लोटे में पानी लाओ, उसमें तुलसी की पत्तियां डालो, तब कसम खाकर कहो कि अगर मैंने तोड़ी हूं तो मेरा लड़का मेरे काम ना आए, तब मुझे विश्वास आएगा। हुजूर सांच को आंच क्या, जो कसम कहिए खाऊंगा, जब मैंने काम किया ही नहीं तो मुझ पर कसम क्या पड़ेगी। अच्छा बातें ना बनाओ, जाकर पानी लाओ। डॉक्टर महोदय मानव चरित्र के ज्ञाता थे, सदैव अपराधियों से व्यवहार रहता था। यद्यपि दुर्गा जबान से हेकड़ी की बातें कर रहा था, पर उसके हृदय में भय समाया हुआ था। वो अपने झोंपड़े में आया, लेकिन लोटे में पानी लेकर जाने की हिम्मत न हुई, उसके हाथ थरथराने लगे। ऐसी घटनाएं याद आ गईं जिनमें झूठी गंगा उठाने वाले पर दैवी कोप का प्रहार हुआ था। ईश्वर के सर्वज्ञ होने का ऐसा मर्मस्पर्शी विश्वास उसे कभी नहीं हुआ था। उसने निश्चय किया, मैं झूठी गंगा की कसम ना उठाऊंगा, यही ना होगा निकाल दिया जाऊंगा, नौकरी फिर कहीं ना कहीं मिल जाएगी, और नौकरी ना मिले तो मजूरी तो कहीं गई नहीं, कुदाल भी चलाऊंगा तो सांझ तक आधा सेर आटे का ठिकाना हो जाएगा। वो धीरे धीरे खाली हाथ डॉक्टर साहब के सामने आकर खड़ा हो गया। डॉक्टर साहब ने कड़े स्वर में पूछा, पानी लाया। हुजूर मैं गंगा ना उठाऊंगा। तो तुम्हारा आम तोड़ना साबित है,
1: अब सरकार जो चाहे समझे। मान लीजिए मैं नहीं आम तोड़े तो आपका गुलाम ही तो हूं, रात दिन ताबेदारी करता हूं, बाल बच्चे आम के लिए रोवे तो कहां जाऊं। आपकी जान बख्शी जाए फिर ऐसा कसूर ना होगा। डॉक्टर महोदय इतने उदार न थे, उन्होंने यही बड़ा उपकार किया कि दुर्गा को पुलिस के हवाले न किया और ना ही हंटर लगाए। उसकी इस धार्मिक श्रद्धा ने उन्हें कुछ नरम कर दिया था, मगर ऐसे दुर्बल हृदय को अपने यहां रखना संभव था। उन्होंने उसी क्षण दुर्गा को जवाब दे दिया और उसकी आधे महीने की बाकी मजदूरी जब्त कर ली। कई माह के पश्चात मेहरा बाबू प्रेमशंकर के बाग की सैर करने गए। वहां से कुछ अच्छी अच्छी कलमें लाना चाहते थे। प्रेमशंकर को भी बागवानी से प्रेम था और दोनों मनुष्यों में यही समानता थी, अन्य सभी विषयों में एक दूसरे से भिन्न थे। प्रेमशंकर बड़े संतोषी, सरल और सहृदय मनुष्य थे। वे कई साल अमेरिका रह चुके थे, वहां उन्होंने कृषि विज्ञान का खूब अध्ययन किया था और यहां आकर इस वृत्ति को अपने आजीविका का आधार बना लिया था। मानव चरित्र और वर्तमान सामाजिक संगठन के विषय में उनके विचार विचित्र थे, इसलिए शहर के सभ्य समाज में लोग उनकी उपेक्षा करते थे और उन्हें झक्की समझते थे। इसमें संदेह नहीं कि उनके सिद्धांतों से लोगों को एक प्रकार की दार्शनिक सहानुभूति थी, पर उनके क्रियात्मक होने के विषय में उन्हें बड़ी शंका थी। संसार कर्म क्षेत्र है, मीमांसा क्षेत्र नहीं। यहां सिद्धांत सिद्धांत ही रहेंगे, उनका प्रत्यक्ष घटनाओं से संबंध नहीं। डॉक्टर साहब बागीचे में पहुंचे तो उन्होंने प्रेमशंकर को क्यारियों में पानी देते हुए पाया। कुएं पर एक मनुष्य खड़ा पंप से पानी निकाल रहा था। मेहरा ने उसे तुरंत ही पहचान लिया, वो दुर्गा माली था। डॉक्टर साहब के मन में उस समय दुर्गा के प्रति एक विचित्र ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हुआ। जिस नराधम को उन्होंने दंड देकर अपने हाथ से अलग कर दिया था, उसे नौकरी क्यों मिल गई? यदि दुर्गा इस समय फटेहाल रोनी सूरत बनाए दिखाई देता तो डॉक्टर साहब को उस पर दया आ जाती। वे संभवतः उसे कुछ इनाम देते और प्रेमशंकर से उसकी प्रशंसा भी कर देते। उनकी प्रकृति में दया थी और अपने नौकरों पर उनकी कृपा दृष्टि रहती थी, परंतु उनकी इस कृपा और दया में लेश मात्र भी भेद न था, जो अपने कुत्तों और घोड़ों से भी थी। इस कृपा का आधार न्याय नहीं, दीन पालन है। दुर्गा ने उन्हें देखा, कुएं पर खड़े खड़े सलाम किया और फिर अपने काम में लग गया। उसका यह अभिमान डॉक्टर साहब के हृदय में भाले की भांति चुभ गया। उन्हें यह विचार कर अत्यंत क्रोध आया कि मेरे यहां से निकलना इसके लिए हितकर हो गया। उन्हें अपनी सहृदयता पर जो घमंड था उसे बड़ा आघात लगा। प्रेमशंकर जो ही उनसे हाथ मिलाकर उन्हें क्यारियों की सैर कराने लगे, क्यों ही डॉक्टर साहब ने उनसे पूछा, ये आदमी आपके यहां कितने दिनों से है? यही 6 या 7 महीने हुए होंगे। कुछ नोच खसोट तो नहीं करता? ये मेरे यहां माली था, इसके हथलपकेपन से तंग आकर मैंने इसे निकाल दिया था। कभी फूल तोड़कर बेच आता, कभी पौधे उखाड़ ले जाता, और फलों का तो कहना ही क्या, वे इसके मारे बचते ही न थे। एक बार मैंने मित्रों की दावत की थी, मलिहाबादी सुफेदे में खूब फल लगे थे। जब सब आकर बैठ गए और मैं उन्हें फल दिखाने ले गया तो सारे फल गायब। हजी कुछ न पूछिए, उस समय उस घड़ी कितनी भद्द हुई। मैंने उसी क्षण इन महाशय को दुत्कार बताई, बड़ा ही दगाबाज आदमी है और ऐसा चतुर इसको पकड़ना मुश्किल है। कोई वकीलों ही जैसा काइया आदमी हो तो इसे पकड़ सकता है। ऐसी सफाई और ढिठाई से ढुलकता है कि इसका मुंह देखते रह जाइए। आपको तो कभी चरका नहीं दिया? अजी नहीं, कभी नहीं, मुझे इसने शिकायत का कोई अवसर नहीं दिया। यहां तो खूब मेहनत करता है, यहां तक कि दोपहर की छुट्टी में भी आराम नहीं करता। मुझे तो इस पर इतना भरोसा हो गया कि सारा बागीचा इस पर छोड़ रखा है। दिन भर में जो कुछ आमदनी होती है वो शाम को मुझे दे देता है और कभी पाई का अंतर नहीं पड़ता। यही तो इसका कौशल है कि आपको उल्टे छुरे मुड़े और आपको खबर भी नहीं। आप इसे वेतन क्या देते हैं? यहां किसी को वेतन नहीं दिया जाता, सब लोग लाभ में बराबर के साझेदार हैं। महीने भर में आवश्यक व्यय के पश्चात जो कुछ बचता है उसमें से 10 रुपए प्रति सैकड़ा धर्म खाते में डाल दिया जाता है, शेष रुपए समान भागों में बांट दिए जाते हैं। पिछले महीने में 140 रुपए की आमदनी हुई थी, मुझे मिलाकर 7 आदमी हैं, 20 रुपए हिस्से पड़े। अब की नारंगियां खूब हुई हैं, मटर की फलियों, गन्ने, गोभी आदि सच्ची आमदनी हो रही है, 40 रुपए से कम ना पड़ेंगे। डॉक्टर मेहरा ने आश्चर्य से पूछा, इतने में आपका काम चल जाता है? जी हाँ, बड़ी सुगमता से। मैं इन्हीं आदमियों के से कपड़े पहनता हूं, इन्हीं कैसा खाना खाता हूं और मुझे कोई दूसरा व्यसन है नहीं। यहां 20 रुपए मासिक उन औषधियों का खर्च है जो गरीबों को दी जाती है। ये रुपए संयुक्त आय से अलग कर लिए जाते हैं, किसी को कोई आपत्ति नहीं होती। ये साइकिल जो आप देखते हैं संयुक्त आय से ही ली गई है, जिसे जरूरत होती है इस पर सवार होता है। मुझे ये सब अधिक कार्यकुशल समझते हैं और मुझ पर पूरा विश्वास रखते हैं। बस मैं इनका मुखिया हूं, जो कुछ सलाह देता हूं उसे सब मानते हैं। कोई भी ये नहीं समझता कि मैं किसी का नौकर हूं। सब के सब अपने को साझेदार समझते हैं और जी तोड़कर मेहनत करते हैं। जहां कोई मालिक होता है और दूसरा कोई नौकर, तो उन दोनों में तुरंत द्वेष पैदा हो जाता है। मालिक चाहता है कि इससे जितना काम लेते बने लेना चाहिए। नौकर चाहता है कि मैं कम से कम काम करूं, उसमें स्नेह या सहानुभूति का नाम तक नहीं आता। दोनों यथार्थ में एक दूसरे के शत्रु होते हैं। इस प्रतिद्वंदिता का दुष्परिणाम हम और आप देख ही रहे हैं। मोटे और पतले आदमियों के पृथक पृथक दल बन गए हैं और उनमें घोर संग्राम हो रहा है। कल चिन्हों से ज्ञात होता है कि ये प्रतिद्वंदिता अब कुछ ही दिनों की मेहमान है, इसकी जगह अब सहकारिता का आगमन होने वाला है। मैंने अन्य देशों में इस घातक संग्राम के दृश्य देखे हैं और मुझे घृणा हो गई है। सहकारिता ही हमें संकट से मुक्त कर सकती है। अच्छा, तो ये कहिए कि आप सोशलिस्ट हैं। जी नहीं, मैं सोशलिस्ट या डेमोक्रेट कुछ नहीं हूं। मैं केवल न्याय और धर्म का दीन सेवक हूं। मैं निस्वार्थ सेवा को विद्या से श्रेष्ठ समझता हूं। मैं अपनी आत्मिक और मानसिक शक्तियों को, बुद्धि सामर्थ्य को धन और वैभव का गुलाम नहीं बनाना चाहता। मुझे वर्तमान शिक्षा और सभ्यता पर विश्वास नहीं। विद्या का धर्म है आत्मिक उन्नति का फल। उदारता, त्याग, सदिच्छा, सहानुभूति, न्यायपरता और दयाशीलता, जो शिक्षा हमें निर्बलों को सताने के लिए तैयार करे, जो हमें धरती और धन का गुलाम बनाए, जो हमें भोग विलास में डुबाए, जो हमें दूसरों का रक्त पीकर मोटा होने का इच्छुक बनाए, वो शिक्षा नहीं है। अगर मूर्ख लोभ और मोह के पंजे में फंस जाए तो वे क्षम्य है, परंतु विद्या और सभ्यता के उपासकों की स्वार्थ अंधता अत्यंत लज्जाजनक है। हमने विद्या और बुद्धि बल की विभूति को शिखर पर चढ़ने का मार्ग बना लिया। वास्तव में वो सेवा और प्रेम का साधन था। कितनी विचित्र दशा है कि जो जितना ही बड़ा विद्वान है उतना ही बड़ा स्वार्थ सेवी है। बस हमारी सारी विद्या और बुद्धि, हमारा सारा उत्साह और अनुराग धन लिप्सा में ग्रसित है। हमारे प्रोफेसर साहब 1,000 से कम वेतन पाए तो उसका मुंह ही सीधा नहीं होता। हमारे दीवान और माल के अधिकारी लोग 2,000 मासिक पाने पर भी अपने भाग्य को रोया करते हैं। हमारे डॉक्टर साहब चाहते हैं कि मरीज मरे या जिए, मेरी फीस में बाधा न पड़े। और हमारे वकील साहब, क्षमा कीजिएगा, ईश्वर से मनाया करते हैं कि ईर्ष्या और द्वेष का प्रकोप और सोने की दीवार खड़ी कर लूं। समय धन है, इसी वाक्य में हम ईश्वर वाक्य समझ रहे हैं। इन महान पुरुषों में से प्रत्येक व्यक्ति सैकड़ों नहीं हजारों लाखों की जीविका हड़प जाते हैं और फिर भी उन्हें जाति का भक्त बनने का दावा है। वो अपने स्वजाति प्रेम का डंका बजाता फिरता है। पैदा दूसरे करें, पसीना दूसरे बहाएं, खाना और मूछों पर ताव देना इनका काम है। मैं समस्त शिक्षित समुदाय को केवल स्वार्थी ही नहीं वरन अनर्थकारी भी समझता हूं। डॉक्टर साहब ने बहुत धैर्य से काम लेकर पूछा, तो क्या आप चाहते हैं कि हम सबके सब मजूरी करें? जी नहीं, हालांकि ऐसा हो तो मनुष्य जाति का बहुत उपकार हो। मुझे जो आपत्ति है ये केवल दशाओं में इस अन्यायपूर्ण समता से है। यदि एक मजदूर 5 रुपए में अपना निर्वाह कर सकता है तो एक मानसिक काम करने वाले प्राणी के लिए इससे दुगनी तिगनी आय काफी होनी चाहिए, और वो अधिकता इसलिए कि उसे कुछ उत्तम भोजन वस्त्र तथा सुख की आवश्यकता होती है। मगर 5 और 5,000, 50 और 50,000 का अस्वाभाविक अंतर क्यों? इतना नहीं, हमारा समाज 5 और 5 लाख के अंतर कभी तिरस्कार नहीं करता, वरन उसकी भी प्रशंसा करता है। शासन प्रबंध, वकालत, चिकित्सा, चित्र रचना, शिक्षा, दलाली, व्यापार, संगीत और इसी प्रकार की सैकड़ों अन्य कलाएं शिक्षित समुदाय की जीवन वृत्ति बनी हैं, पर इनमें से एक भी धन उपार्जन नहीं करती। इनका आधार दूसरों की कमाई पर है। मेरी समझ में नहीं आता कि वो उद्योग धंधे जो जीवन की सामग्रियां पैदा करते हैं, जिन पर जीवन का अवलंबन है, क्यों उन पेशों से नीचे समझे जाएं जिनका काम केवल मनोरंजन या अधिक से अधिक धनोपार्जन में सहायता करना है। आज सारे वकीलों को देश निकाला हो जाए, सारे अधिकारी वर्ग लुप्त हो जाएं और सारे दलाल स्वर्ग को सिधारें, तभी संसार का काम चलता रहेगा, बल्कि और भी सरलता से। किसान भूमि जोतेंगे, जुलाहे कपड़े बुनेंगे, बढ़ई लोहार, राज चर्मकार सब के सब पूर्ववत अपना काम करते रहेंगे। उनकी पंचायतें उनके झगड़ों का निपटारा करेंगी, लेकिन यदि किसान न हो तो सारा संसार क्षुधा पीड़ा से व्याकुल हो जाए। परंतु किसान के लिए 5 रुपए बहुत समझा जाता है, और वकील साहब या डॉक्टर को 5,000 भी काफी नहीं।
0: डॉक्टर, आप अर्थशास्त्र के उस महत्वपूर्ण सिद्धांत को भूले जाते हैं जिसे श्रम विभाजन कहते हैं। प्रकृति ने प्राणियों को भिन्न भिन्न शक्तियां प्रदान की हैं और उनके विकास के लिए भिन्न भिन्न दशाओं की आवश्यकता है। मैं ये कब कहता हूं कि प्रत्येक मनुष्य को मजदूरी करने पर मजबूर किया जाए? नहीं, जिसे परमात्मा ने विचार की शक्ति दी है वो शास्त्रों की विवेचना करे, जो भावुक हो वो काव्य की रचना करे, जो अन्याय से घृणा करता हो वो वकालत करे। मेरा कथन ये है कि विभिन्न कार्यों की हैसियत में इतना अंतर न रहना चाहिए। मानसिक और औद्योगिक कामों में इतना फर्क न्याय के विरुद्ध है। ये प्रकृति के नियमों के प्रतिकूल ज्ञात होता है कि आवश्यक और अनिवार्य कार्यों पर अनावश्यक और अनिवार्य कार्यों की प्रधानता हो। कतिपय सज्जनों का मत है कि इस साम्य से गुणी लोगों का अनादर होगा और संसार को उनके सद्विचारों और सत्कार्यों से लाभ न पहुंच सकेगा। किंतु वे भूल जाते हैं कि संसार के बड़े से बड़े पंडित, बड़े से बड़े कवि, बड़े से बड़े आविष्कारक, बड़े से बड़े शिक्षक धन और प्रभुता के लोभ शिक्षक बन जाते हैं। संसार में आज अनगिनत लेखक और कवि, वकील और शिक्षक उपस्थित हैं। वे सब के सब पृथ्वी पर भार रूप हो रही हैं। जब उन्हें मालूम होगा कि दिव्य कलाओं में कुछ लाभ नहीं है तो वही लोग कवि होंगे जिन्हें कवि होना चाहिए। संक्षेप में कहना यही है कि धन की प्रधानता ने हमारे समस्त समाज को उलट पलट दिया है।
1: डॉक्टर मेहरा अधीर हो गए और बोले, महाशय, समाज संगठन का ये रूप देवलोक के लिए चाहे उपयुक्त हो, पर भौतिक संसार के लिए उस भौतिक काल में वो कदापि उपयोगी नहीं हो सकता। प्रेमशंकर जी ने फिर जवाब दिया, केवल इसी कारण से अभी तक धनवानों का, जमींदारों का और शिक्षित समुदाय का प्रभुत्व बना हुआ है वकील साहब। पर इसके पहले भी कई बार इस प्रभुत्व को धक्का लग चुका है और चिन्हों से ज्ञात होता है कि निकट भविष्य में फिर इसकी पराजय होने वाली है। कदाचित वो हार निर्णयात्मक होगी। समाज का चक्र साम्य से आरंभ होकर फिर साम्य पर ही समाप्त होता है। एकाधिपत्य, रईसों का प्रभुत्व और वाणिज्य प्राबल्य उसकी मध्यवर्ती दशाएं हैं। वर्तमान चक्र ने मध्यवर्ती दशाओं को भोग लिया है और वो अपने अंतिम स्थान के निकट आता जाता है, किंतु हमारी आंखें अधिकार और प्रभुत्व के मद में ऐसी भरी हुई हैं कि हमें आगे पीछे कुछ नहीं सूझता। चारों ओर से जनतावाद का घोर नाद हमारे कानों में आ रहा है, पर हम ऐसे निश्चिंत हैं मानो वो साधारण मेघ की गरज है। हम अभी तक उन्हीं विद्याओं और कलाओं में लीन हैं जिनका आश्रय दूसरों की मेहनत है। हमारे विद्यालयों की संख्या बढ़ती जाती है, हमारे वकील खाने में पांव रखने की जगह बाकी नहीं। गली गली फोटो स्टूडियो खुल रहे हैं। डॉक्टरों की संख्या मरीजों से भी अधिक हो गई है, पर अब भी हमारी आंखें नहीं खुलती। हम इस अस्वाभाविक जीवन, इस सभ्यता के तिलिस्म से बाहर निकलने की चेष्टा ही नहीं करते। हम शहरों में कारखाने खोलते फिरते हैं इसलिए कि मजदूरों की मेहनत से मोटे हो जाएं। 30 रुपए और 40 रुपए सैकड़े लाभ की कल्पना करके फूले नहीं समाते, पर ऐसा कहीं देखने में नहीं आता कि किसी शिक्षित सज्जन ने कपड़ा बुनना या जमीन जोतना शुरू किया हो। यदि कोई दुर्भाग्यवश ऐसा करे तो उसकी हंसी उड़ाई जाती है। हम उसी को मन प्रतिष्ठा के योग्य समझते हैं जो तकिया गद्दी लगाए बैठा रहे, हाथ पैर ना हिलाए और लेन देन पर, सूद बट्टे पर लाखों के वारे न्यारे करता हो। यही बातें हो रही थी कि दुर्गा माली एक डाली नारंगियां, गोभी के फूल, अमरूद, मटर की फलियां आदि सजाकर लाया और उसे डॉक्टर साहब के सामने रख दिया। उसके चेहरे पर एक प्रकार का गर्व था, मानो उसकी आत्मा जागृत हो गई है। वो डॉक्टर साहब के समीप एक मोटे मोढ़े पर बैठ गए और बोला, हुजूर को कैसी कलम चाहिए? आप बाबूजी को एक चिट पर उनके नाम लिखकर दे दीजिए, मैं कल आपके मकान पर पहुंचा दूंगा। आपके बाल बच्चे तो अच्छी तरह हैं। डॉक्टर साहब ने कुछ सकुचाकर कहा, हाँ लड़के अच्छी तरह हैं। तुम यहां अच्छी तरह हो? जी हाँ, आपकी दया से बहुत आराम में हूं। डॉक्टर साहब उठकर चले तो प्रेमशंकर उन्हें विदा करने साथ साथ फाटक तक आए। डॉक्टर साहब मोटर पर बैठे तो मुस्कुराकर प्रेमशंकर से बोले, मैं आपके सिद्धांतों का कायल नहीं हुआ, पर इसमें संदेह नहीं कि आपने एक पशु को मनुष्य बना दिया। यह आपके सत्संग का फल है, लेकिन क्षमा कीजिएगा, मैं फिर भी कहूंगा कि इससे होशियार रहिएगा। यूजेनिक्स यानी सुप्रजनन शास्त्र अभी तक ऐसे किसी प्रयोग का आविष्कार नहीं कर सका है जो जन्म के संस्कारों को मिटा दे।
0: अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी पशु से मनुष्य। अपने अगले एपिसोड में फिर किसी ऐसी ही कहानी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने रेडियो मित्र संदीप शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
2: तो दोस्तों, ये था आज का कार्यक्रम सुनो कहानी। हम फिर हाजिर होंगे किसी नए लेखक की नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
3: नमस्ते भोपाल, मैं हूं कैलाश खेर और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।

श्रोताओं, वाहन चोरी की घटनाएं न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में चिंता का विषय बनती जा रही हैं। यहां तक कि अमेरिका और इंग्लैंड जैसे देशों में भी, जहां की पुलिस बहुत ही कुशल मानी जाती है, ये घटनाएं कंट्रोल से बाहर हो चुकी हैं। अमेरिका में तो हर साल 10 लाख से भी ज्यादा कारें चोरी हो जाती हैं और इंग्लैंड में हर 5 मिनट में एक कार चोरों के हत्थे चढ़ जाती है। चोर इतने शातिर हो चुके हैं कि वे सभी सिक्योरिटी डिवाइस को धत्ता बता करके कार उड़ा ले जाते हैं। तो लीजिए, हमारा आज का यह नाटक हाजिर है एक ऐसी ही कार चोरी की काल्पनिक घटना पर, जिसमें चोरों व पुलिस के बीच लगातार आंख मिचोली होती रहती है। इसमें आय स्थानों के नाम और पात्रों के नाम काल्पनिक हैं, तथा कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी की भी चर्चा की गई है जो भविष्य में विकसित हो सकती है और कहीं जगह तो हो भी गई ही है। हमारा उद्देश्य केवल आपका मनोरंजन करना है, आपको सावधान करना है। तो लीजिए, प्रस्तुत है हास्य नाटक कार की चोरी।

0: तो ये लगता है कि जहां। अरे यार, कौन सा सेंट लगाया है आज तूने? बड़ी महक रही हो।
1: छोड़ो ना सेंट वेंट तुम भी।
0: हाँ?
1: अरे अभी देखो दुकान देखते चलते हैं। हाँ, यहाँ रोक दो गाड़ी।
0: अरे यहाँ कहाँ जा
1: रोको ना, वो देखो कहाँ बड़े चले जा रहे हो। रोको ना।
0: एक मिनट।
1: अरे कहाँ बड़े चले जा रहे हो, रोको ना।
0: अरे गाड़ी भी तो लगानी है भाई, कि तुम कहो तो कार समेत दुकान में घुस जाए।
1: अरे इसीलिए तो कह रही थी, लगा देते ना दुकान के सामने, जगह थी तो। अब इतनी दूर मुझे पैदल चलना पड़ेगा, ऐसे ही मुझसे चला नहीं जाता। पेंसिल हिल
0: यार,
1: पहनती हूँ ना।
0: अरे हाँ, इतनी मोटी हो और उसके ऊपर पेंसिल हिल। अरे यार, तुम भी ना पैर में मेहंदी लगाकर घर से निकलती हो। चाहती हो पूरी मार्केटिंग कार में बैठे बैठे ही हो जाए, एक कदम भी पैदल ना चलना पड़े।
1: ये भी कौन सी समझदारी है भाई कि दुकान सामने हो और कार 1 मील ले जाकर पार करें, अब उसके बाद जॉगिंग करते हुए यहाँ तक आए। घर के काम काज में इतनी जॉगिंग हो जाती है हमारी, वो ही बहुत है भाई।
0: कोई शौक वॉक नहीं है मुझे तुम्हारे जॉगिंग वॉगिंग कराने का। कायदे से चलते तो बनता नहीं, जॉगिंग करेंगी। हाथ पकड़कर टोचन न लगाओ तो जाने कहाँ छूट जाए क्वीन विक्टोरिया।
1: सही कहा तुमने, ऐसे घसीटते हो जैसे ये भी नहीं सोचते कि आदमी और औरत की चाल में अंतर होता है। तुम्हें हमारी तरह साड़ी तो नहीं संभालनी होती ना।
0: जी
1: हाँ, बस लगते हो अपने साथ दौड़ाने मुझे।
0: अरे माफ करो यार, माफ करो भाई, गलती हो गई यार, जो बरैया के छत्ते में हाथ डाल दिया। कार लगाने के लिए दाएं बाएं थोड़ी जगह भी तो होनी चाहिए यार, टर्निंग वर्निंग करनी होती है। ऊपर से नो पार्किंग जोन था वो, पता चला इधर हम लोग दुकान में घुसे और उधर ट्रैफिक पुलिस आई और ले गई गाड़ी को उठा के।
1: अरे तो पार्किंग में ही खड़ी कर दो ना, पास ही में तो है।
0: अच्छा यार, बड़े अच्छे, मुझे तो मालूम ही नहीं था ये बात कि पार्किंग में भी गाड़ियां खड़ी होती हैं।
1: मजाक मत करो।
0: हाँ, बताने के लिए शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।
1: जब देखो तब है ना, टोंटी मारते रहते हो मुझे। तुम्हें याद दिला दिया तो कोई गुनाह कर दिया क्या?
0: नहीं नहीं पर
1: नहीं, सोचते हो सारी अकल तो बस तुम्हारे ही पास है, बाकी सबका तो ऊपर चैम्बर खाली है।
0: देखो मैडम, बाकी सबका तो मैं नहीं जानता, पर आपके ऊपर जरूर फिट बैठती है ये बात। इतनी खूबसूरती देकर भी जब उसने तुम्हें दुनिया में भेजा तो तुम्हारे भेजे में भेजा ही नहीं भेजा।
1: अच्छा।
0: और हाँ, और अब दिन भर मेरा भेजा खाती रहती हो।
1: अच्छा जी, भेजे में भेजा ही नहीं भेजा। अच्छा किया जो वो भूल गया, नहीं तो
0: क्या जी है? क्या बिगड़ जाता उसका अगर तुम्हारे भेजे में जरा सा भेजा भी डाल दिया होता? दुनिया में भेजे की कमी थोड़ी पड़ जाती इससे। अरे इतना भेजा तो मेरे भेजे की खुरचन से ही निकल आता।
1: जरूर निकल आता, तुम्हारे जले हुए भेजे से खुरचन के सिवा भला और निकल ही क्या सकता है? पर नहीं, वो भी नहीं निकाली उसने, तो इसके पीछे भी एक बड़ी वजह है।
0: अच्छा, बताएंगी नहीं वो वजह मुझे?
1: अब रहने दो, मत ही पूछो, तुम्हारा दिल टूट जाएगा।
0: टूटने दो दिल, कोई परवाह नहीं, पर सच्चाई तो अब हम जानकर ही मानेंगे।
1: अब ठीक है, तुम इतना ही जिद करते हो तो ये राज भी हम आज बता ही देते हैं तुम्हें।
0: हाँ बताओ ना, बताओ ना, मैं भी जानने के लिए बेताब हो रहा हूँ।
1: तो सुनो जी।
0: बताओ जी।
1: एक बात बताओगे
0: जी?
1: बिना भेजा भेजे तुमने मुझसे शादी क्यों की?
0: अरे तुम्हारी खूबसूरती देखकर। अरे बेवकूफ जो बन गया था, क्या जानता था कि बिना भेजे की लड़की
1: क्या?
0: ये तो वही हाल हुआ कि हार्डवेयर तो टिप टॉप है पर सॉफ्टवेयर नदारद। बिना सॉफ्टवेयर का कंप्यूटर और बिना भेजे की लड़की।
1: बहुत सही, पर एक बात और बता दो कृपा करके।
0: वो क्या?
1: अपने बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है?
0: क्या मतलब? कुछ रेफरेंस तो दो कि किस किस किस बाबत पूछ रही हो तुम?
1: रेफरेंस?
0: हाँ।
1: अच्छा ठीक है, तो फिर बताओ कि कोई भेजे वाली लड़की क्या तुमसे शादी करती?
0: आहे?

ये मेरा सौभाग्य है, इतने लोग बोल चुके हैं पर ये आज मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ। कारण ये है कि मेरे दादाजी जो मेरे गुरु बचपन से सिखाए, मेरे पिताजी, मेरे गुरु दादाजी के जो गुरु जी थे पंत कंठे महाराज जी, वो बजा चुके हैं। तो ये संगीत में ही हो सकता है, ये किसी और चीज़ में नहीं हो सकता कि एक चार पीढ़ी पहले जिनको मैंने देखा ही नहीं उन्होंने बजाया और मैं क्या बजा सकता हूँ। मेरा तो कोई सौभाग्य, मैं अपने आप को धन्य धन्य, ये जीवन धन्य हो गया मेरा आपके चरणों में बजा के।

समझिए कि पंडित गंडे महाराज जी जिनको हम लोग बब्बा बोलते थे उनके साथ गाए हैं, फिर किशन महाराज जी भैया थे मेरे उनके साथ गाए, फिर उनके बेटे पूरन महाराज जी के साथ गाए, अब उनके बहन का बेटा मेरा नाती हो गया चार खानदान शुभ महाराज उनके संग भी गाते हैं, अब शुभ का बच्चा भी हो गया दो तीन बरस उसके साथ भी गा रहे हाथ पीढ़ी से तबले वाले एक खानदान से गा रहे हैं भैया, ये सब के बच्चे सामने के पैदा हुए हैं, इसलिए मौका दे रहे क्या क्या बनारस की खास लगी का अंदाज है वो बजाना आता है, चलो जल्दी जल्दी गाँव में भूल जाओ।

भजन। हाँ।

0: आज के भारत भारती कार्यक्रम में आपने सुप्रसिद्ध गायिका गिरिजा देवी को सुना। अब ये कार्यक्रम समाप्त होता है। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है।
1: हिंदुस्तान के विभिन्न प्रांतों के संगीत पर केंद्रित कार्यक्रम भारत भारती। भारत भारती।

नमस्कार, मैं हूँ मधुश्री और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए। मैं सलाम करती हूँ देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा में हमेशा तैनात रहते हैं, और साथ ही उन क्रांतिकारियों को भी जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं।

आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। हम सलाम करते हैं उन देश के जवानों को जो सरहदों पर दिन रात तैनात होकर हमारी और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और हम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर हमें ये आज़ादी दिलाई। रेडियो आज़ाद हिंद देश का पहला और एकमात्र ऐसा रेडियो चैनल है जो वीर जवानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अमर गाथाओं को समर्पित है। तो सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। नमस्कार।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: 90.8 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। शाम के 5 बजे हैं, हमारी सांध्यकालीन सभा के प्रसारण में आप सभी का स्वागत है। हमारी सभा जारी रहेगी रात्रि 10 बजे तक। हमारे कार्यक्रमों को सुनने के लिए 90.8 MHz पर सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। आइए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम अक्षय निधि।
2: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय

0: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के 15वें सूक्त से वाचन। ऋषि हैं गृत्समद और भार्गव शौनक। देवता हैं इंद्र। छंद है त्रिष्टुप।
1: प्रघान्वस्य महतो महानि सत्या सत्यस्य करणानि वोचम् त्रिकद्रुकेश्व पिबत्सुतस्यास्य मदे महिमिन्द्रो जघान। उन महान सत्य संकल्पधारी इंद्रदेव के यथार्थ तथा महान कर्मों का हम यशोगान करते हैं। इंद्रदेव ने तीनों लोकों में व्याप्त सोम का पान करके इस सोम से आनंदित होकर अहि राक्षस का वध किया। अवैशे द्यामस्त भायद बृहंतमा रोदसी अप्रणदंतरिक्षम स धारयत पृथ्वीम पप्रथच्च सोमस्य तामद इंद्रश्चकार। सोमरस के पान से उत्साहित होकर इंद्रदेव ने बिना स्तंभों के द्युलोक तथा अंतरिक्ष को स्थिर किया। इन दोनों लोकों को अपनी सत्ता से अनुप्राणित किया तथा पृथ्वी लोक को धारण करके उसका विस्तार किया। सद्मेव प्राचो वि मिमाय मानैर वज्रेण खान्य तृणन्न दीनाम व्रथा सृजत पथिभिर दीर्घयाथैः सोमस्य तामद इंद्रश्चकार। सोमरस के पान से उत्साहित होकर इंद्रदेव ने समस्त संसार को माप करके पूर्वाभिमुख बनाया। अपने वज्र से प्रहार करके दीर्घकाल तक सहज प्रवाहित होने योग्य नदियों का मार्ग बनाया। सब प्रवोड हृन परिगत्या दभीतेर विश्व मधा गायुध मिद्धे अग्नौ सम गोभिरश्वै रसृज दत्रेभिः सोमस्य तामद इंद्रश्चकार। सोमरस के पान से आनंदित होकर इंद्रदेव ने दभीति ऋषि को अपहरित करके ले जा रहे सारे असुरों को मार्ग में ही रोक कर आयुधों से प्रदीप्त हुई अग्नि से जलाकर मारा। उन दभीति ऋषि को गौवों घोड़ों तथा रथों से विभूषित किया। स ईं महीम धुनि में तो ररम्णात्सो अस्नात्रिन पारयत स्वस्ति त उत्स्नाय रैमभि प्रतस्थुः सोमस्य तामद इंद्रश्चकार। सोमरस के पान से उत्साहित होकर इंद्रदेव ने पार जाने में असमर्थों को पार जाने के लिए विशाल नदी के प्रवाह को धीमा किया। उस नदी से पार निकलकर ऋषिगण ऐश्वर्य को लक्ष्य करके आगे बढ़ते हैं। सोदंचम सिंधु मरिणान महित्वा वज्रेणान उषसः संपिपेश अजवसो जविनीभिर् विवृश्चन सोमस्य तामद इंद्रश्चकार। सोमरस के पान से आनंदित होकर इंद्रदेव ने अपने पराक्रम से नदी का प्रवाह उत्तराभिमुख किया। उनने अपनी द्रुतगामी सेनाओं के द्वारा उषा की निर्मल सेनाओं को नष्ट करते हुए उसके रथ को छिन्न भिन्न किया था। स विद्वाम अपगोहम कनीनामाविर भवन्नु दतिष्ठत परावृक प्रतिश्रोण स्थादव्य नगचष्ट सोमस्य तामद इंद्रश्चकार। पंगु तथा चक्षुहीन ऋषि परावृक अपने ब्याह के लिए लाई हुई कन्याओं को भागते हुए देखकर उनके पीछे दौड़ पड़े थे। स्तुति से प्रसन्न इंद्रदेव ने उन्हें पैर तथा आंखें प्रदान की। यह कार्य इंद्रदेव ने सोमरस के पान से आनंदित होकर किया। भिनद्वल मंगिरो भिर ग्रणानो वी पर्वतस्य द्रिहितान्यैरत ऋणग्रोधांसि कृत्रिमाण्येषां सोमस्य तामद इंद्रश्चकार। अंगिरा आदि स्तोताओं की स्तुतियों से प्रसन्न होकर तथा सोमरस के पान से उत्साहित होकर इंद्रदेव ने पर्वत के सुदृढ़ द्वारों को खोलकर असुरों की रची हुई बाधाओं को हटाते हुए वल नामक असुर को विदीर्ण किया था। स्वप्नेनाभ्युप्या चुमुरिम धुनिम च जघंथ दस्युम प्र दभीतिमावह रंभी चिदत्र विविदे हिरण्यम सोमस्य तामद इंद्रश्चकार। हे इंद्रदेव, आपने सोमरस के पान से उत्साहित होकर दभीति की रक्षा के लिए दुष्ट राक्षस चमुरी तथा धुनी को दीर्घ निद्रा में सुलाते हुए मारा था। इस अवसर पर दंडधारियों द्वारपालों ने धन प्राप्त किया। नूनम साते प्रतिवरम जरित्रे दुहीय दिंद्र दक्षिणा मघोनी शिक्षा स्तोत्रिभ्यो माति धगभगो नो बृहद्वदेम विदथे सुवीराह। हे इंद्रदेव, आपकी ऐश्वर्य युक्त दक्षिणा स्तोताओं के लिए वरदायक होती है, उसे हमें भी प्रदान करें। आप हमें न त्यागें, हमें भी ऐश्वर्य से युक्त करें। हम यज्ञ में पुत्र पौत्रों सहित महान स्तोत्रों से आपकी स्तुति करें।
0: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के 15वें सूक्त से वाचन। प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम त्रिपाठी।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अक्षय निधि, 90.8 MHz पर सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम भक्ति संगीत। भक्ति केवल पूजा पाठ का नाम नहीं, बल्कि उस विश्वास का नाम है जो कठिन समय में भी हमें संभाल कर रखता है। जब इंसान अपने कर्म करता हुआ परिणाम प्रभु पर छोड़ देता है तो मन का बोझ हल्का हो जाता है। यही विश्वास भक्ति को शक्ति बना देता है।

जब मन विचलित हो तो भक्ति ही वो मार्ग है जो हमें सच्ची शांति देता है। भजन केवल गीत नहीं होते, ये हमारे और ईश्वर के बीच एक पवित्र संवाद होते हैं।

जो अपने क्रोध और प्रतिक्रिया पर संयम रखना सीख लेता है, उसके जीवन में जीवन की कठिनाइयाँ आसान लगने लगती हैं।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। आइए अब सुनते हैं महादेवी वर्मा के जीवन पर आधारित कार्यक्रम वतन का राग।

वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। हमारे बहुविध संस्कृति वाले देश भारत में भाषा भी कई धाराओं को छूती और उसमें से कुछ अमृत बूंदें अपने में समाहित करती चलती है। यही बहुलपन भाषा को एकांगी नहीं रहने देता, बल्कि उसे और जीवंत, समाज के लिए उपयोगी बना देता है। यही भाषा हमारे विचारों की संवाहक बन जाती है, जिसे समृद्ध करते हैं लेखक, साहित्यकार। पीढ़ी दर पीढ़ी ये साधना जारी रहती है। इन्हीं साधकों में से एक हैं महादेवी वर्मा। नाम के अनुरूप अपनी काव्य साधना से मनुष्य की महानता, उसके भाव रूपों का चित्रण करने वाली महादेवी। 19वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में जहां स्वाधीनता की गर्जना करने वाली कविताएं रची जा रही थीं, वहीं दूसरी ओर कोमल भावों वाली छायावादी काव्य रचनाएं भी लिखी जा रही थीं। महादेवी भी छायावाद के सशक्त कवियों में से एक मानी जाती हैं। उनका जन्म 26 मार्च सन 1907 को फर्रुखाबाद में हुआ था। उनकी माँ धार्मिक विचारों वाली सुसंस्कृत महिला थीं, जिनका हिंदी और संस्कृत भाषा पर अच्छा अधिकार था। घर में उदारवादी वातावरण था। उनके दादा उन्हें परम विदुषी बनाना चाहते थे। सामाजिक संस्कारों के बंधन में उनका विवाह मात्र 9 वर्ष की आयु में ही हो गया, लेकिन विवाह सफल नहीं रहा। बाद में महादेवी को इलाहाबाद के प्रसिद्ध क्रॉस्थवेट कॉलेज में पढ़ने भेजा गया। यहां विभिन्न धर्मों की लड़कियां पढ़ाई करती थीं। इससे उनके सांस्कृतिक एकता के विचारों को बल मिला। सुप्रसिद्ध कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान हॉस्टल में उनके साथ रहती थीं। महादेवी जी गुपचुप अपनी कॉपी में कविताएं लिखा करती थीं। सुभद्रा कुमारी चौहान उम्र में उनसे बड़ी थीं और अपने काव्य लेखन के लिए प्रसिद्ध हो चुकी थीं। एक दिन सुभद्रा जी ने महादेवी की कॉपी में लिखी कविताएं देख ली। उन्होंने कॉलेज में सगर्व इसकी घोषणा कर दी कि हमारे बीच एक सुंदर कविताएं लिखने वाली भी है। अब दोनों मिलकर अपने लेखन पर आपस में चर्चाएं करती और लिखती। महादेवी जी ने बाद में अपने संस्मरण मेरे बचपन के दिन में लिखा, जब सारी लड़कियां खेल कूद में व्यस्त रहती थीं, तब शाम को मैं और सुभद्रा पेड़ की डाल पर बैठकर अपने विचार और भाव एक दूसरे को बताती और कविताएं रचने का प्रयास करती। सुभद्रा खड़ी बोली में लिखा करती थी। धीरे धीरे मैंने भी खड़ी बोली में लिखना शुरू कर दिया। ऐसे में बात बात में हम रोज एक या दो कविताएं लिख लेते थे। हॉस्टल के बगीचे में वसंत को खिलता देख सुभद्रा जी ने जलियांवाला बाग पर ये मार्मिक रचना लिखी थी।

सन 1916 में गांधी जी बनारस आए और उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन अवसर पर विस्फोटक भाषण दिया। स्वाधीनता का बिगुल जैसे बज उठा हो। सारे देश के विद्यार्थियों में हलचल मच गई। महादेवी जी भी सुभद्रा के साथ इस आंदोलन में शामिल हो गईं। खादी के वस्त्र पहनने का उन्होंने प्रण ले लिया और आजीवन वो खादी ही पहनती रहीं। कविता के सुर बदलने लगे। दोनों सहेलियां विभिन्न पत्रिकाओं में अपनी कविताएं भेजने लगीं। सन 1929 में महादेवी जी ने अपनी बीए की पढ़ाई पूरी की। पूरा उत्तर प्रदेश आजादी की लड़ाई में कूद पड़ा था। इलाहाबाद इसका प्रमुख केंद्र बन चुका था। महादेवी जी ने अब शिक्षा को अपने मिशन के रूप में चुना और आसपास के गांव के स्कूलों में पढ़ाना शुरू किया। वैवाहिक जीवन की असफलता के बाद अब महादेवी जी ने अपनी सारी चेतना साहित्य की ओर मोड़ दी। छायावाद के रोमांटिक युग में उनकी कविताएं एक अलग भावभूमि लेकर छा गईं। कवि सम्मेलनों में उनकी मधुर वाणी और मन की व्यथा एकाकार हो एक नया रूप बनाती थी। उन्होंने लिखा, बांच ली मैंने व्यथा की बिन लिखी पाती नयन में, मिट गए पद चिन्ह जिन पर हार छालों ने लिखी थी, खो गए संकल्प जिन पर राख सपनों की बिछी थी, आज जिस आलोक ने सबको मुखर चित्रित किया है, जल उठा वह कौन सा दीपक बिना बाती नयन में। बुद्ध के जीवन और उनके विचारों का उन पर बहुत प्रभाव था। बुद्ध की ही तरह वे अपनी कविताओं में दुख से त्राण पाने का संकल्प लिए लिखती रहीं। उनकी कई कविताओं में बुद्ध सीधे उतर आते हैं, जैसे हिम शीतल अधरों से छूकर तप्त कणों की प्यास, बिखराती मंजुल मोती से बुद्ध में उल्लास। एक अन्य कविता में वे बुद्ध के जीवन के स्वप्नों को प्रतीक बनाती हुई लिखती हैं, प्रिय इन नयनों का अश्रु नीर, दुख से आविल सुख से पंकिल, बुद्ध से स्वप्नों से फेनिल, बहता है युग युग से अधीर, प्रिय इन नयनों का अश्रुनीर, प्रिय इन नयनों का अश्रुनीर। सरल शब्दों में अपने मनोभावों को पिरोकर उन्होंने असंख्य गीत लिखे जिन्होंने हिंदी साहित्य को समृद्ध किया।

महादेवी जी ने अपनी कई कविताओं में प्रकृति के अनूठे चित्र गढ़े हैं। जैसे फूलों का गीला सौरभ पी बेसुध सा हो मंद समीर, भेद रहे हो नैश तिमिर को मेघों के बूंदों के तीर। एक अन्य कविता में चातक की याचना का सुंदर विवेचन है। नव मेघों को रोता था जब चातक का बालक मन, इन आंखों में करुणा के घिर घिर आते थे सावन। 19वीं शताब्दी के आरंभ से ही खड़ी बोली में हिंदी का विकास हुआ। इस तरह खड़ी बोली के विकास के 20-25 वर्षों में ही जिस हिंदी का रूप हमारे सामने आता है, उसके प्रणयन में महादेवी जी का योगदान अतुलनीय है। उनकी काव्य वेदना आध्यात्मिक है। इसमें आत्मा का परमात्मा के प्रति आकुल प्रणय निवेदन है। विश्व की संपूर्ण प्राकृतिक सुषमा और शोभा को वे एक अलौकिक चिर सुंदर की छाया मात्र के रूप में देखती हैं। मीरा सगुण रूप में परम पुरुष को देखती हैं, वहीं महादेवी जी उसकी आराधना निर्गुण रूप में करती हैं। अपने असंख्य शब्द चित्रों से जुगनुओं की उजियारी में उसे वर्णित करती हैं, वंदित करती हैं। किसी किसी कविता में उनका बचपन भी अंगड़ाई लेने लगता है। तितली से अपनी इस कविता में वे अपनी करुणा तितली पर उड़ेलती हुई कहती हैं, नेह बरसने वाला है मेरी खिड़की में आ तितली, बाहर जब पर होंगे गीले धुल जाएंगे रंग सजीले, झड़ जाएगा फूल न तुझको बचा सकेगा छोटी तितली, नन्हे तुझको पकड़ पाएगा डिब्बी में रख ले जाएगा फिर किताब में चिपकाएगा, मर जाएगी तब तू तितली खिड़की में तू छिप जा तितली खिड़की में तू छिप जा तितली। महादेवी जी ने एक शिक्षक के रूप में अपना जीवन शुरू किया था। बाद में वे प्रयाग महिला विद्यापीठ से जुड़ी और जीवन के अंत तक प्राचार्य और फिर कुलपति के रूप में अपनी सेवाएं देती रहीं। इस दौरान वे लगातार लिखती रहीं। उनका गद्य भी पद्य जैसा ही रोचक और ललित है। यात्रा संस्मरण, रेखाचित्र, ललित निबंध, सभी शैलियों में उनका लेखन अप्रतिम है। अपने रेखाचित्रों में वे अपने घर और आसपास के सभी संगी साथियों को ममत्व से देखती हैं, उन्हें याद करती हैं। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान उनकी हुंकार उनके गीतों में देखी जा सकती है, जब ज्वाला से प्राण तपेंगे तभी मुक्ति के स्वप्न ढलेंगे, उनको छूकर मृत सांसें भी होंगी चिंगारी की माला, मस्तक देकर आज खरीदेंगे हम ज्वाला, मस्तक देकर आज खरीदेंगे हम ज्वाला। एक अन्य गीत में वे तिरंगे के सम्मान में लिखती हैं, विजय नी तेरी पताका तू उड़े तो रुक नहीं सकता हमारा विजय रथ है, मुक्ति ही तेरी हमारे लक्ष्य का आलोक पथ है, आंधियों में कब मिटा तूने अमिट जो चित्र आका, विजयनी तेरी पताका विजयनी तेरी पताका। अपनी मातृभूमि को याद कर महादेवी जी ने लिखा, अनुराग मई वरदान मई भारत जननी भारत माता, मस्तक पर शोभित शत दलसा यह हिमगिरी है शोभा पाता, नीलम मोती की माला सा गंगा यमुना जल लहराता, वात्सल्यमयी तू स्नेहमयी सौंदर्यमयी श्रृंगारमयी, तू तपोमयी तू सिद्धमयी भारत जननी भारत माता। पद्मभूषण, पद्म विभूषण, ज्ञानपीठ पुरस्कार और साहित्य अकादमी फेलोशिप जैसे कई सम्मानों से अलंकृत महादेवी जी की शब्द यात्रा 11 सितंबर सन 1987 को थम गई। वे अनंत में विलीन हो गईं।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: हेलो पप्पू पेजर बोल रहा हूँ। ए झंटू ले झटक दादा ना मटक और मेरी बात गले में सटक।
2: नमस्कार, मैं हूँ सतीश कौशिक, आप सुन रहे हैं 90.8 MHz पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: देवे।
1: नमस्कार, मैं हूँ रेखा भारद्वाज
0: ससुराल गेंदा फूल
1: और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: मेगाहर्ट्ज पर सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आमने सामने।

पद्मश्री नेचुरली मैन जो मुझे मिला, और वो भी मेरे बहुत प्रिय प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम जी से जब मुझे मिला तो मुझे बहुत फ़ख्र हो रही थी, गर्व भी हो रहा था। और फिर एक एक्चुअली स्ट्रेंज है कि उस टाइम से एक भारतीय होने के नाते एक गर्व था कि ओके आई बिलोंग टू दिस कंट्री, मैं भारतीय हूँ, मैं भारत में रहती हूँ और भारत ने मुझे मेरा काम रिकग्नाइज किया है।

0: कॉलेज में हेमंत कुमार जी मिले, उनके साथ स्टेज पे गाते गाते एक दिन अचानक हेमंत कुमार जी का फ़ोन आया कि कल कॉलेज मत जाओ, राजकमल स्टूडियो में आ जाओ, गाना है। तो चार लाइन लिखवाया उन्होंने और लता जी के साथ मैंने टैगोर सॉन्ग गाया।
1: ये बातचीत हमने उनसे की जब वो भोपाल आई स्वाधीनता दिवस के अवसर पर आज़ादी का महापर्व कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुति देने।

0: कविता जी से बातचीत के बीच में आप उन गीतों को भी सुनेंगे जिन गीतों की प्रस्तुति हुई कार्यक्रम आजादी का महापर्व में। तो आइए सुनते हैं मशहूर पार्श्व गायिका कविता कृष्णमूर्ति से ये बातचीत।
1: थोड़ा सा आपको बचपन में लेके जाऊंगा मैं, क्योंकि आप लोग धरोहर हैं, आपका बचपन कहाँ बीता? हालांकि हम लोगों को मालूम है, लेकिन पीढ़ियों के लिए हमारे पास आपकी रिकॉर्डिंग्स रहनी चाहिए। बचपन कहाँ बीता, क्या संगीत का माहौल था, क्या किस्मत आपको संगीत में ले आई?
2: मैं दिल्ली में पैदा हुई हूँ और बिल्कुल टिपिकल साउथ इंडियन फैमिली, तमिलियन फैमिली में, और मेरे हमारे बहुत क्लोज फ्रेंड्स जो एक ही घर में हम रहते थे, बंगाली भट्टाचार्यस, हम कृष्णमूर्ति, तो दो दो माएँ, दो दो फादर्स के साथ बड़ी हुई हूँ। तो दोनों कल्चर में आप जानते हैं कि संगीत बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है। तो होते होते मेरे फादर गवर्नमेंट सर्विस में थे, फिर भी जब मैं 7-8 साल की थी, पहले मैं टैगोर सॉन्ग रविंद्र संगीत सीखती थी, क्योंकि कालीबाड़ी के पास रहती थी। वहाँ मुझे एक अवार्ड मिला पहले कंपटीशन में, मैं कह रही हूँ मुझे अवार्ड मिला होगा 1960 में। तो उसके बाद म्यूज़िक टीचर ढूंढ के हिंदुस्तानी, हालांकि मम्मी को कर्नाटिक म्यूज़िक आता है, पर वो बोली नहीं तुम दिल्ली में हो तो यहाँ हिंदुस्तानी म्यूज़िक के टीचर बेटर मिलेंगे आपको, तो यहाँ से हिंदुस्तानी शुरू करते हैं। तो मेरे बलरामपुरी मेरे सबसे पहले गुरुजी, और फिर गंधर्व महाविद्यालय जाके मैं एग्ज़ाम से थी, तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। पर कोई फिल्म म्यूज़िक में आने का कुछ था नहीं, क्योंकि माहौल तो था नहीं, और मैं सोची इंडियन फॉरेन सर्विस जाऊँगी, मेरा वही शौक था। लेकिन हमारे इलाके में रहती थी हेमा मालिनी जी लेक स्क्वायर में रहती थी, बचपन की दोस्त हैं मेरी सिस्टर और वो बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तो हेमा मालिनी जी ड्रीम गर्ल बन गई, बहुत बड़ी स्टार बन गई। तो ये मेरी आंटी हैं, बंगाली आंटी हैं, जिनको मैं मामूनी कहती हूँ, उन्होंने कहा नहीं मैं तुम्हारी फ्यूचर प्लेबैक सिंगिंग में देख रही हूँ। तो स्कूल ख़त्म होते ही उन्होंने मेरे फादर को कहा कि मेरी बेटी तो आपकी बेटी और आपकी बेटी मेरी बेटी, तो मैं इसको तो बॉम्बे लेके जाऊँगी। तो बॉम्बे गई मैं, वहाँ पे कुछ पेइंग गेस्ट के हिसाब से यहाँ वहाँ रहे, हेमा जी का सब, और हेमा जी की मम्मी जया चक्रवर्ती जी का सपोर्ट रहा, तो उन्होंने कुछ लोगों से इंट्रोड्यूस करवाया। तो यहाँ प्रोग्राम्स, फिर कॉलेज में ग्रेजुएशन करना सेंट जेवियर्स में, कॉलेज में हेमंत कुमार जी मिले, उनके साथ स्टेज पे गाते गाते एक दिन अचानक हेमंत कुमार जी का फ़ोन आया कि कल कॉलेज मत जाओ, राजकमल स्टूडियो में आ जाओ, गाना है। तो चार लाइन लिखवाया उन्होंने, और लता जी के साथ मैंने टैगोर सॉन्ग गाया श्रीमान पृथ्वीराज फिल्म में। वहीं से मेरी करियर आस्ते आस्ते आस्ते आस्ते बढ़ती बढ़ती गई। और जब कॉलेज ख़त्म किया, मेरे फादर तब स्विट्ज़रलैंड में थे, वो इंटरनेशनल वाइपो में थे, तो उन्होंने मेरे लिए एक सीट लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में रखा था। पर मैंने फादर को कहा, मैंने कहा फादर यू प्लीज़ गिव अवे द सीट, आई वॉन्ट टू डू माई म्यूज़िक, आई डोंट वॉन्ट टू डू माई मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स, आई वॉन्ट टू डू माई म्यूज़िक। तो उन्होंने वो सीट सरेंडर, ही सेज आर यू श्योर यू वांट टू डू योर सिंगिंग, आई सेड यस एब्सोल्युटली। तो वो मतलब वहाँ से मेरी यूएस की टूर्स मन्नादा के साथ, फिर थोड़ा यहाँ जिंगल्स गाना ऐसे करते करते
1: मैं वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ। एक बीच में आपसे एक सवाल ज़रूर पूछूंगा, अभी आपने भी कहा था क्लासिकल सिंगिंग और फिल्मी सिंगिंग, तो उस ज़माने में मन्नाडे जी जो हैं, रफ़ी साहब हैं, एक लंबी लिस्ट, लता जी हैं, सब सीख के ही आए, और अब इतने बरस बीत गए हैं, अभी आपने जिक्र किया, मैं उसका दोहराऊंगा नहीं, तो क्या क्या कुछ आप फ़र्क महसूस करती हैं? आपने क्योंकि खयाम साहब का जिक्र किया, नौशाद साहब ने सबका जिक्र किया, और अपनी नई पीढ़ी, जो दो तीन बड़े फ़र्क हैं वो आपकी नज़र में क्या हैं?
2: एक्चुअली उस टाइम ना एक परिवार की तरह काम होता था, जैसे लक्ष्मीकांत जी के सिटिंग रूम होता था, तो हम पहले ही पहुँच जाते थे, गाना याद करते थे, राइटर बख्शी साहब होते थे, प्रोड्यूसर डायरेक्टर होते थे, एक टीम जैसे होते थे। फिर स्टूडियो में जाओ तो 100 म्यूजिशियंस, 80 म्यूजिशियंस, सबके साथ काम होता था, और राइटर रहते थे, कुछ मैंने गलत गाया, या फिर डायरेक्टर आके बताते ये सिचुएशन है तुम इसलिए गा रहे हो। वो अभी नहीं है, अभी कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि मैंने गाया है और म्यूज़िक डायरेक्टर है अभी नहीं वहाँ पर, असिस्टेंट ने रिकॉर्डिंग करवाया, और कभी ऐसा भी हुआ है कि मेरे साथ ड्यूएट कौन गाने वाला है, या किस पे फिल्माया जा रहा है, कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिलेगा। तो ये सब फ़र्क है, और पहले लिपसिंक होता था हमारे गाने पे, अब वो गाने काफ़ी बैकग्राउंड में भी चला जाता है। अभी मैं परदेस फिल्म का एक गाना सुना रही हूँ,

0: शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
1: अगर आप अपने संगीत सफर पर और कुछ कहें, रियाज को लेकर कुछ बातें हमारे श्रोताओं से साझा करना चाहें तो।
2: पहले नेचुरली रियाज ज़्यादा होता था, अब रोज़ एक कैप्सूल के तरह रियाज होता है, क्योंकि जब जैसे आज गाना है मुझे तो मैं बहुत ज़्यादा रियाज करूँगी सुबह तो स्टेज पे आते आते थक जाऊँगी, इसलिए एक छोटा सा मेरा स्वर साधना होता है जिसमें नॉर्मली स्टैंडिंग नोट्स का, क्योंकि एक स्टैंडिंग नोट ही स्पेशली हर संगीत में, लाइट म्यूजिक में भी स्टैंडिंग नोट का बहुत स्टेडी होना ज़रूरी है, तो वो स्टेडीनेस के लिए जैसे योगा होता है वैसे ही ब्रीदिंग सिंगिंग की जो होती है, तो उसके लिए एक लॉन्ग नोट का प्लस फिल्म गानों में रेंज बहुत ज़रूरी होते हैं, तो फिर ऊपर के नोट्स खुला रहे इसलिए एक नीचे से मंत्र सप्तक से तार सप्तक तक एक जो रन जो होता है वो करना बहुत ज़रूरी होता है, वो एक मेंटेन होता है वॉइस उससे, तो वो मैं रोज़ करती हूँ। और बाकी यहाँ वहाँ गाना हो जाता है, पर घर पे भी हूँ तो संगीत का एटमॉस्फेयर है मेरे घर पे। एक्चुअली आफ्टर आई मैरिड माय हस्बैंड उसके बाद ग्लोबल म्यूज़िक की तरफ ज़्यादा मैं मुड़ी, और उनके वजह से बहुत सिम्फनी ऑर्केस्ट्रास के साथ, कुछ जैज़ आर्टिस्टों के साथ काम करने का मौका मिला, तो बहुत मेरी आँख में कहते हैं खुली भी है, क्योंकि हम पहले ज़्यादा फिल्मी म्यूज़िक के तरफ मेरा ध्यान था, उसके बाद मैंने देखा कि ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंटलिस्ट से मिली जो अपनी ज़िंदगी अपने इंस्ट्रूमेंट के लिए दे चुके हैं, और फिर वो इंस्ट्रूमेंट ह्यूमन वॉइस के तरह बोलता है, और अक्रॉस द लैंग्वेजेस बैरियर्स भी, जब संगीत एक स्टेज पे आते हैं लगते हैं कि लैंग्वेज या रिलीजन कोई भी बैरियर नहीं होता है, ये बाउंड्री सब क्रॉस हो जाता है, संगीत वो सात सुर में हम इंटरनेशनली लोगों से मिल सकते हैं, और सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा में भी जैसे एक भारत सिम्फनी करके है और नवग्रह सिम्फनी है जो मेरे हस्बैंड ने मेरे वॉइस के लिए लिखा है, उसमें मैंने देखा कि अलग प्रांतों का, जैसे कजाकिस्तान में गई मैं तो वहाँ के जो क्वायर है वो मेरे साथ संस्कृत के श्लोक गा रहे थे, उनको मैंने एक थोड़ा उच्चारण बताया पर अपने से उठाकर एकदम सही गाते हैं, और तब इतना अच्छा लगता है कि उनकी आवाज़ से संस्कृत के श्लोक जब मैं सुनती थी मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो आई फील कि म्यूज़िक इज़ इंटरनेशनल और इससे बहुत बियॉन्ड बॉर्डर्स जो बोलते हैं, इट गोज़ बियॉन्ड बॉर्डर्स।
1: जब 90 का दशक आया और वो जो दौर था, फ्यूचर अगर मैं सीधा पूछूं जो फ्यूचर है सिंगिंग का, उसको आप कैसे देखती?
2: पर मुझे लगता है कि फ्यूचर जो होना भी चाहिए कि इंडिपेंडेंट म्यूज़िक का होना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो हैं वो भी मेहनत कर रहे हैं अपने हिसाब से, तो उनके जो गाने हैं वो YouTube में डालना, फिर उनका चैनल शुरू करना, उसमें से जो अच्छे गाते हैं बच्चे अवार्ड्स में उनको अवार्ड्स मिलना, तो इंडिपेंडेंट म्यूज़िक का ही फ्यूचर मैं देख रही हूँ। वो ज़माना चला गया जब लोग को लगे कि मैं फिल्मों में गाऊँ तभी मेरा नाम होगा, फिल्मों में 4-5 गाने हिट हो जाएं तो मेरा फ्यूचर बन गया, अभी वो नहीं हो सकता क्योंकि फिल्म आता है और जाता है पता भी नहीं चलता उसमें क्या गाना है, तो फिल्मों के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहिए, इंडिपेंडेंट म्यूज़िक मेहनत करते इंडियन इंडिपेंडेंट म्यूज़िक अपना चैनल अपना स्टाइल बरकरार रखते होते, पता चला एक दिन वो स्टाइल लोगों को पसंद है, तो दैट इज़ द ओनली फ्यूचर आई एम सीइंग इंडिपेंडेंट म्यूज़िक। देखिए वैसे मैं आजकल के बच्चों को कुछ सिखा नहीं सकती क्योंकि वो बहुत तेज़ हैं, और जो रियलिटी कॉन्टेस्ट में जो बच्चे गाते हैं तो मैं तो दंग रह जाती हूँ उनका गाना सुनकर, और ये डेफिनेटली सोशल मीडिया या इंस्टाग्राम या यूट्यूब के वजह से, वो जो गाते हैं सुन सुन सुन के उन्होंने इंटरनेशनल म्यूज़िक सुना है जो हम बचपन में नहीं सुने, हमको ये मौका नहीं था, उस सब को सुन के कुछ अपने हिसाब से तैयार होते हैं और अपनी तैयारी से वो गाते हैं, तो उस हिसाब से दे आर वेरी वेरी स्मार्ट, उनको मैं कुछ एडवाइस दे नहीं सकती, पर ये कहूँगी कि गुरु शिष्य परंपरा हमारे देश की एक बहुत बड़ी पूंजी है, हमारे देश नहीं पूरे इंटरनेशनल में भी जहाँ पे भी लोग अपना कला अपनी लेगेसी बच्चों को ग्रैंड चिल्ड्रन को स्टूडेंट्स को बांटा है, ये बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि गुरु के साथ कैसे बैठना कैसे उठना कैसे गाना सीखना और फिर उसे टेप नहीं करना, कानों से सुनकर याद रखना, हमारे ज़माने टेप रिकॉर्डर नहीं था, तो एक आदत सी हो जाती है कि सुन सुन के याद करने की, अल्फाज हो या गाना भी हो सुन सुन के, तो वो सब है वो अपने आप को और भी मजबूत बनाता है, तो गुरु शिष्य परंपरा इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, आप सीख लो वो उसके बाद अपना जो भी कुछ आप करना चाहते हो करो, पर बेसिक फाउंडेशन तो मेरे हिसाब से वो होना चाहिए। एंड नाउ फॉर आवर नेक्स्ट सॉन्ग।

0: शुक्रिया, थैंक यू।
1: कार्यक्रम आमने सामने में आप सुन रहे थे मशहूर प्लेबैक सिंगर कविता कृष्णमूर्ति से बातचीत। हमें उम्मीद है आपको यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगले कार्यक्रम तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: सुनते रहिए 90.8 MHz पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम वाकर्थ। आज सुनिए सविता भार्गव और उनके साथियों से रचना पाठ।

0: सबसे पहले आपसे मुखातिब हैं पल्लवी त्रिवेदी।
1: मेरी पहली कविता संगीत से ही शुरू करना चाहती हूँ। कविता का शीर्षक है राग अरण्य। जंगल में जो संगीत होता है, मुझे लगता है चाहे तानसेन जी ने बनाए हों जितने भी राग या कहीं पे भी, हम प्रकृति के संगीत से ही उपजे होंगे सारे संगीत, जैसा मैं सोचती हूँ ऐसा। सो मेरा पहली कविता है राग अरण्य। पतझर की एक सांझ घिर रही है, सतपुड़ा का जंगल आज राग अरण्य की एक नई सिंफनी रच रहा है। पपीहे और मोर ने षडज से धैवत तक का दीर्घ आलाप उठाया है। अबाबील और फुल चुक्कियाँ साध रही हैं द्रुत लय की ताने। कटफोड़वा और ठठेरा बसंता ने सागौन पर झपताल का ठेका दिया है। और सहसा कहीं दूर एक बाघ खरज का पंचम लगा बैठता है। गुणवंत साजिंदे, झींगुर और टिड्डे तानपुरा साधे बैठे हैं। नदी की लहरें बजाती है मंजीरा मगन अपने तट पर, और सूखी पत्तियों पर छनक उठते हैं किसी खरगोश के पदचाप के घुंघरू। पतझर के मौसम में जंगल विदा के सबसे सुंदर गीत गाता है। पतझर के मौसम में जंगल विदा के सबसे सुंदर गीत गाता है। हवा की सांसों को पीकर बांस बदल गए हैं बांसुरी में। हवा की सांसों को पीकर बांस बदल गए हैं बांसुरी में। सैकड़ों टिमटिम जुगनुओं की नाजुक रोशनी में झरती पत्तियों पर सैकड़ों टिमटिम जुगनुओं की नाजुक रोशनी में झरती पत्तियों पर कांप रहा है कोमल गांधार, कांप रहा है कोमल गांधार। थैंक यू, शुक्रिया। अगली कविता है पिता। ओ पिता, तुम हमेशा एक नाराज बच्चे थे, अपने ही अतीत के बंधक, अपने ही मन के कुएं में औंधे पड़े। तुम चट्टान बनने को अभिशप्त थे, जबकि तुम बालू की तरह झर रहे थे। किसी रोज तुम मुंह फुलाकर अकेले बैठ जाना चाहते थे। किसी रोज तुम्हारे अश्रु नर्मदा बन जाना चाहते थे। तुम पैर पटक कर कहना चाहते थे उस दिन, आज सिर्फ मुझे लाड़ करो। पर तुम्हारे भीतर का बच्चा बाहर के पिता से हार गया। तुम्हें किसी ने भी नहीं मनाया, किसी ने भी तो नहीं कहा रो लो जी भर कर, ढह जाओ इस कांधे पर। जिन हाथों को तुम्हें अंक में भर लेना था, वे हाथ ट्यूशन फीस की फरमाइश के लिए आगे बढ़े। जिन आँखों को तुम्हारी पीड़ा देख लेनी थी, उन आँखों में तुम्हारे ज़िद्दी स्वभाव के लिए सैकड़ों शिकायतें उमड़ती रहीं। जिन होठों को तुम्हारा माथा चूम लेना था, वे तुम्हारी पीठ पीछे भुनभुनाते रहे। एक बच्चा बचपन से बचपन को तरसता रहा। एक बच्चा 51 साल जिया और अपने ही मन के कुएं में डूब गया। ओ पिता, मुझे क्षमा कर देना, मैंने कुएं की मुंडेर तक आने में देर कर दी। प्रेम कविता, शीर्षक है प्यार का फूल। दूरियों का क्षोभ मत करो तुम, दूरियों का क्षोभ मत करो तुम। मुलाकातों के सिलसिले के खत्म होने को होने से मन को अवसाद में ना भरो। मंदिर की घंटियों की तरह सारा दिन तुम्हारे कानों में बजती वह आवाज़ अब मौन हो गई है, तो जी उदास न करो। तुम्हारी देह को उसकी देह के स्पर्श का आश्वासन अब नहीं, तो तनिक भी न घबराओ। प्यार का फूल पौधे पर ज़्यादा देर नहीं टिकता, तुम्हारी प्रिय किताब के सबसे प्रिय पन्ने पर ही इसे अब उम्र बितानी है। अगर अब स्वप्न में भी उसकी आमद विरले ही होने लगी है, तो अपनी नींदों से झगड़ा मत करो। तुम्हारी स्मृति से अगर उसके साथ के सुंदर वाकये लुप्त होने लगे हैं तो दिमाग पर कतई जोर न डालो। मत सोचो कि उसे स्मरण कर कितने महीनों से तुम्हारे नेत्र नहीं छलछलाए हैं। उस कसम को ना निभा सकने के लिए खुद को मत कोसो जो तुमने उसका हाथ थामकर उठाई थी। क्षण भर को भी तुझे भूलूं तो पाप की भागी बनूं। बिछोह की पीड़ा का तर्पण सिर्फ विस्मृति की नदी में ही संभव है। बिछोह की पीड़ा का तर्पण सिर्फ विस्मृति की नदी में ही संभव है। प्यार के एक मुलायम झोंके से हमारा सर्वस्व जोर से कांप कर थिर हो जाता है। प्यार के एक मुलायम झोंके से हमारा सर्वस्व जोर से कांप कर थिर हो जाता है और उस कंपन से हृदय तल पर जो घटता है वही है ध्येय प्यार का और वही हासिल भी। वही है ध्येय प्यार का और वही हासिल भी।

0: और यह है रचना पाठ संगीता गुंदेचा का।
1: ये जो दो कविताओं का जोड़ा है इसका नाम है फ्रिदा काहलो। फ्रिदा काहलो मेक्सिको की चित्रकार थी और एक कविताओं का जोड़ा है फ्रिदा काहलो। एक फ्रिदा काहलो का जीवन बहुत कष्टमय था लेकिन उसके बिना भी वो चित्र बनाती रही। और आप कभी फिल्म देखेंगे या उनके बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चले। मैं कविताएं सुना देती हूँ, दो छोटी कविताएं। फ्रिदा काहलो एक। शाम की पीड़ा का यह सांवलापन। फ्रिदा काहलो, मैं मरना चाहती हूँ लेकिन मुझे नहीं पता मरा कैसे जाता है। जो चीज़ हमें मारती है वही जिंदा रखती है। फ्रिदा काहलो दो। आह शाम की पीड़ा का यह सांवलापन। फ्रिदा काहलो, मैं जीना चाहती हूँ लेकिन मुझे नहीं पता जिया कैसे जाता है। जो चीज़ हमें जिंदा रखती है वही मारती है। आत्ममुक्त। क्या फर्क पड़ता है दुनिया को, तुम तोड़ो पहाड़, तुम मंगल ग्रह के एकांत में पीछा करो चम्मच का। सघन पीड़ाओं से अलंकृत तुम्हारा मन, शब्दों और अर्थों का अंतर्द्वंद, तुम्हारे उत्सर्गों और प्रेम का अविरल छंद, यही सब बनाता है उसे जो तुम हो। इसलिए एक लेखक का आत्ममुग्ध होना नहीं शोभता प्रिय, एक लेखक का आत्ममुग्ध होना बिल्कुल नहीं शोभता।

0: और ये हैं सविता भार्गव।
1: दरवाजे के बाहर बैठकर जब तक खोलो नहीं कपाट, म्याऊं म्याऊं करती रहती है। कटोरी में दूध उसके सामने रखती हूँ, पीते हुए जरा भी चपर चपर नहीं करती। पेट की खिदमत करने के बाद वो चुपचाप पेड़ के नीचे बिखरी पत्तियों पर बैठकर धूप सेकने लगती है और अपनी देह को ऐसी आकृति देती है जैसे वो पृथ्वी की रीढ़ हो। रात में वो जरूर डरावनी लगती है, आंखें उसकी ऐसी चमकती हैं अंधेरे में, भर जाती है देह में झुरझुरी। चांद की रोशनी में उसकी रेंगती हुई छाया में प्रेत का भ्रम होता है। पता नहीं क्यों सुबह जब वो दरवाजे पर बैठ जाती है, भुला देती हूँ उसका डरावना रूप और पुचकारती हूँ उसे, मन में हो जैसे खास जगह। अचरज होता है कैसे संभाले हैं उसने अपने दो रूप। दो रूपों की वो अनूठी मिसाल है, पालतू बनने के लिए रहती है व्यग्र, लेकिन समझती है अपने को मालकिन। अविराम घूमती पृथ्वी की तरह, एक शब्द स्त्री की तरह सुंदर, एक वाक्यांश पुरुष की तरह स्त्री के आगे थोड़ा झुक कर खड़ा। एक शब्द स्त्री की तरह सुंदर, एक वाक्यांश पुरुष की तरह स्त्री के आगे थोड़ा झुक कर खड़ा। एक पूरा वाक्य आधी स्त्री और आधे पुरुष के योग से बना। एक शब्द स्त्री की व्यथा की तरह, एक वाक्यांश पुरुष की समर गाथा की तरह, एक पूरा वाक्य अविराम घूमती पृथ्वी की तरह। दाम्पत्य और कविता। कविताएं मेरे पास आए उसके पहले मैं रसोई तक पहुंच गई होंगी, बिस्तर झाड़ते संवारते घर इतनी सहज साधारण दिख रही होंगी कि शब्द उछलकर अलमारी की किताबों में दुबक गए होंगे। मानती हूँ शब्द का जीवन से रिश्ता है, लेकिन शब्द मानते नहीं। उनकी एक ही रट है, एकांत में दुबको या उड़ो। उन्हें नहीं चाहिए मेरा सुकून, उदासी चाहिए, लेकिन नहीं चाहिए ओढ़ी हुई उदासी। जीवन जो पहचान में आए नया, उसी में देखते हैं शब्द अपनी पहचान। अब आप बताएं, दाम्पत्य सवारूं कि कविता करूं? प्रेम कविता। भरोसा। मैं अंधेरे पर भरोसा करती हूं जो मुझे सहलाता है अज्ञात पंख से, और मैं कांपती पलकों में सो जाती हूं। मैं उजाले पर भरोसा करती हूँ जो आंखें खोलते ही खिल उठता है, और मैं बहती चली जाती हूँ उसकी तरफ। मैं अपने इस घर पर भरोसा करती हूँ जिसमें मैं रहती हूँ सालों से और जो बस गया है मेरे भीतर। मैं अपने शहर की गलियों पर भरोसा करती हूँ जो आपस में जुड़कर इधर से उधर मुड़ जाती हैं, और जहाँ ख़त्म होती है कोई गली मुझे वहाँ मेरी धड़कन सुनाई पड़ती है। ऐ आदमी, मुस्कुराते हुए जब तुम मुझ में खो जाते हो, मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। जब जानवर मरते हैं चीले मंडराती हैं, जब पेड़ मरता है, जब जानवर मरते हैं चीले मंडराती हैं, जब पेड़ मरते हैं टूट पड़ते हैं दुनिया भर के कीट पतंग, जब पानी मरता है लोगों में बेचैनी बढ़ने लगती है, लेकिन स्त्री मरती है तो मर जाता है जीवन का संगीत। आखिरी कविता। माँ वापस जा रही है। माँ किस दिनों तक, कुछ दिनों तक रही, अब वापस जा रही है। मेरे घर का एक छोटा सा कोना खाली हो जाएगा, फिर भी बनी रहेगी कुछ दिनों माँ की गंध। कुछ दिनों तक अकेले खाना खाने की मन में भरी रहेगी टीस। कुछ दिनों तक शायद पानी भी अच्छा ना लगे। माँ शब्द के उच्चारण से मन में कसक पैदा होने लगी है। माँ वापस जा रही है और मेरे भीतर कोहरा बैठ रहा है। धन्यवाद।

कार्यक्रम वागर्थ में आप सुन रहे थे रचना पाठ। ये कार्यक्रम आयोजित किया गया ध्रुपद संस्थान भोपाल में। आज कार्यक्रम वागर्थ में इतना ही, फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वाक अर्थ। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: सुनते रहिए 90.8 MHz पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। आइए अब सुनते हैं शहीद भगत सिंह नाटक के तीसरे दिन की कुछ अंश हमारे आज के विशेष कार्यक्रम में।
2: नमस्कार, 90.8 MHz पर यह रेडियो आजाद हिंद है। अब वक्त विशेष कार्यक्रम का। आज के इस खास कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं शहीद भगत सिंह नाटक के संपादित अंश।

0: जिसका मंचन हुआ 23 मार्च यानी शहीद दिवस के मौके पर। इस नाटक का निर्देशन किया सुंदरलाल मालवीय ने। यह प्रस्तुति रही मार्च शैली में। ये इस कार्यक्रम का तीसरा और अंतिम भाग है।
1: मित्रों, मैंने जयदेव जी के असेंबली का पास वायस राय की निगरानी रखाओ कही दियो है।
2: ठीक है भगत, तुम असेंबली में बम फेंकवा के मत जाओ, आफत में पड़ी जाओ, और ये मैं नहीं चाहूँ। अभी तुम्हारो भायर रहना जरूरी है।
3: सही बात है
1: आजाद जी, आप निश्चिंत रहो, मैं तो यो सब जनता के जगावा का वास्ते कर लू।
2: तो ठीक है,
1: हमारी चिंता मत करो।
2: तो ठीक है, पन साथियों आप सब सुनी लो, आपके बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह को ध्यान रखना।
4: आज 8 अप्रैल 1929 को दल ने अपने भगत सिंह, अपना साथी, उनका साथ असेंबली का माय
5: कार्यवाही शुरू की जाए। लेडीज एंड जेंटलमैन,

0: हमारा सभी साथी लाहौर जेल में, आजाद जी फरार है और हमारा जीवन तो मृत्यु साधना का सिद्धांत पर चली रही है और हम अपनो बयान या जेल में नहीं सीधो सेशन जज की अदालत का मैदान का तीन कलम
1: जिंदाबाद
0: वंदे
1: मातरम
0: समाजवाद
1: मुर्दाबाद।
2: 4 जून 1924 का दिन भगत सिंह जी की पेशी दिल्ली की अदालत में हुई। कार्यवाही शुरू की जाए।
0: जज साहब, कानून पे कानून तमलाव हो और हमारे घना डराव हो। फ्रांस रूस की क्रांति देखो, कोई भी नहीं दबाई पायो। आजादी को कारगो ऐसे ही आगे बढ़ते जाएगो और फांसी अगर न्याय तमारो तो फंदा कम पड़ जाएगा। दस साहब, हमारी बात सुनी के नौजवान में जोश खूब भराएगा। सच्चा वीर सपूत भारत माँ का देश पे बलि बलि जाएगा। इनकलाब
1: जिंदाबाद
0: वंदे
1: मातरम
0: समाजवाद
1: मुर्दाबाद।
2: देखो देखो आपने भगत सिंह के बयान का सच। आखो देश भगत सिंह जी का साथ हुई गयो ने बच्चों देश का ऊपर बलिदान करवा के लिए तैयार हुई। अबे 10 जून 1929 का दिन फैसला आवे।
3: ओ रामलाल जी।
4: अरे हाँ, कई बात है रामलाल।
3: राव थोड़ा इधर आओ जरा।
4: हाँ,
3: काम की बात है।
4: हाँ।
3: हमारे मालूम है
4: कहीं
3: भगत सिंह ने बट्टू केशर दत्त को आजीवन कारावास की सजा भई है।
4: हाँ, और
3: ने भगत सिंह के मियाँ वाली जेल में।
4: हाँ।
3: ने बट्टू केशर दत्त के लाहौर जेल में भी सीधी है।
4: अरे?
3: और वहाँ पे भी होनो। इनके साथ साथ सारा खेती होन भी सब भूख हटा के बैठी जा। भगत सिंह ने वहाँ कितनो परेशान कर रखे।
4: तुम सही कह रहे हो, वहाँ लाहौर जेल में भी बट्टू केशर दत्त ने ऐसो ही माहौल बनाई रखे।
3: हाँ, तो थोड़ा ध्यान रखा कर अपना।
4: तुम भी अपना ध्यान रखा करो। ठीक है, मिलते हैं फिर।
0: मैंने इंस्पेक्टर जनरल के पत्र लिखो कि हमारे यहाँ से लाहौर जेल भेजो जाए। और बिन ने हमारी बात मानी ली है और अब मैं भी लाहौर जेल में आई हूँ।
2: दस जुलाई 1929 का दिन भगत सिंह जी की पेशी हुआ वाली थी, लेकिन बटू केशव दत्त और भगत सिंह की हालत ऐसी थी कि वे दो ही चले भी नहीं पाई गया था। जो सब सुनी के भारत की जनता का मन में अंग्रेज सरकार के खिलाफ आक्रोश बढ़तो जा रही थी। वे दोनों ही कदोई अदालत का माय हड़ताल पे बैठी गया। यो सब होने से अदालत की कार्रवाई में बाधा पहुंची, जब इनके पाछो जेल में पहुंची।
0: सरकार की परेशानी तो बढ़ती जा रही है, हमारा साथियों की हालत दिन पे दिन खराब हो रही है। सरकार तो चाह रही है कि हड़ताल खत्म हो जाए, पर यहाँ हड़ताल तो चली रही है। तो हमारो ध्यान अब अपना साथियों की जान बचाव में। ए सुनो जरा, हमारा साथियों के पानी की हो जाए।
5: ए सुनो, भगत सिंह वान हड़तालियों को पानी की जगह दूध दिया जाए।
4: सब दूध के मटके इनके लिए पहले से ही भरवा के रख दिए।
5: दूध हम में से कोई भी इना दूध के हाथ भी नहीं लगाए दो,
6: हम पानी ही पियांगा। थोड़ी देर मटका के,
0: थोड़ी देर मटका उनके।
5: हे व्हाट हैपेंड? सब इन हड़तालियों ने, कैदियों ने तो सारे दूध का मटका फोड़ दिया इनने। अरे इन हड़तालियों को पानी ही देना पड़ेगा, अगर इनमें से किसी को कुछ हो गया तो ऊपर क्या जवाब देंगे?
0: जी सर। साथियों, अगर हमारा मित्र यतीन्द्रनाथ जी की मृत्यु नहीं होती तो हम पानी के कभी हाथ भी नहीं लगाता और या हड़ताल भी कभी समाप्त नहीं करता।
7: भगत, तुमने इन अंग्रेजों की हकीकत जनता के सामने लाके रखी थी।
0: मारो जो मकसद हो, मैं उनमें सफल हो तो जा रही हूं और हमारा मनोबल अब और बढ़ते जा रही है। इनकलाब।

0: कि नौजवान मालूम है ये नौजवान जो है नौजवान ये अपराधी नहीं है, और ये तो क्रांतिकारी है, क्रांतिकारी, हाँ क्रांतिकारी है,
1: क्रांतिकारी देशभक्त।
2: भगत सिंह जी की रणनीति से लाहौर षड्यंत्र रचियों ने पूरी अपना साथी उनका माए भी ने जोश भरी। 1 मई के लाहौर षड्यंत्र केस की सुनवाई की।
3: इनकलाब
4: जिंदाबाद,
3: वंदे
4: मातरम,
3: भगत सिंह,
2: सुखदेव, राजगुरु। कार्यवाही शुरू की जाए।
3: जज साहब, देश की खातिर कौन बाजी लगाएगा और सुनिए कि महफिल में हमारा इम्तहान होएगा। ए खुदा उदन भी आएगो जदे हम कायम होवांगा, जदे अपनी जमीन और अपना आसमान होएगा। इनकलाब
4: जिंदाबाद,
3: वंदे
4: मातरम,
3: साम्राज्यवाद
4: जिंदाबाद।

इनकी पिटाई देखी के आगा हैदर खान वहां से चलिया गया। तो फिर एक दिन फैसला आयो कि सुखदेव राजगुरु ने भगत सिंह जी के जल्द से जल्द फांसी दे दी।

0: बेटा भगत?
1: हाँ पिताजी।
0: मैंने सुने थे फांसी हुआ वाली।
1: हाँ पिताजी, तुमने सही सुनी, हमारे फांसी हुआ वाली है।
0: देशभक्ति है इतनी बड़ी, हम समझा मां ने बाप, हरो छोरो फांसी चढ़ी दी, सीना में चली दिया।
1: पिताजी म्हारी मौत जीवन से कीमती, सबके यो बतानो है, देश प्रेम की लो लगे ऐसो फर्ज निभानो है। तम मोह में मत पड़ जो, तमारो बेटो देश का वास्ते शहादत दई के देश की आजादी को रस्तो पक्को करनो चाहिए है।
0: ठीक है भगत, वंदे मातरम।
2: वंदे मातरम।
0: वंदे मातरम।
2: वंदे मातरम।
3: बेटा महारा, यो कई होएगी?
1: माँ तू रोएगी तो लोग कहेगा कि वीर की मार हो रही है, भगत सिंह की मार हो रही है। तुम्हारी बात सुन माँ,

0: मैं थारा जैसे वीर सपूत की माँ हूँ।
1: तू अपनो ध्यान रख जे माँ, बेन तू भी अपनो ध्यान रख जे।
2: ठीक है भैया। भैया तमारो यो बलिदान आपको देश याद रखेगा। इंकलाब
3: जिंदाबाद,
2: इंकलाब
3: जिंदाबाद,
2: इंकलाब
3: जिंदाबाद।

धोनी के कौन टाली सके, वह तो अटल सत्य। समय सब गुंगो हुई के देखी हुई, लो फांसी को पैगाम है। आपके मालूम भगत सिंह की फांसी से अंग्रेज सरकार इतने डरेगी कि उनके एक दिन पहला फांसी पे चढ़ावो को हुक्म दिया। आखो देश, आखो देश भगत सिंह के बचावा की प्रार्थना करेगी। माँ ऐसो भाई चाहिए, माँ ऐसो बेटो चाहिए, बहन ऐसो भाई चाहिए, सबकी आख्या नम, मारी भी नम।

0: ये था मार्च 6 शहीद भगत सिंह। इसे लिखा था श्री सुंदरलाल मालवीय और यशस्विनी निगम ने। परिकल्पना, निर्देशन और संगीत श्री सुंदरलाल मालवीय।
1: आज के इस खास कार्यक्रम में आप सुन रहे थे नाटक शहीद भगत सिंह के संपादित अंश। ये इस कार्यक्रम का तीसरा और अंतिम भाग था। अगले कार्यक्रम तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए अब सुनते हैं टैगोर नाट्य महोत्सव की रेडियो रिपोर्ट।

0: आइए चलते हैं कुछ पलों के लिए टैगोर नाट्य महोत्सव में।
1: अरे वो जानता था कि ये ठीक नहीं है, शायद दोनों को पाना संभव नहीं, पर फिर भी वो शर्मिष्ठा का साथ चाहता था। एक अजीब मीठी सी कसर उसके मन में घर कर गई थी।
2: अगली सुबह स्टेशन पर राजकिशोर जी और सुनंदा जी के साथ वो भी आई, उन्हें सी ऑफ कर दो, और गाड़ी आने तक वो सुरेखा से ही बातें करती रही। और जब दूर क्षितिज पर गाड़ी का इंजन दिखा तो वो सौमित्र के पास गई और बोली,
3: कब आएंगे?
1: आप कभी तो अपनी रुक जाएं। जब आप बुलाएंगे?
3: भूलिएगा नहीं, जल्दी आइएगा।
1: गाड़ी में से हाथ खिलाते हुए सुमित्र ने देखा कि शर्मिष्ठा अपनी आंखों के कोर में आए आंसू पोंछ रही थी। कि आंसू किसके लिए थे? सुमित्र के लिए या सुरेखा के लिए? शर्मिष्ठा उसका मन गहरी उदासी से भर आया।
3: राजनगर से बटा हुआ मन लेकर वापस हुआ, उसमें सुरेखा का सहज आत्मीय प्यार था तो शर्मिष्ठा का गहरा आवेग भी। सुरेखा की शांत स्नेहिलता थी तो शर्मिष्ठा की ऊष्म चंचलता भी। और सुरेखा के साथ धरती पर रहने की आकांक्षा थी तो शर्मिष्ठा के साथ नीले आकाश में उड़ने की इच्छा भी।
2: उसका किसी काम में मन नहीं लगता, वो शर्मिष्ठा के बारे में सोचता रहता। सुरेखा के लिखे पत्रों में वो खोजता क्या, उसके बारे में कुछ पूछा? और आखिर लंबे खत के बाद सौमित्र कैसे हैं?
4: अरे शर्मिष्ठा के फोन आने पर वो उसके इर्द गिर्द ही घूमता रहता था ताकि उसे भी बात करने का मौका मिले। और जब सुनंदा उसे कहती कि शर्मिष्ठा तुम्हारे बारे में पूछ रही थी तो उसका मन बल्लियों उछलने लगता था।
5: अरे सुनो, उसने राजनगर ट्रिप का एक फोटो जिसमें वो सुरेखा और शर्मिष्ठा समित के समुद्र किनारे खड़े हुए हैं अपने ऑफिस की ड्रॉर के अंदर छुपा के रखा हुआ है। और रोजाना, हाँ सही कह रहा हूँ, रोजाना कम से कम एक बार तो निकाल कर उसे देख ही लेता है। इस पर उसका ये मन कहता उससे,
4: दिस इज मैडनेस, ये पागलपन है।
2: सो व्हाट, मुझे अच्छा लग रहा है।
4: अरे तो तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा।
2: क्या पता कुछ हासिल हो ही जाए,
4: तो एक बार फोन करके बात कर लो, बात आसान हो जाए।
2: अरे ऐसी भी क्या जल्दी है,
4: चलो बाहर में जाओ।
3: शर्मिष्ठा आ रही है।
4: हैं? अच्छा बात, कैसे?
3: कैसे क्या, हम से मिलने आ रही है, बहुत दिनों से कह रही थी तुम्हारी याद आ रही। मैंने कहा आ जाओ एक दो दिन साथ में। सुनो तुम दो एक दिन की छुट्टी ले लेना, कहीं घूमने चलेंगे।
4: दो एक दिन की छुट्टी क्या, मैं तो पूरे 15 दिन की छुट्टी ले रहा हूँ। हाँ, देखते हैं।
3: मैं नहा कर आती हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें बहुत अच्छी सी कॉफी पिलाऊंगी।
6: ओके

0: अगले दिन टूर का बहाना करके वो शहर से बाहर चला गया और कुछ महीनों तक वो ऐसा ही करता रहा। उसके मन में अजब सा तूफान मचा था और अगर ऐसा था तो फिर वो समझ क्यों नहीं पाया।
1: आखिर वो कह तो ठीक ही रही, उसे खुद कोई भ्रम नहीं पालना चाहिए था।
0: जो भी हो, पर वो फिर खुद क्यों आगे बढ़ी?
1: क्या बात कर रहे हो, वो कब आगे बढ़ी? सिवा दशमी नॉर्मल प्रवाह में और प्रसन्न से तुम ही ने उसमें आग निकाली।
0: जो भी, पर अभी अब साथ कैसे हटे, कैसे हटे?
1: तुम्हें शुरू में ही कहा था भागो मत, गिरोगे।
0: कई बार खुद की बात मानने का मन नहीं करता, सीमा रेखा तोड़ने की इच्छा होती है।
1: कुनाक में भी तुम्हें चेताया था
0: पर मना भी तो नहीं किया था।
1: अब इससे क्या फायदा, अब तुम मना भी कर दिया।
0: मैं भी कठोरता बरती
1: हूं। नहीं, कठोरता नहीं, याद करो वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोर देकर

0: वो अगले 20 सालों तक शर्मिष्ठा से नहीं मिला। सुलेखा कभी कहती थी कि शर्मिष्ठा का फोन आया था तो मैं याद कर रही थी तो वो टाल जाता। एक आठ बार जब वो इंदौर आई तो स्वामी से टूर पर चला गया और तब तक नहीं लौटा जब तक वो वापस नहीं चली गई।
1: लौटते हुए राजनगर धो आना, मुझे उसे देखने की बहुत मन कर रहा।
2: तो भी साथ चलो ना।
1: मेरा जाना नहीं हो पाएगा, बच्चों की परीक्षा है। तुम जाओ, आकर मुझे खबर दे देना, फिर कभी साथ चलेंगे।
2: ठीक है, मैं तो कलकत्ता जा ही रहा हूँ, लौटते समय एक दो दिन राजनगर होता हूँ। और
0: आज अचानक उसे बहुत तीव्रता से शर्मिष्ठा की याद आई और पूरा घटनाक्रम एक चलचित्र की तरह उसकी आंखों के सामने से गुजर गया। सौमित्र के मन में पीड़ा की एक लहर सी उठी।
3: उसे शर्मिष्ठा के साथ इतनी बेरुखी नहीं बरतनी चाहिए थी।
4: कलकत्ता से राजनगर जाते समय वो इन्हीं सवालों और स्मृतियों में डूबा रहा। और इस बार जब वो स्टेशन पर उतरा तो रसायन की गंध उतनी तीखी नहीं थी और स्टेशन मास्टर के स्थान पर एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति बैठा था जिसने एक क्षण देखने के बाद उससे कहा,
5: अरे सौमित्र बाबू, अरे इतने साल बाद हमारे घर
2: आप चैटर्जी बाबू है ना?
5: हाँ।
2: आप अभी तक यही है?
5: अरे नहीं नहीं, मैंने पूरा उड़ीसा घुमाया है, टिटलागढ़, टीकमपुर, पुरी, सब जगह चलाया है और रिटायरमेंट पास है ना, इसलिए यही घर बना दिया। आप कैसा है?
2: ठीक है।
5: सुरेखा भी क्या?
2: अरे सुरेखा भी ठीक है, बच्चे भी ठीक है, सब इंदौर में है।
5: इंदौर में? वो तो बहुत दूर है, मैं भी एक बार वहाँ गया था।
2: अच्छा,
5: कभी पता सबको लेकर यहाँ आओ ना।
2: जरूर जरूर आऊंगा। अच्छा चैटर्जी बाबू, अभी चलता हूँ, मिलूंगा मैं आपसे।
5: जरूर जरूर।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: 90.8 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम हिंदोस्तां हमारा। आज सुनिए सुब्रमण्यम भारती पर केंद्रित कार्यक्रम।

0: हिंदुस्तान हमारा स्वाधीनता संघर्ष की महाकथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अनुसूचित जाति और जनजाति सहित सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं।
1: अपने ही रक्षकों के भक्षक हम बनते रहेंगे कब तक? मात पिता समान है ये वृक्ष सारे, इनके अंग भंग करते रहेंगे कब तक? नहीं नहीं और नहीं, माँ का आंचल पिता की छाया का सम्मान करना होगा। ये रहेंगे तो हम रहेंगे, ये न रहे तो हमें भी मरना होगा, ये न रहे तो हमें भी मरना होगा।

0: इसका मतलब तुम भी आज से कलम की सिपाही हो गई।
1: कलम की सिपाही बाबा?
0: हाँ शिवानी बेटी। बेटी कलम में वो ताकत होती है जो समाज और देश का भाग्य बदल सकती है।
1: अच्छा?
0: हाँ, हमारे स्वाधीनता संग्राम में इस कलम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कलम के सिपाहियों ने अंग्रेज सरकार के शासन की नींव हिला कर रख दी थी।
1: सच बाबा? क्या सचमुच ऐसा हुआ था?
0: हाँ शिवानी हाँ, कलम के अनेक सिपाहियों ने अपनी कलम को तलवार बनाकर अंग्रेज शासन की जड़ें काटी थी।
1: अच्छा?
0: कलम से निकली कविताओं ने भारतीयों को राह दिखाई थी, स्वाधीनता की अलग जगाई थी।
1: तो बाबा मुझे ऐसे ही किसी कलम के सिपाही के बारे में बताइए ना, जिन्होंने कलम के सहारे स्वाधीनता संघर्ष में अपनी भूमिका निभाई।
0: बिटिया, ऐसे सिपाही तो अनेक रहे हैं, लेकिन आज मैं तुम्हें दक्षिण भारत के जन कवि सुब्रमण्यम भारती के बारे में बताता हूँ, जिनकी कविताओं और लेखों ने अंग्रेज सरकार की रातों की नींद उड़ा दी थी।
1: जी बाबा।
2: ये हम क्या सुन रहा है
3: जनाब?
2: सुब्रमण्यम नाम का कोई आदमी इधर उधर हमारे बारे में कविताएं सुनाता रहता है।
3: अरे जनाब, उसकी ओर ध्यान ना दे, उसका कोई संगठन नहीं है, ना ही वो कोई हथियार रखता है। ऐसे ही मामूली सा पागल सा आदमी है जनाब।
2: ओ नो, पागल वो नहीं, पागल तुम है। तुम हम जानता है पेन की ताकत को। हमारे इंग्लैंड, यूरोप, अमेरिका और फ्रांस में इस पेन ने कई बड़े बड़े बदलाव किए हैं, बड़ी बड़ी क्रांतियां आई हैं। नो, सुब्रमण्यम भारती कोई मामूली आदमी नहीं है, हमें उसका पूरा रिपोर्ट चाहिए। अर्जेंट।
3: जी जनाब।
0: उन्हें महाकवि माना जाता है, और वो इसीलिए कि उनके शब्द तीरों की तरह अंग्रेजी साम्राज्य को छलनी कर देते थे। कला संबंधी ये गुण उनमें जन्मजात ही थे।

0: चांद को देखकर आकाश का चंदा जलता है। क्यों न जले, उसमें भी इतनी चमक कहाँ जो मेरे चांद में है। रही रोशनी की बात, एक दिन सारी दुनिया में मेरे चांद की इतनी रोशनी फैलेगी कि आकाश का चंदा भी शर्मा जाएगा।
1: ग्यारह दिसंबर 1882 को श्री चिन्ना सामी सुब्रमण्यम अय्यर और श्रीमती इला कुम्मी अम्माल के यहाँ सुबैया यानी सुब्रमण्यम भारती का जन्म हुआ था। बिटिया, उनका घर इटैयापुरम नामक एक सुंदर गांव में था। अपने माता पिता की प्रिय संतान सुबैया को माँ का प्यार ज्यादा दिन नहीं मिल पाया। वो केवल 5 वर्ष के ही थे जब उनकी माँ का निधन हो गया। उनके पिता अनुशासन प्रिय थे। वे चाहते थे कि सुबैया इंग्लिश सीखे, गणित में महारत हासिल करे और इंजीनियर बनकर सुविधा संपन्न जीवन जिए। पर कलाओं के प्रति जन्मजात लगाव के कारण सुबैया पढ़ाई में अपना मन नहीं लगा सके। उन्होंने संगीत सीखना आरंभ किया और संगीत में वो इतनी जल्दी पारंगत हो गए कि केवल 11 वर्ष की उम्र में उन्हें राज दरबार में कविताओं और गीतों को संगीतबद्ध करने के लिए बुलाया गया।
2: वाह।
1: यहीं उनके गुणों से प्रभावित होकर उन्हें भारती की उपाधि दी गई, जिसका अर्थ है सरस्वती का पुत्र।
3: ऐसे कैसे चलेगा सुबैया? मुझे बहुत दुख है कि इतना समझाने पर भी तुम अपनी पढ़ाई की ओर ध्यान नहीं देते।
4: परंतु पिताजी, मैं पूरा प्रयास करता हूँ।
3: मैंने देखा है कि तुम पुस्तक लेकर बैठते हो और ना जाने किन कल्पनाओं में खो जाते हो। पता नहीं क्या सोचते रहते हो। मैंने तुम्हारे अंदर जिम्मेदारी की भावना जगाने के लिए एक निर्णय लिया है।
4: निर्णय?
3: मैं तुम्हारा विवाह करवाने जा रहा हूँ।
4: विवाह पिताजी?
3: हाँ, चिल्लामय से तुम्हारा विवाह निश्चित हुआ है। मुझे आशा है कि इसके बाद तुम्हारा जीवन सही राह पर आ जाएगा।
4: पिताजी,

0: सुबैया का विवाह हो गया, परंतु उनका कलाकार मन बंधन में छटपटाने लगा। उन्हें लगने लगा कि दुनिया सिर्फ घर तक ही सीमित नहीं है, उन्हें बाहर की दुनिया को जानना चाहिए, उसे समझना चाहिए। लेकिन वो अपनी भावना अपने पिता के सामने व्यक्त नहीं कर पाए। सुबैया की उम्र उस समय केवल 16 वर्ष की थी जब उनके पिता का भी निधन हो गया। पिता के निधन के कुछ ही समय बाद 1898 में सुबैया बाहरी दुनिया को जानने के लिए निकल पड़े और सबसे पहले पहुंचे काशी।
1: अरे भगीरथ लाए गंगा धरती, तारण पाप हमारे, बोलो हर हर गंगे, बोलो हर हर गंगे, हर हर गंगे।
2: कितना मनोरम दृश्य है। गंगा नदी पूरे भारत की आत्मा है, पूरे भारत को जोड़ती है, हर भारतवासी के मन में बसी है। इसकी लहरें एक के बाद एक कई गीत सुना रही हैं। इनका मधुर संगीत आत्मा को झंकृत कर रहा है।
1: अरे भैया सर, जरा अंगोछा तो देना
3: जी। ये लीजिए।
1: धन्यवाद धन्यवाद। गंगे, लगता है काशी पहली बार आया हो भैया।
3: जी
1: तभी तभी, काशी नगरी की तो बात ही निराली है भैया। सूर्य नमन से लेकर सांझ की आरती तक यहाँ हर पल एक नया दृश्य होता है।
3: मैं इसके हर दृश्य को अपने अंदर समो लेना चाहता हूँ।
1: समो लो भैया और जल्दी से अपने गाँव को निकल लो। कहाँ के रहने वाले हो?
3: मद्रास के गांव एटियापुरम का। पर मैं वापस अपने गांव क्यों निकल लूं? क्या ये पूरा देश मेरा नहीं?
1: अरे अभी तुम्हारी उम्र बहुत छोटी है, इसलिए अभी बहुत सी बातें नहीं जानते तुम।
3: मैं जानना चाहता हूँ आपके कहने का अर्थ क्या है।
1: अरे जरा इधर तो देखो, अंग्रेजों के आने के बाद ये भारत अब भारतीयों का कहाँ रहा? देश पर कब्जा किए बैठे हैं ये अंग्रेज। अरे उनके अत्याचार है कि दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। पता नहीं कब किस भारतीय को पकड़कर जेल में ठूंस दे या फांसी लगा दे।
3: क्या?
1: अरे पता नहीं घर पहुंच पाओ या नहीं, इसलिए कहता हूं कि जल्दी से निकल जाओ।
3: पर कोई हमारे देश पर कब्जा किए बैठा है तो क्या हम उसे बाहर नहीं निकाल सकते? क्या हम इतने कमजोर हैं?
1: अरे भैया, जब कोई संगठित नहीं होता तो कमजोर ही होता है। भारतीय अपने मतभेद भुलाकर संगठित होकर अंग्रेजों को उखाड़ने के लिए काम करे तब तो बात बने, पर कौन समझाएगा उन्हें? कौन उनमें आजादी के लिए जोश भरेगा? कौन लाएगा ये गंगा? कोई नहीं भैया, कोई नहीं। हर हर गंगे, हर हर गंगे।
3: मैं लाऊंगा ये गंगा धरती पर। मैं हर भारतीय के दिल में ये ज्योति जगाऊंगा। अरे आओ बहन, खड़ी हो तो।
4: मुझे मत छूना।
3: क्यों बहन, क्या मेरे छूने से तुम्हें कोई श्राप लग जाएगा?
4: श्राप मुझे नहीं, तुम्हें लग जाएगा। मैं एक विधवा हूँ, विधवा।
3: तुम्हें मदद की जरूरत है बहन, लाओ ये हाथ पकड़ो।
4: नहीं नहीं, मुझे मत छुओ। क्या तुम नहीं जानते कि विधवा क्या होती है? एक मनहूस, जीता जागता श्राप। दूर हो जाओ मुझसे, दूर चले जाओ। जानते नहीं मैं एक विधवा हूँ, विधवा हूँ मैं।
3: महिलाओं पर ऐसा घोर अत्याचार, कितनी दयनीय स्थिति है हमारे देश में महिलाओं की। लोगों को इसके प्रति भी जागरूक होना होगा। अपने देश की शक्ति को वो इस तरह व्यर्थ नहीं कर सकते।
0: घर से बाहर निकलकर सुबैया ने भारत और महिलाओं की जो दयनीय स्थिति देखी, उसने उन्हें झकझोर कर रख दिया। उन्होंने प्रण किया कि वो अपना पूरा जीवन भारतीयों को स्वतंत्रता के लिए अग्रसर करने में लगा देंगे। उन्होंने संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश भाषाएं सीखी। यही काशी में उन्होंने पगड़ी बांधना शुरू किया। उनकी दृष्टि में यह भारतीय सम्मान की प्रतीक थी। वापस आकर सुब्रमण्यम भारती ने मदुरई से थुपत्थी हाई स्कूल में अध्यापक के तौर पर काम किया। साथ ही उन्होंने अपनी कलम भी उठा ली और जीविथाना पत्रिका के संपादक के रूप में उन्होंने काम करना आरंभ कर दिया।
5: भारती जी, मैंने आपके लेख पढ़े हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि आपके लिखने का उद्देश्य क्या है। भाई, आप भारत की स्वतंत्रता की भी बात करते हैं, वर्ण भेद को दूर करने की भी बात करते हैं और महिलाओं के उत्थान की भी बात करते हैं। ये बताइए, आप लोगों को आखिर किस दिशा में ले जाना चाहते हैं?
6: मैं उन्हें स्वतंत्रता की राह पर ले जाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो जी जान से भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करें, लेकिन पूर्ण स्वतंत्रता के लिए।
5: पूर्ण स्वतंत्रता?
6: जी, पूर्ण स्वतंत्रता। हमें अंग्रेजों से आजादी हासिल करने के साथ ही समाज में फैले भेदभाव से भी आजादी हासिल करनी होगी। हमें महिलाओं को भी शोषण से आजादी दिलानी होगी।
5: भाई, बात तो आपकी समझ में आती है भारती जी। जिस देश की इतनी बड़ी जनता दबी कुचली रहती है, उस देश का भविष्य कभी सुनहरा नहीं हो सकता जी।
6: बिल्कुल ठीक। जब तक भारतीय महिलाओं की शक्ति भारत के स्वाधीनता संग्राम में नहीं लगेगी, भारत का स्वाधीनता संग्राम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएगा।
0: कितना सही थे सुब्रमण्यम भारती जी। भारत के स्वाधीनता संग्राम ने आगे चलकर इसी को साबित किया। भारत के स्वाधीनता संग्राम में महिलाओं की भागीदारी होते ही स्वतंत्रता की यात्रा तेजी से अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगी। दिसंबर 1905 में भारती जी एक बार फिर काशी यानी वाराणसी आए। इस बार वो अखिल भारतीय कांग्रेस अधिवेशन में हिस्सा लेने आए थे, पर घर वापस लौटते समय उनकी भेंट स्वामी विवेकानंद की आध्यात्मिक पुत्री सिस्टर निवेदिता से हुई और ये भेंट पूरे जीवन के लिए उन पर एक अमिट छाप छोड़ने वाली थी।
7: भारती जी, मैंने आपकी लिखी हुई कविताएं भी पढ़ी हैं और लेख भी। आपके अंदर जो ज्योति है उसका प्रकाश आप ऐसे ही फैलाते रहे।
6: बहन निवेदिता, स्वामी विवेकानंद जी के वचनों से मुझे हमेशा प्रेरणा मिली है, इसीलिए मैं हमेशा महिलाओं को भारत के स्वाधीनता संग्राम में बराबरी के लिए प्रेरित करता हूँ।
7: ये तो एक अच्छी बात है भारती जी, पर बात केवल स्वाधीनता संग्राम में बराबरी तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। असली मुद्दा महिलाओं के पूर्ण व्यक्तित्व के रूप में विकसित होने का है। वो शिक्षित हों और समाज के हर कार्य को करने का अधिकार उन्हें मिले, तभी एक विकसित भारतीय समाज की कल्पना की जा सकती है।
6: आपने बिल्कुल ठीक कहा निवेदिता बहन। पूर्ण व्यक्तित्व के रूप में विकसित आज की भारतीय महिला के अंदर से उस नई नारी को निकलना होगा और समाज की वास्तविक शक्ति के रूप में अपनी भूमिका

इस समय भारती जी एक तमिल दैनिक स्वदेश मित्रण के सहायक संपादक के रूप में काम कर रहे थे। सिस्टर निवेदिता से भेंट के बाद उनकी लेखनी ने और भी ओजस्वी स्वर में महिलाओं की स्थिति और सामाजिक विषमताओं पर लिखना शुरू कर दिया।

0: आरती जी, एक मिनट। आरती जी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आप एक लड़के को उपनियमन विधि के द्वारा ब्राह्मण बनाने जा रहे हैं?
1: हाँ, मैं वर्ण भेद में विश्वास रखने वालों की आंखें खोलना चाहता हूँ। हाँ, मैं उन्हें दिखाना चाहता हूँ कि इंसान इंसान में भेदभाव का कोई औचित्य नहीं है। यदि कोई भेद है तो वो मुझे बताएं।
0: अरे भारती जी, कई मंदिरों के पुजारी आपके विरुद्ध हो गए हैं, क्योंकि आपने कहा है कि वो वेद और गीता पढ़ाते समय अपने व्यक्तिगत विचार बच्चों के मन में भरते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा है मैंने। किसी धर्म ग्रंथ में वर्ण भेद की बात नहीं कही गई है। ये लोग वेद और गीता पढ़ाते समय अपने व्यक्तिगत विचारों का जहर बच्चों के दिमाग में भर देते हैं। बच्चों को गलत बात सिखाकर वो शिक्षा और देश दोनों की ही हानि कर रहे हैं। उन्हें ऐसा करने से रोकना मेरा कर्तव्य है।
0: अरे,
2: अप्रैल 1907 में भारती जी ने तमिल साप्ताहिक इंडिया और एमपीटी आचार्य के साथ मिलकर इंग्लिश दैनिक बाला भारतम का संपादन आरंभ किया। अब उनके विचार जन जन तक पहुंचने लगे। 1907 में ही उन्होंने सूरत के ऐतिहासिक कांग्रेस अधिवेशन में हिस्सा लिया। यहां वो बाल गंगाधर तिलक, श्री अरबिंदो और दूसरे नेताओं के संपर्क में आए। सुब्रमण्यम भारती तिलक जी के विचारों से बहुत प्रभावित हुए और वो चिदंबरम पिल्लई और कांची वार्थाचार्यार के साथ मिलकर तिलक जी के सशस्त्र क्रांति के विचार का समर्थन करने लगे। 1908 में उन्होंने तब के मद्रास और आज के चेन्नई में स्वयं एक सभा की।
3: हमें अब अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने के लिए जो भी आवश्यक हो करना ही होगा। यदि उन्हें निकालने के लिए हथियार भी उठाने पड़े तो हम उठाएंगे। अंग्रेजों को पता लग जाना चाहिए कि ना तो भारत के सपूत कमजोर हैं और ना ही भारत की सुपुत्रियां। उनके दिन अब यहां खत्म हो गए हैं, उन्हें जाना ही होगा। मैंने अपनी कविताओं वंदे मातरम, इन थायुम थायुम और जय भारत की प्रतियां आप सब में बंटवा दी हैं। इनको स्वयं भी पढ़ें और दूसरों को भी पढ़वाएं। स्वतंत्रता के लिए हर बलिदान देने को तैयार रहें। वंदे।

0: इसके साथ ही सुब्रमण्यम भारती जी भारत के राष्ट्रीय कवि बन गए। अंग्रेज कलम की ताकत से बुरी तरह से डर गए थे। उन्होंने वीओ चिदंबरम पिल्लई को एक झूठे केस में फंसाया। भारती जी ने उनके पक्ष में गवाही दी। बौखलाई अंग्रेज सरकार ने उनके साप्ताहिक इंडिया के मालिक को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी से बचने के लिए भारती जी पौंडीचेरी आ गए, जो उस समय फ्रांस के अधीन था। वहां अंग्रेज सरकार नहीं पहुंच सकती थी।
1: नमस्कार।
2: अरे नमस्कार भारती जी, नमस्कार।
1: मुझे अपने एक साथी का पत्र मिल गया था कि आप यहाँ आ रहे हैं।
2: मैं यहाँ गिरफ्तारी से बचने के लिए नहीं आया हूँ, और ना ही जेल जाने से डरता हूँ भारती जी। मैं अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन को जारी रखना चाहता हूँ, इसलिए यहाँ आया हूँ।
1: पौंडीचेरी आने का मेरा भी यही उद्देश्य है अरविंदो महाशय। यदि मैं जेल चला जाता हूँ तो भारत के लोगों को लगातार स्वतंत्रता संघर्ष के लिए जोश दिलाने का काम नहीं कर पाऊंगा।
2: एक बात कहूँ भारती जी।
1: जी।
2: आप यहाँ से जो पत्रों का प्रकाशन और संपादन कर रहे हैं वो एक प्रशंसनीय कार्य है।
1: धन्यवाद। मैं यहाँ साप्ताहिक इंडिया, विजय और तमिल दैनिक बाला भारतम का प्रकाशन कर रहा हूँ।
2: मैं भी अपने पत्र आर्य और कर्मयोगी का संचालन यहीं से करूँगा।
1: जरूर, मेरा पूरा सहयोग आपके साथ है अरविंदो महाशय।
2: हम यहीं से काम करते हुए अंग्रेज सरकार को भारत से बाहर खदेड़ देंगे। लाला लाजपत राय और वीवीएस अय्यर भी यहाँ आने वाले हैं।
1: आप देखिएगा अरविंदो महाशय, अब भारत शीघ्र ही स्वतंत्र होकर रहेगा।
2: हाँ।
1: मैं तो एक बार फिर से कुडालोर जाकर एक सभा करने वाला हूँ।
2: ये तो बहुत अच्छी बात है भारती जी।
1: जी।
0: कुडालोर में प्रवेश करते ही भारती जी को गिरफ्तार कर कुडालोर की सेंट्रल जेल में डाल दिया गया। वो 3 सप्ताह तक वहां रहे और 14 दिसंबर 1918 को रिहा हुए। अगले वर्ष भारती जी महात्मा गांधी से मिले। स्वाधीनता संघर्ष में लगातार भागीदारी और जेल यात्रा ने उनका स्वास्थ्य बिगाड़ दिया था।
3: भारती जी, आपके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए अंग्रेज सरकार ने आपके आने जाने पर लगी पाबंदियों को हटा लिया है।
1: मैं कहीं जाऊं या ना जाऊं, मेरे शब्द तो हर भारतीय तक जा ही रहे हैं। लो, मेरे मित्र के खाने का समय हो गया। चलूं, उसे अपने हाथों से खाना खिला दूं, वरना वो खाना नहीं खाएगा।
0: भारती जी हाथी के हमले से तो बच गए, पर लगातार गिरते अंदरूनी स्वास्थ्य के कारण आखिरकार 11 सितंबर 1921 को उनकी कलम हमेशा के लिए थम गई। शिवानी बेटा।
4: जी बाबा।
0: उन्होंने एक साथ भारत, भारतीय महिलाओं और समाज के उपेक्षित लोगों की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। आज अपनी स्वतंत्रता का आनंद लेते समय हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारी स्वतंत्रता कितनी कीमती है। प्रत्येक भारतीय महिला और पुरुष के त्याग और बलिदान से हमें यह स्वतंत्रता हासिल हुई है।
4: जी बाबा, मैं कभी नहीं भूलूंगी और अपनी कलम के सहारे और किसी को भी कभी नहीं भूलने दूंगी।
0: जीती रहो बिटिया। वंदे मातरम।
4: वंदे मातरम।
0: वंदे मातरम।
4: वंदे मातरम।
0: वंदे मातरम। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हिंदुस्तान हमारा, निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन, संस्कृति विभाग।

0: जिंदा फिर से हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार श्रोता,
2: सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए आपको सुनवाते हैं विष्णु नारायण भातखंडे जी पर केंद्रित कार्यक्रम कला कल्लोलनी।
1: 90.8 पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है कार्यक्रम कला कल्लोलनी।

0: कला कल्लोलनी। आज के इस कार्यक्रम में हम आपसे बात करने वाले हैं पंडित विष्णु नारायण भातखंडे के बारे में, जिन्होंने संगीत को स्वर से शास्त्र और परंपरा से पाठशाला तक पहुंचाया। आप सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं। नमस्कार, मैं हूं वर्षा सिंह।
1: और मैं रत्नेश सोनी।
0: हमारे खास कार्यक्रम कला कल्लोलनी में जहां हम आपको भारतीय कला और संस्कृति की उन विलक्षण विभूतियों से रूबरू कराते हैं जिनकी साधना ने हमारी विरासत को समृद्ध किया।
1: आज का ये सफर हमें लेकर चलेगा भारतीय शास्त्रीय संगीत की उस दुनिया में जहां स्वर केवल सुनाई नहीं देते बल्कि परंपरा, साधना और ज्ञान की एक पूरी कहानी कहते हैं।
0: और आज हम आपको परिचित करवाएंगे संगीत की एक ऐसी विलक्षण विभूति से जिनकी वजह से भारतीय शास्त्रीय संगीत की अनेक परंपराएं केवल मंचों तक सीमित नहीं रही बल्कि शास्त्र, स्वर लिपि और व्यवस्थित शिक्षा के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रही।
1: एक ऐसे संगीत मनीषी जिन्होंने संगीत को केवल सुना नहीं, उसे समझा, खोजा, लिखा और व्यवस्थित किया। आज की हमारी कहानी है पंडित विष्णु नारायण भातखंडे की, उस महान संगीत शास्त्री की जिन्होंने भारतीय संगीत की विशाल और विविध परंपरा को एक व्यवस्थित स्वरूप देने में अपना जीवन समर्पित कर दिया।
0: तो आइए संगीत की इसी ज्ञान यात्रा पर हमारे साथ चलिए और जानिए उस साधक की कहानी जिसने स्वरों को केवल आवाज नहीं रहने दिया बल्कि उन्हें शास्त्र और आने वाली पीढ़ियों की धरोहर बना दिया।

0: आज हम किसी राग का नाम लेते हैं, उसके आरोह अवरोह की बात करते हैं, किसी बंदिश को स्वर लिपि में देखते हैं, किसी संगीत विद्यालय में व्यवस्थित पाठ्यक्रम के माध्यम से संगीत सीखते हैं, या 10 थाटों के आधार पर रागों की दुनिया को समझने का प्रयास करते हैं, तो इन सब के पीछे हमें एक ऐसे व्यक्ति की अथक साधना दिखाई देती है जिसने अपना जीवन संगीत को समझने, खोजने, लिखने, व्यवस्थित करने और आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित करने में लगा दिया।
1: पंडित विष्णु नारायण भातखंडे का जन्म 10 अगस्त 1860 को बंबई के वालकेश्वर में हुआ था। उनका परिवार शिक्षित और संस्कारवान था। उनके पिता स्वयं संगीत के प्रति अनुराग रखते थे और अपने बच्चों को संगीत सीखने के लिए प्रोत्साहित करते थे। बचपन में संगीत उनके जीवन में आया, लेकिन ये उस समय उनका पेशा नहीं था।
0: उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की, कानून की पढ़ाई की और वकालत के क्षेत्र में भी गए। उनके सामने एक सम्मानजनक और सुरक्षित पेशेवर जीवन था, लेकिन मन का रास्ता अक्सर जीवन की तय राह से अलग होता है। भातखंडे जी के भीतर संगीत के लिए जो जिज्ञासा थी, वह धीरे धीरे इतनी गहरी होती गई कि कानून उनके जीवन का केंद्र नहीं रह गया।
1: सन 1884 में वे गायन उत्तेजक मंडली से जुड़े। ये जुड़ाव उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। यहाँ उन्होंने केवल संगीत सुना नहीं, बल्कि संगीत की शिक्षा, प्रस्तुति और विभिन्न परंपराओं को निकट से समझा। उन्होंने ध्रुपद और ख्याल जैसी परंपराओं की बंदिशें सीखी और अलग अलग संगीतज्ञों के संपर्क में आए। यहीं से उनके भीतर एक बड़ा प्रश्न आकार लेने लगा, आखिर भारतीय शास्त्रीय संगीत का इतना विशाल संसार व्यवस्थित रूप में लिखा क्यों नहीं गया? राग इतने हैं, घराने इतने हैं, बंदिशें इतनी हैं, गायकी की इतनी शैलियां हैं, तालों की इतनी विविधता है, लेकिन इन सब का व्यवस्थित दस्तावेज कहाँ है?
0: संगीत का अधिकांश ज्ञान गुरु से शिष्य तक मौखिक रूप में पहुंचता था। गुरु गाते थे, शिष्य सुनता था। गुरु बजाते थे, शिष्य दोहराता था। गुरु सिखाते थे, शिष्य स्मृति में उसे संजोता था। ये परंपरा अपने आप में अत्यंत समृद्ध थी। उसमें केवल स्वर नहीं, बल्कि अनुभव, भाव, उच्चारण, नींद, गमक, लय और प्रस्तुति की सूक्ष्मता भी पीढ़ी दर पीढ़ी जाती थी। लेकिन इसकी एक सीमा भी थी। यदि किसी बंदिश को जानने वाला अंतिम व्यक्ति उसे आगे ना पहुंचा पाए, तो वह रचना उसके साथ ही समाप्त हो सकती थी। यदि किसी घराने की कोई विशिष्ट परंपरा अगली पीढ़ी तक ना पहुंच पाए, तो उसके साथ संगीत का एक पूरा अंश खो सकता था।
1: भातखंडे ने इसी खतरे को बहुत पहले पहचान लिया था। उन्होंने तय किया कि भारतीय संगीत को केवल सुना और याद नहीं किया जाना चाहिए, उसे लिखा भी जाना चाहिए। और यही विचार आगे चलकर भारतीय संगीत के इतिहास में एक बड़े परिवर्तन का कारण बना। भातखंडे जी ने भारत की यात्रा की। वे अलग अलग क्षेत्रों में गए, संगीतज्ञों से मिले, घरानों के कलाकारों से मिले, गायकों और वादकों से बंदिशें सुनी, संगीत के पुराने ग्रंथों का अध्ययन किया। उन्होंने केवल एक परंपरा को अंतिम सत्य मानकर काम नहीं किया, वे सुनते थे, प्रश्न करते थे, तुलना करते थे और फिर निष्कर्ष तक पहुंचते थे। उनकी यात्राएं वास्तव में भारत की संगीत यात्राएं थी।
0: वैसे समय में यह काम कर रहे थे जब न रिकॉर्डिंग की आधुनिक सुविधा थी और न आज की तरह किसी रचना को तुरंत ऑडियो या वीडियो में सुरक्षित कर लेने की तकनीक। किसी कलाकार से कोई बंदिश सुनना और उसे उसी समय ध्यानपूर्वक लिख लेना, यह अपने आप में असाधारण धैर्य और स्मरण शक्ति का काम था। उन्होंने अनेक घरानों से प्राप्त पारंपरिक रचनाओं को संकलित किया और अपनी विकसित की हुई स्वरलिपि पद्धति के माध्यम से उन्हें लिखित रूप दिया।
1: यहीं से भातखंडे जी के काम का दूसरा बड़ा पक्ष सामने आता है। उन्होंने संगीत के लिए एक ऐसी स्वर लिपि विकसित की जिसके माध्यम से राग, बंदिश और ताल को लिखित रूप में समझना संभव हुआ। आज किसी विद्यार्थी के सामने जब किसी बंदिश की स्वर लिपि रखी जाती है तो वो उसे देखकर अभ्यास कर सकता है। वो केवल ये नहीं कहता कि मेरे गुरु ने मुझे ये बंदिश सिखाई थी। अब उसके पास उसे देखने, पढ़ने और दोहराने का एक लिखित आधार भी होता है। ये परिवर्तन बहुत बड़ा था क्योंकि स्वर लिपि ने संगीत की स्मृति को कागज पर स्थान दिया। लेकिन यहाँ एक बात समझना जरूरी है, स्वर लिपि संगीत का पूरा शरीर नहीं होती।
0: कागज पर स्वर लिखे जा सकते हैं, लेकिन आवाज की पूरी मिठास, स्वर का कंपन, मींड की गहराई, किसी कलाकार की व्यक्तिगत अभिव्यक्ति या राग के भाव का पूरा अनुभव केवल लिखे हुए अक्षरों से नहीं मिल सकता। भातखंडे जी स्वयं संगीत की जीवंत परंपरा को जानते थे, इसलिए उनकी स्वर लिपि का महत्व इस बात में है कि उसने संगीत को संरक्षित करने और सिखाने का एक मजबूत आधार दिया।
1: इसी के साथ उन्होंने एक और बड़ी समस्या को संबोधित किया, रागों का वर्गीकरण। रागों का वर्गीकरण भारतीय संगीत परंपरा में रागों का संसार अत्यंत विशाल था। अलग अलग कालखंडों और परंपराओं में रागों को समझाने और वर्गीकृत करने के अलग अलग तरीके रहे।
0: भातखंडे जी ने इस जटिलता को सरल बनाने के लिए 10 थाटों की व्यवस्था प्रस्तुत की। बिलावल, कल्याण, खमाज, भैरव, पूर्वी, मारवा, काफी, आसावरी, भैरवी और तोड़ी, इन 10 थाटों को आधार बनाकर बड़ी संख्या में रागों को समझने का एक व्यवस्थित ढांचा तैयार किया गया।
1: ध्यान देने वाली बात यह है कि हर राग को किसी एक थाट में पूरी तरह बांध देना हमेशा संभव नहीं है। राग केवल स्वरों का गणित नहीं है, राग का अपना चलन है, उसकी अपनी पकड़ है, उसका आरोह अवरोह है, उसकी अपनी प्रकृति है, उसका समय है, उसका भाव है, उसकी विशिष्टता है। लेकिन अध्ययन के लिए एक व्यवस्थित आधार आवश्यक था।
0: भातखंडे जी का थाट प्रणाली का योगदान इसी अर्थ में महत्वपूर्ण है। उन्होंने संगीत सीखने वाले विद्यार्थियों के सामने एक ऐसा नक्शा रख दिया जिसके सहारे वे रागों की विशाल दुनिया में प्रवेश कर सके। जैसे किसी विशाल शहर को समझने के लिए पहले उसके मुख्य मार्गों का नक्शा चाहिए होता है, वैसे ही रागों की विशाल दुनिया को समझने के लिए थाट एक व्यवस्थित आधार बन गए।
1: लेकिन भातखंडे जी का काम केवल वर्गीकरण तक सीमित नहीं था, उन्होंने संगीत के सिद्धांत और व्यवहार के बीच पुल बनाने का काम किया। भारतीय संगीत के प्राचीन ग्रंथों में संगीत का विशाल शास्त्रीय साहित्य मौजूद था। दूसरी ओर अपने समय के संगीतज्ञ व्यवहार में संगीत की अलग अलग परंपराएं निभा रहे थे। भातखंडे जी ने दोनों संसारों को साथ रख कर देखा।
0: उन्होंने पुराने संस्कृत ग्रंथों का अध्ययन किया, उन्होंने प्राचीन संगीत परंपराओं को समझने का प्रयास किया, साथ ही उन्होंने जीवित संगीतज्ञों से सीखा कि वास्तव में उनके समय में राग कैसे गाए जा रहे हैं। इसका परिणाम ये हुआ कि वे केवल पुस्तकालय के विद्वान नहीं बने और न केवल मंच के संगीतज्ञ,
1: वे शोधकर्ता भी थे, संगीत शास्त्री भी थे, शिक्षक भी थे और संगीत के दस्तावेजीकरण के अग्रदूत भी। उनका काम हमें ये बताता है कि परंपरा को बचाने का अर्थ उसे केवल अतीत में रख देना नहीं है, परंपरा को बचाने का अर्थ है उसे समझना, उसके मूल तत्वों को पहचानना और उसे आने वाली पीढ़ी तक पहुंचने योग्य बनाना। भातखंडे जी ने यही किया।
0: उन्होंने अपने अध्ययन और यात्राओं के आधार पर अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथ तैयार किए। उनकी प्रमुख कृतियों में हिंदुस्तानी संगीत पद्धति और क्रमिक पुस्तक मालिका का विशेष महत्व है। हिंदुस्तानी संगीत पद्धति 4 खंडों में प्रकाशित हुई जबकि क्रमिक पुस्तक मालिका 6 भागों में विस्तृत हुई। इन ग्रंथों में रागों के सिद्धांत के साथ साथ अनेक रचनाओं को स्वरलिपि में दर्ज किया गया।
1: आज भी ये पुस्तकें हिंदुस्तानी संगीत के अध्ययन में महत्वपूर्ण संदर्भ मानी जाती हैं। यहाँ एक दृश्य की कल्पना कीजिए। एक ओर गुरु अपने शिष्य को बंदिश सिखा रहा है और दूसरी ओर कोई व्यक्ति उसी परंपरा को ध्यान पूर्वक सुनकर कागज पर दर्ज कर रहा है। एक व्यक्ति संगीत को अगली पीढ़ी तक आवाज के माध्यम से पहुंचा रहा है, दूसरा व्यक्ति उसी संगीत की स्मृति को शब्द और स्वर के माध्यम से स्थायी बना रहा है। भातखंडे जी की भूमिका कुछ ऐसी ही थी।
0: उन्होंने कलाकारों के अनुभव को विद्वानों के अध्ययन से जोड़ा, उन्होंने परंपरा को पुस्तक से जोड़ा, उन्होंने मौखिक ज्ञान को लिखित ज्ञान से जोड़ा और सबसे महत्वपूर्ण, उन्होंने संगीत को केवल कुछ परिवारों या घरानों तक सीमित रहने के बजाय व्यापक शिक्षा व्यवस्था में पहुंचाने की दिशा में काम किया।
1: यहीं से उनकी दृष्टि का एक और महत्वपूर्ण पक्ष सामने आता है, संगीत शिक्षा का लोकतंत्रीकरण। उनके समय में शास्त्रीय संगीत सीखना मुख्यतः गुरु शिष्य परंपरा और संगीतज्ञ परिवारों तक सीमित था। ये व्यवस्था अपनी जगह अत्यंत प्रभावशाली थी, लेकिन समाज के हर व्यक्ति को उसमें प्रवेश मिलना आसान नहीं था। भातखंडे जी चाहते थे कि संगीत की शिक्षा व्यवस्थित संस्थानों में उपलब्ध हो। इसी विचार ने संगीत महाविद्यालयों और पाठ्यक्रमों की दिशा को प्रभावित किया।
0: लखनऊ में 1926 में मॉरिस कॉलेज ऑफ म्यूजिक की स्थापना हुई। इसमें राय उमानाथ बली और राय राजेश्वर बली जैसे सहयोगियों की महत्वपूर्ण भूमिका थी और भातखंडे ने संगीत के पाठ्यक्रम तथा शैक्षणिक व्यवस्था को आकार देने में निर्णायक योगदान दिया। बाद में यही संस्था भातखंडे के नाम से जानी गई और आज भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हो चुकी है।
1: लखनऊ का ये संस्थान केवल एक इमारत नहीं था, ये उस विचार का प्रतीक था कि संगीत को भी गंभीर शैक्षणिक अनुशासन के रूप में पढ़ाया जा सकता है, कि संगीत केवल मनोरंजन नहीं, संगीत अध्ययन का विषय है, संगीत शोध का विषय है, संगीत में व्याकरण है, संगीत में इतिहास है, संगीत में सौंदर्य शास्त्र है और संगीत में ज्ञान की एक पूरी परंपरा है।
0: भातखंडे जी ने इसी सोच को संस्थागत रूप दिया। उन्होंने ग्वालियर और बड़ौदा जैसे केंद्रों में भी व्यवस्थित संगीत शिक्षा के विकास में योगदान दिया। उनकी दृष्टि में विद्यार्थियों को केवल राग गाना नहीं चाहिए, उसे यह भी समझना चाहिए कि राग की संरचना क्या है, ताल क्या है, स्वर का संबंध क्या है, रचना की प्रकृति क्या है, परंपरा का इतिहास क्या है और सबसे महत्वपूर्ण, जो वह गा रहा है उसके पीछे का ज्ञान क्या है। यही वह दृष्टि थी जिसने संगीत शिक्षा को एक नए आयाम तक पहुंचाया।
1: भातखंडे का एक और महत्वपूर्ण योगदान था संगीत के अलग अलग प्रवाहों के बीच संवाद। भारत में हिंदुस्तानी और कर्नाटक दोनों महान शास्त्रीय संगीत परंपराएं हैं। दोनों की अपनी भाषा है, अपनी संरचना है, अपनी परंपराएं हैं और अपना सौंदर्य है।
0: भातखंडे जी ने इन परंपराओं को एक दूसरे से समझने और संवाद करने की दिशा में भी प्रयास किए। उन्होंने संगीत सम्मेलनों की परंपरा को बढ़ावा दिया, जिससे अलग अलग क्षेत्रों और संगीत प्रणालियों के कलाकारों को संवाद का अवसर मिला। ये विचार आज के समय में और भी महत्वपूर्ण लगता है,
1: क्योंकि किसी कला को मजबूत बनाने का एक रास्ता ये नहीं है कि वो स्वयं को बंद कर ले, बल्कि ये है कि वो अपनी पहचान को बनाए रखते हुए दूसरे अनुभवों से संवाद करे। भातखंडे की दृष्टि में शोध का अर्थ केवल पुराने ग्रंथ पढ़ना नहीं था, शोध का अर्थ था सुनना, प्रश्न करना, तुलना करना, यात्रा करना, कलाकारों से मिलना, परंपराओं को समझना और फिर निष्कर्ष निकालना। इस दृष्टि से वे अपने समय से आगे दिखाई देते हैं।
0: आज हम जिस शब्द का बहुत इस्तेमाल करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन यानी दस्तावेजीकरण, भारत खंडे जी ने उस काम को एक सदी से भी पहले गंभीरता से किया। आज हमारे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग है, वीडियो है, डिजिटल आर्काइव है, क्लाउड स्टोरेज है।
1: लेकिन उस समय कागज, कलम और कान और उनका असाधारण धैर्य ही उनके सबसे बड़े साधन थे। उन्होंने संगीत को सुनकर लिखा, लिखकर व्यवस्थित किया, व्यवस्थित करके प्रकाशित किया और प्रकाशित करके विद्यार्थियों तक पहुंचाया। ये यात्रा भातखंडे जी की सबसे बड़ी विरासतों में से एक है।
0: उनकी निजी जिंदगी में भी ऐसे क्षण आए जिन्होंने उनके जीवन की दिशा बदल दी। सन 1900 में उनकी पत्नी का निधन हुआ और 1903 में उनकी बेटी भी नहीं रही। इन निजी आघातों के बाद उन्होंने अपने जीवन को लगभग पूरी तरह संगीत अध्ययन और संगीत सेवा के लिए समर्पित कर दिया। कभी कभी जीवन के सबसे बड़े दुख मनुष्य को उस काम की ओर धकेल देते हैं जिसे वह भीतर से अपना मानता है।
1: अब वो समय आ गया था जब भातखंडे जी के लिए स्वयं के लिए संगीत से इतर कोई दृष्टि नजर नहीं आ रही थी। संगीत और सिर्फ संगीत जीवन का उद्देश्य बन गया और इसके बाद उनके जीवन का बड़ा हिस्सा यात्रा, अध्ययन, लेखन और संगीत के पुनर्गठन में बीता। उन्होंने अनेक बंदिशें एकत्र की, अलग अलग घरानों की परंपराओं को समझा, पुराने ग्रंथों का अध्ययन किया। तब एक नई चुनौती उनको महसूस हुई।
0: अलग अलग घरानों में एक ही राग के रूप, बंदिश और प्रस्तुति में भी अंतर मिल सकता था। भातखंडे जी को इन विविधताओं के बीच से संगीत का एक व्यवस्थित व्याकरण निकालना था। ये किसी एक दिन का काम नहीं था, ये दशकों की साधना थी और यही कारण है कि उनके योगदान को केवल 10 थाट देने वाले व्यक्ति के रूप में देखना उनके काम को छोटा कर देना होगा।
1: थाट उनकी विरासत का केवल एक हिस्सा है, उनकी असली विरासत है एक विशाल, जीवंत और विविध संगीत परंपरा को व्यवस्थित ढंग से समझने का प्रयास। उनकी असली विरासत है स्वर लिपि, उनकी असली विरासत है रचनाओं का संकलन, उनकी असली विरासत है संगीत शिक्षा की संस्थागत व्यवस्था, उनकी असली विरासत है संगीत शास्त्र को आधुनिक अध्ययन की भाषा देना।
0: और उनकी सबसे बड़ी विरासत शायद यह है कि उन्होंने हमें सिखाया कि किसी परंपरा से प्रेम करना केवल उसकी प्रशंसा करना नहीं है, उसे सहेज कर पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करने के लिए अथक प्रयास भी जरूरी है।
1: हम अक्सर इतिहास को महान कलाकारों के नाम से याद करते हैं, तानसेन का नाम लेते हैं, उस्ताद बड़े गुलाम अली खां को याद करते हैं, पंडित भीमसेन जोशी को याद करते हैं, पंडित रविशंकर को याद करते हैं, लता मंगेशकर, कुमार गंधर्व, उस्ताद अमीर खां, ऐसे असंख्य कलाकारों की आवाजें हमारी सांस्कृतिक स्मृति का हिस्सा हैं।
0: लेकिन कलाकारों की उपलब्धियों के पीछे एक पूरी ज्ञान परंपरा भी होती है, उसे लिखने वाले लोग होते हैं, उसे संकलित करने वाले लोग होते हैं, उसे पढ़ाने वाले लोग होते हैं, उसे संस्थागत रूप देने वाले लोग होते हैं।
1: पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी उसी परंपरा के महान व्यक्तित्व थे। वे मंच पर खड़े होकर अपने नाम की लोकप्रियता के पीछे नहीं भागे, उन्होंने उस संगीत की नींव मजबूत करने का काम किया जिसे आने वाली पीढ़ियां मंच पर प्रस्तुत करेंगी। इसीलिए उन्हें संगीत का वास्तुकार कहना असंगत नहीं होगा।
0: एक वास्तुकार स्वयं हमेशा उस भवन के भीतर दिखाई नहीं देता, लेकिन भवन की संरचना उसके विचारों को व्यक्त करती है। भातखंडे जी भी कुछ ऐसे ही थे।
1: आज यदि संगीत का विद्यार्थी रागों को एक व्यवस्थित प्रणाली में पढ़ता है तो उसमें भातखंडे की छाप है। यदि विद्यार्थी बंदिश को स्वर लिपि में पढ़कर अभ्यास करता है तो उसमें भातखंडे की छाप है। यदि संगीत के पाठ्यक्रम में सिद्धांत और व्यवहार दोनों साथ पढ़ाए जाते हैं तो उसमें भातखंडे की दृष्टि दिखाई देती है।
0: यदि संगीत के पुराने ज्ञान को पुस्तकों में सुरक्षित देखकर हम आज उसका अध्ययन कर पा रहे हैं तो उसमें भातखंडे की तपस्या का अंश है, और शायद इसी कारण उनके योगदान को समझना आज भी जरूरी है। क्योंकि हम जिस डिजिटल युग में जी रहे हैं उसमें सूचना को सुरक्षित करना पहले से आसान है, लेकिन ज्ञान को सही रूप में सुरक्षित करना अभी भी उतना ही कठिन है। एक वीडियो बना लेना दस्तावेजीकरण नहीं है, एक ऑडियो रिकॉर्ड कर लेना भी पर्याप्त नहीं है।
1: दस्तावेजीकरण का अर्थ है संदर्भ को समझना, कलाकार को समझना, परंपरा को समझना, उसके स्रोत को दर्ज करना, उसकी विविधताओं को सुरक्षित रखना और उसे ऐसी व्यवस्था में रखना कि भविष्य का विद्यार्थी उसे समझ सके। भातखंडे जी का काम हमें इस गंभीर दस्तावेजीकरण की प्रेरणा देता है।
0: अगर आप संगीत के विद्यार्थी नहीं हैं, सिर्फ शौकिया तौर पर भी जब आप भातखंडे जी की लिखी संगीत की किताबें पढ़ते हैं तो आप संगीत को समझने में मुश्किलों का सामना नहीं करते। बस यही समझ आती है भातखंडे जी की अथक लगन और मेहनत।
1: क्या केवल ये कह देना पर्याप्त है कि हमारी संस्कृति महान है? नहीं, महान संस्कृति को महान बनाए रखने के लिए मेहनत भी करनी पड़ती है। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी ने यही किया।
0: उनकी कहानी हमें एक और बात सिखाती है, कला केवल कलाकार की नहीं होती, कला के पीछे समाज होता है, गुरु होते हैं, शिष्य होते हैं, शोधकर्ता होते हैं, और वे लोग भी होते हैं जो चुपचाप अपना पूरा जीवन इस बात में लगा देते हैं कि कला का ज्ञान नष्ट ना हो। भातखंडे जी ऐसे ही व्यक्ति थे।
1: उनका जीवन हमें ये बताता है कि किसी विरासत को बचाने के लिए केवल भावुक होना पर्याप्त नहीं, उसके लिए अनुशासन चाहिए, अध्ययन चाहिए, जिज्ञासा चाहिए और सबसे बढ़कर धैर्य चाहिए।
0: यही कारण है कि उनका नाम भारतीय संगीत के इतिहास में एक ऐसे मोड़ के रूप में दिखाई देता है जहां परंपरा ने आधुनिक शैक्षणिक संरचना से संवाद शुरू किया। हमें उस विचार को भी याद करना चाहिए जो उनके जीवन के केंद्र में था, ज्ञान को सुरक्षित करना, परंपरा को समझना और उसे सबके लिए उपलब्ध कराना। क्योंकि संगीत केवल सुनने की चीज नहीं है, संगीत एक ज्ञान परंपरा है, संगीत स्मृति है, संगीत इतिहास है, संगीत अनुभव है, संगीत साधना है। और जब कोई व्यक्ति इस पूरी परंपरा को आने वाली पीढ़ियों के लिए व्यवस्थित करके छोड़ जाता है तो वह केवल अपने समय की सेवा नहीं करता, वह भविष्य की सेवा करता है।
1: पंडित विष्णु नारायण भातखंडे ने भविष्य की सेवा की। एक वकील से संगीत शास्त्री बनने की उनकी यात्रा केवल पेशा बदलने की कहानी नहीं है, ये उस आंतरिक पुकार की कहानी है जिसे उन्होंने पहचाना।
0: इसलिए जब अगली बार किसी राग की चर्चा हो, जब कोई विद्यार्थी सारे गामा लिखकर किसी बंदिश को सीखने का प्रयास करे, कोई बच्चा छोटा ख्याल गुनगुनाए या कोई संगीतज्ञ बड़ी तान लगाए, तब मन ही मन पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी को प्रणाम जरूर करिएगा।

0: इसी विचार के साथ कला कल्लोलिनी का आज का ये अंक यही समाप्त होता है।
1: कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना है अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम और लेखक है मनीषा चतुर्वेदी, और मैं हूं आपके साथ आपका ध्वनि मित्र रत्नेश सोनी,
0: और मैं हूं वर्षा सिंह। लेते हैं इजाजत, सुनते रहिए 90.8 रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: नमस्ते भोपाल, मैं हूं कैलाश खेर और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।
1: स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: डेट्रॉइट से विदा लेकर स्वामी जी पहले नॉर्दम्पटन पहुंचे। वहां उनका भव्य स्वागत हुआ। नॉर्दम्पटन डेली हेरॉल्ड नामक एक अखबार में 13 अप्रैल को संवाद प्रकाशित हुआ।
1: समाज की एक प्रतिष्ठित महिला ने विवेकानंद के लिए घरेलू सभा की व्यवस्था की थी। उन्होंने अपने सभी मेहमानों को सूचित कर रखा था कि दर्शन, विज्ञान अथवा धर्म के अपने सर्वाधिक दुरूह प्रश्न हिंदू सन्यासी के समक्ष रखें। वे आए, पूछा, उत्तर पाया और ये कहते हुए लौटे, इस सत्य का आधा भी पहले कभी नहीं कहा गया था।
2: 14 अप्रैल को स्वामी जी ने नॉर्दम्पटन नगर की जनता के लिए तथा अगले दिन वहां के स्मिथ कॉलेज में व्याख्यान दिए। स्वामी जी की नॉर्दम्पटन में उपस्थिति के संबंध में स्मिथ कॉलेज की तत्कालीन छात्रा श्रीमती मार्था ब्राउन फिंके की सन 1936 में लिखित स्मृति कथा में ये विवरण मिलता है।
3: 1875 ईस्वी में सोफिया स्मिथ ने महिलाओं की उच्च शिक्षा के हेतु स्मिथ कॉलेज की स्थापना की। 1893 में जब मैंने एक 18 वर्ष की अपरिपक्व बालिका के रूप में इस कॉलेज में प्रवेश लिया, उस समय मैं कोई अनुशासन नहीं मानती थी, परंतु मनोजगत तथा आत्मिक जगत में सत्य लाभ के लिए अतीव उत्सुक थी। कॉलेज के छात्रावास में सबके लिए पर्याप्त स्थान न हो पाने के कारण मैं और भी 3 छात्राओं के साथ परिसर के बाहर स्थित एक वर्गाकार बादामी रंग के मकान में निवास करती थी। अप्रैल की बुलेटिन में छपा कि स्वामी विवेकानंद वहां 2 शाम व्याख्यान देंगे। हम लोग केवल इतना ही जानती थी कि वे एक हिंदू सन्यासी हैं और कुछ भी नहीं, क्योंकि हाल ही के धर्म सभा में हुई उनकी ख्याति हमारे पास नहीं पहुंची थी। ये भी सुना कि वे हमारे ही मकान में ठहरेंगे, हमारे ही साथ भोजन करेंगे और हम उनसे जो चाहे प्रश्न कर सकेंगे। हमारी गृह स्वामिनी की उदारता का परिचय इसी तथ्य से मिल जाता है कि उन्होंने एक ऐसे अश्वेत व्यक्ति का अपने घर में स्वागत किया जिसे निश्चय ही किसी होटल में स्थान नहीं मिला। नियत दिन आ पहुंचा, छोटा सा अतिथि कक्ष तैयार था और एक महामहिम व्यक्तित्व ने हमारे भवन में प्रवेश किया। उन्होंने काले रंग का प्रिंस अल्बर्ट कोट तथा काले रंग का ही पतलून पहन रखा था। उनके सुगठित मस्तक पर जटिल घुमावों के साथ पीली पगड़ी बंधी हुई थी, परंतु उनका चेहरा, ज्योति से परिपूर्ण आंखें और उनसे निस्तृत होती शक्ति वर्णातीत थी। हम तो भौचक्के और मौन रह गए, परंतु हमारी गृह स्वामिनी सहज ही अभिभूत होने वाली न थी और उन्होंने स्वामी जी के साथ जोरदार चर्चा की। उस संध्या के व्याख्यान के विषय में मुझे कुछ स्मरण नहीं, परंतु उसके बाद होने वाली विचार गोष्ठी के बारे में मुझे याद है। उस समय कॉलेज के अध्यक्ष, दर्शन विभाग के प्रमुख, कई प्राध्यापक, नॉर्दम्पटन के चर्चों के कुछ पादरी तथा एक सुविख्यात लेखक हमारे मकान में पधारे थे।
2: मार्था ब्राउन का संस्मरण सुनने में एक रोचक कहानी जैसी लगती है। उनका लिखने का ढंग भी बड़ा सुंदर था। उन्होंने आगे और लिखा है,
3: उस दिन परिचर्चा का विषय था ईसाई धर्म और क्या वही एकमात्र सच्चा धर्म है। स्वामी जी ने यह विषय चुना हो ऐसी बात नहीं थी। अपने शास्त्रों में पारंगत इन लोगों के समक्ष सुदूर भारत से आए हिंदू के टिक पाने की आशा भला कौन कर सकता था, परंतु इसका जो अद्भुत परिणाम निकला वो पूर्णतः मेरी निजी धारणा होने पर भी उसकी प्रचंडता के बारे में मैं अतिशयोक्ति नहीं कर रही हूँ। बाइबल से उद्धरण के प्रत्युत्तर में स्वामी जी ने उसी ग्रंथ से और भी युक्तियुक्त उदाहरण दिए। अपने पक्ष के समर्थन में उन्होंने अंग्रेज दार्शनिकों तथा धर्म विषयक लेखकों के उदाहरण दिए। वहां तक कि कवियों को भी वे भलीभांति जानते थे और उन्होंने वर्ड्सवर्थ तथा थॉमस ग्रे की कविताओं के भी उदाहरण दिए। मेरे अपने ही जगत के लोगों के प्रति मेरी सहानुभूति क्यों नहीं हुई? स्वामी जी ने जब धर्म के क्षेत्र का विस्तार करते हुए संपूर्ण मानव जाति को उसमें समेट लिया, तब उस कमरे में स्वाधीनता की जो मुक्ति वायु प्रवाहित हुई, मैं क्यों उसमें आह्लादित हो उठी कह नहीं सकती। केवल इतना ही जानती हूँ कि उनकी विजय पर मुझे गर्व का अनुभव हुआ था। बैलूट मठ के एक सन्यासी ने कहा था कि उनकी दृष्टि में स्वामी जी प्रेम की प्रतिमूर्ति हैं। उस रात मुझे वे शक्ति की प्रतिमूर्ति लगे थे। निसंदेह हमारे कॉलेज जगत की ये महान हस्तियां संकीर्ण मन की थीं। उनकी निष्ठा के द्वार बंद हो चुके थे। वे भला यह बात कैसे स्वीकार कर पाते, जो कोई जिस रूप में मेरी उपासना करता है उसे मैं उसी रूप में प्राप्त होता हूँ। उन लोगों को प्रेम की भाषा मान्य नहीं थी, परंतु असहमति के बावजूद वे शक्ति के सामने लाते

0: प्रतिबाद मैं जगत के समस्त प्राणियों के कल्याण हेतु प्रार्थना करता हूँ। ये बात मेरे हृदय में दृढ़ता पूर्वक अंकित हो गई। मैं भी हर सुबह प्रार्थना करती थी, पर पहले अपने लिए और तदुपरांत अपने परिवार के लिए। परंतु संपूर्ण मानव जाति को अपना परिवार मानकर अपने पहले उन्हीं को रखने की बात कभी मेरे ध्यान में नहीं आई थी।
1: मार्था ब्राउन ने और भी लिखा था,
0: व्यक्ति का अपने घर में स्वागत किया जिसे निश्चय ही किसी होटल में स्थान नहीं मिला। नियत दिन आ पहुंचा, छोटा सा अतिथि कक्ष तैयार था और एक महामहिम व्यक्तित्व ने हमारे भवन में प्रवेश किया। उन्होंने काले रंग का प्रिंस अल्बर्ट कोट तथा काले रंग का ही पतलून पहन रखा था। उनके सुगठित मस्तक पर जटिल घुमावों के साथ पीली पगड़ी बंधी हुई थी, परंतु उनका चेहरा ज्योति से परिपूर्ण आंखें और उनसे निस्तृत होती शक्ति वर्णातीत थी। हम तो भौचक्के और मौन रह गए, परंतु हमारी गृह स्वामिनी सहज ही अभिभूत होने वाली न थी और उन्होंने स्वामी जी के साथ जोरदार चर्चा की। उस संध्या के व्याख्यान के विषय में मुझे कुछ स्मरण नहीं, परंतु उसके बाद होने वाली विचार गोष्ठी के बारे में मुझे याद है। उस समय कॉलेज के अध्यक्ष, दर्शन विभाग के प्रमुख, कई प्राध्यापक, नॉर्दम्पटन के चर्चों के कुछ पादरी तथा एक सुविख्यात लेखक हमारे मकान में पधारे थे।
1: मार्था ब्राउन का संस्मरण सुनने में एक रोचक कहानी जैसी लगती है। उनका लिखने का ढंग भी बड़ा सुंदर था। उन्होंने आगे और लिखा है,
0: उस दिन परिचर्चा का विषय था ईसाई धर्म और क्या वही एकमात्र सच्चा धर्म है। स्वामी जी ने यह विषय चुना हो ऐसी बात नहीं थी। अपने शास्त्रों में पारंगत इन लोगों के समक्ष सुदूर भारत से आए हिंदू के टिकपाने की आशा भला कौन कर सकता था। परंतु इसका जो अद्भुत परिणाम निकला वो पूर्णतः मेरी निजी धारणा होने पर भी उसकी प्रचंडता के बारे में मैं अतिशयोक्ति नहीं कर रही हूँ। बाइबल से उद्धरण के प्रत्युत्तर में स्वामी जी ने उसी ग्रंथ से और भी युक्तियुक्त उदाहरण दिए। अपने पक्ष के समर्थन में उन्होंने अंग्रेज दार्शनिकों तथा धर्म विषयक लेखकों के उदाहरण दिए। वहां तक कि कवियों को भी वे भलीभांति जानते थे और उन्होंने वर्ड्सवर्थ तथा थॉमस ग्रे की कविताओं के भी उदाहरण दिए। मेरे अपने ही जगत के लोगों के प्रति मेरी सहानुभूति क्यों नहीं हुई? स्वामी जी ने जब धर्म के क्षेत्र का विस्तार करते हुए संपूर्ण मानव जाति को उसमें समेट लिया, तब उस कमरे में स्वाधीनता की जो मुक्ति वायु प्रवाहित हुई, मैं क्यों उसमें आह्लादित हो उठी कह नहीं सकती। केवल इतना ही जानती हूँ कि उनकी विजय पर मुझे गर्व का अनुभव हुआ था। बैलूट मठ के एक सन्यासी ने कहा था कि उनकी दृष्टि में स्वामी जी प्रेम की प्रतिमूर्ति हैं। उस रात मुझे वे शक्ति की प्रतिमूर्ति लगे थे। निसंदेह हमारे कॉलेज जगत की ये महान हस्तियां संकीर्ण मन की थी। उनकी निष्ठा के द्वार बंद हो चुके थे। वे भला यह बात कैसे स्वीकार कर पाते, जो कोई जिस रूप में मेरी उपासना करता है उसे मैं उसी रूप में प्राप्त होता हूँ। उन लोगों को प्रेम की भाषा मान्य नहीं थी, परंतु असहमति के बावजूद वे शक्ति के सामने लाचार थे। आखिरकार उन्होंने पराजय स्वीकार कर ली।
2: मार्था ने छोटी छोटी बातों को भी ध्यान रखा था और उसे अपने संस्मरण में शामिल किया था। स्वामी जी के प्रति वे सचमुच आकर्षित हुई थी। उन्हें और भी बातें याद थी। उन्होंने लिखा था,
0: अगले दिन प्रातः काल स्नानागार में पानी गिरने की जोर की आवाज के साथ साथ एक अज्ञात भाषा में उच्चरित गंभीर सुर कानों में पड़े। हम सभी दरवाजे से कान लगाकर सुनने लगे। जलपान के समय उस मंत्र पाठ के बारे में पूछने पर उन्होंने बताया, जल को पहले मैं मस्तक से और फिर सीने में स्पर्श करता हूँ और प्रतिबाद मैं जगत के समस्त प्राणियों के कल्याण हेतु प्रार्थना करता हूँ। ये बात मेरे हृदय में दृढ़ता पूर्वक अंकित हो गई। मैं भी हर सुबह प्रार्थना करती थी, पर पहले अपने लिए और तदुपरांत अपने परिवार के लिए। परंतु संपूर्ण मानव जाति को अपना परिवार मानकर अपने पहले उन्हीं को रखने की बात कभी मेरे ध्यान में नहीं आई थी।
1: मार्था ब्राउन ने और भी लिखा था कि जलपान के बाद स्वामी जी ने थोड़ा टहलने की इच्छा व्यक्त की। तब हम उनके दोनों ओर दो दो करके चार छात्राएं उस गरिमामय व्यक्तित्व के साथ सड़कों पर चलने लगी। चलते चलते हमने संकोच पूर्वक कोई विषय छेड़ने का प्रयास किया और उन्होंने अपनी धवल दंत पंक्तियों से मुस्कान बिखेरते हुए तुरंत उत्तर दिया। मुझे केवल एक बात याद है, ईसाई मतवाद के प्रसंग में उन्होंने कहा कि सर्वदा ईसा मसीह के रक्त का उल्लेख उन्हें बड़ा विभत्स प्रतीत होता है। इससे मुझे चिंतन का विषय मिल गया। रक्त से भरा हुआ एक पात्र है जो इमैनुअल की शिराओं से निकाला गया है। इस स्रोत से मैं सदा ही घृणा करती थी, परंतु उनका दुस्साहस देखिए कि वे चर्च द्वारा स्वीकृत एक सिद्धांत की समालोचना कर रहे थे। इस स्वतंत्रता प्रिय आत्मा के द्वारा जागृति आने के बाद निश्चित रूप से मेरे मुक्त चिंतन की शुरुआत हुई।
2: मार्था ने दीर्घकाल तक स्वामी जी को याद रखा था और उन्हीं के आकर्षण से भारत भ्रमण करने भी आई थी। स्वामी जी द्वारा प्रचारित जीव रूपी ब्रह्म तत्व ने उन्हें जीवन के दुखों के बीच भी शांति प्रदान की थी।
1: नॉर्दम्पटन के सिटी हॉल में 14 अप्रैल की शाम को स्वामी जी का व्याख्यान हुआ। उसमें स्वामी जी ने बताया कि भाषा, वर्ण एवं रीति रिवाजों में पार्थक्य के बावजूद जगत की प्रमुख जातियां मूलतः एक है। नॉर्दम्पटन डेली हेराल्ड ने दूसरे दिन छापा,
3: जबकि हम अपनी जाति की आयु सैकड़े में गिनते हैं, तब वे अपनी आयु की गणना हजारों वर्षों में करते हैं। उसी भारत के मानसिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक संस्कृति के सर्वोत्तम विभूति के आलोक पुंज को देखने की जिसे परवाह हो, उस प्रत्येक बुद्धिमान एवं विचारशील अमेरिकन को चाहिए कि वे स्वामी विवेकानंद को देखने और सुनने का अवसर हाथ से न जाने दें। वे प्रत्येक अमेरिकी के लिए अध्ययन के एक सुयोग्य पात्र हैं।

0: नॉर्दम्पटन से स्वामी जी मैसाचुसेट्स प्रांत के लीन नगर में जाकर श्रीमती फ्रांसिस डब्ल्यू ब्रीड के घर पर अतिथि हुए। लीन नगर चमड़े के कारखाने के लिए प्रसिद्ध था और श्री ब्रीड का अपना निजी कारखाना था। वे बड़े धनी थे। स्वामी जी ने वहां दो व्याख्यान दिए, एक नॉर्थ शोर क्लब में और दूसरा ऑक्सफोर्ड हॉल में हुआ था। बोस्टन में भी श्री ब्रीड का मकान था। स्वामी जी वहां भी कुछ दिन ठहरे। लीन से बोस्टन की दूरी मात्र 10 मील है।
1: कुमारी इजाबेल मैककिंडले को लिखित स्वामी जी के एक पत्र से इस काल की थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है।
2: बोस्टन में श्रीमती ब्रीड के यहाँ मेरा समय बड़ा अच्छा बीता। प्राध्यापक राइट के साथ भी मुलाकात हुई। मैं पुनः बोस्टन जा रहा हूँ। दर्जी मेरा नया गाउन बना रहे हैं। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में मेरा व्याख्यान होगा और वहां मैं प्राध्यापक राइट का मेहमान रहूंगा। बोस्टन के समाचार पत्र मेरे स्वागत में काफी कुछ लिख रहे हैं। इन सब वाहियात कामों से मैं थक गया हूं। मई के अंत में शिकागो जाऊंगा। वहां कुछ दिन बिताने के बाद मैं फिर पूर्व की ओर लौटूंगा। पिछली रात मैंने वॉल्डोर्फ होटल में व्याख्यान दिया। श्रीमती स्मिथ ने $2 की दर से टिकट बेचे। यद्यपि हॉल छोटा था पर श्रोताओं से भर गया था। लीन में मुझे $100 प्राप्त हुए, परंतु उन्हें भेज नहीं रहा हूं क्योंकि मुझे नया गाउन तथा अन्य ऊट पटांग चीजें लेनी है। बोस्टन में मुझे धन मिलने की आशा नहीं है, तो भी मुझे अमेरिका के लोगों के माथे को छूने तथा उसे हिलाने डुलाने का प्रयास तो करना ही होगा।
0: स्वामी जी 24 अप्रैल से 6 मई तक न्यूयॉर्क में रहे और वहां अनेक व्याख्यान दिए। इजाबेल को उन्होंने 2 मई को पत्र लिखा। उसमें उनकी गतिविधियों का, कार्य प्रणाली का तथा मानसिक अवस्था के बारे में कुछ बातों का पता चलता है।
2: उस दिन वॉल्डोर्फ के व्याख्यान से मुझे $70 प्राप्त हुए। कल के भाषण से कुछ और भी मिलने की आशा है। 7 से 19 तारीख तक बोस्टन में कार्यक्रम है, पर वहां से काफी कम पैसे मिलने की उम्मीद है। कल मैंने $13 का एक पाइप खरीदा है। कृपया फादर पोप श्री हेल के सामने इसका जिक्र न करना। कोट के लिए $30 लगेंगे। समय बहुत अच्छा बीत रहा है, सिर्फ उस लेक्चरबाजी को छोड़कर। हार्वर्ड में 3-3 व्याख्यान आयोजित किए गए हैं। यहां पर भी वे लोग कुछ कर रहे हैं, अतः शिकागो जाते समय एक बार पुनः न्यूयॉर्क आऊंगा और कुछ कड़ी बातें सुनाकर डॉलर हथियाने के बाद शिकागो उड़ जाऊंगा। न्यूयॉर्क या बोस्टन से यदि तुम्हें कुछ मंगाना हो जो शिकागो में ना मिलता हो तो शीघ्र लिखना। इस समय मेरे पास ढेर सारे डॉलर हैं। तुम जो भी चाहोगी क्षण भर में भेज दूंगा। ऐसा ना सोचना कि इसमें कुछ अशोभनीय होगा। मेरे साथ कोई धोखाधड़ी नहीं। मैं यदि भाई हूं तो भाई हूं। मैं दुनिया में यदि किसी चीज से नफरत करता हूं तो पाखंड से।
0: न्यूयॉर्क में उनका दूसरा व्याख्यान हुआ श्रीमती मैरी फिलिप्स के घर पर। वे पहले व्याख्यान में उपस्थित थीं तथा बाद में स्वामी जी की घनिष्ठ भक्त बन गई थीं। स्वामी जी उनके घर भी ठहरे थे। न्यूयॉर्क में अनेक गणमान्य लोगों से उनका परिचय हुआ, जैसे डॉक्टर गर्नसी तथा उनकी पत्नी लियो लैंडर्सवर्ग, जो लेखक और पत्रकार थे और बाद में स्वामी जी से दीक्षा तथा संन्यास लेकर कृपानंद के नाम से परिचित हुए। सुप्रसिद्ध गायिका एम्मा थर्सबी से भी पहचान हुई। एक अन्य मित्र थे लीमैन एबॉट, जो विख्यात पादरी, ब्रुकलिन चर्च के प्रमुख व सुप्रसिद्ध व प्रभावशाली आउटलुक पत्रिका के प्रधान संपादक थे। स्वामी जी के न्यूयॉर्क निवास का विवरण श्रीमती कॉन्स्टेंस, जो विवाह के पूर्व मिस गिबन्स थीं, की एक स्मृति कथा में प्राप्त होता है। उन्होंने 28 अप्रैल को डॉक्टर गर्नसी के घर पर स्वामी जी को देखा था। उन्होंने लिखा है,
3: मैं जब उनसे मिली उस समय उनकी आयु 27 वर्ष थी। वे प्राचीन ग्रीक देव मूर्ति के समान सुंदर प्रतीत हुए, पर हाँ, उनका रंग सांवला था और उनकी बड़ी बड़ी आंखें मध्यरात्रि के नक्षत्र खचित आकाश की याद दिलाती थी। उनका सिर छोटे छोटे घुंघराले बालों से परिपूर्ण था। उस समय वे प्रसिद्ध डॉक्टर गर्नसी के घर पर अतिथि थे। डॉक्टर गर्नसी एक उदार साहित्य सेवी तथा सच्चे अतिथि परायण व्यक्ति थे। उनका विशाल और सुंदर मकान 5वें एवेन्यू के 44 नंबर स्ट्रीट पर था। डॉक्टर गर्नसी ने एक दिन अपराह्न में डिनर का आयोजन किया था। ऐसा निश्चित हुआ था उनमें प्रत्येक अतिथि एक धर्म के प्रवक्ता होंगे और उस समय इंगरसोल के नगर से अनुपस्थित रहने के कारण डॉक्टर स्वयं ही उनका प्रतिनिधित्व करेंगे। मैं कैथोलिक थी, इस कारण मुझे उस स्मरणीय रात्रि भोज में उपस्थित होने का सौभाग्य मिला था। डॉक्टर गर्नसी हमारे चिकित्सक थे, इसीलिए कैथोलिक मत का प्रतिनिधित्व करने के लिए उन्होंने मुझे बुला भेजा था। उस भोज में डॉक्टर पाघस तथा अमेरिका की सुप्रसिद्ध अभिनेत्री मिनी मैडन फिस्के भी आई थी। मुझे स्मरण है कि कुल मिलाकर 14 अतिथि वहां उपस्थित थे। आपस में अवश्य एक मौन समझौता हुआ था कि सभी एक दूसरे के तथा स्वामी जी के तथा कथित गैर ईसाई मतवाद के प्रति भद्र आचरण करेंगे। परंतु खेद की बात है कि जो जो भोज अग्रसर हुआ त्यों त्यों सर्वाधिक उत्तेजनापूर्ण चर्चा होने लगी। स्वामी जी के साथ नहीं बल्कि बाइबिल पर ही आधारित विभिन्न संप्रदायों के बीच मेरी कुर्सी स्वामी जी के बगल में ही थी। हम दोनों मजे के साथ चुपचाप इस हास्यास्पद सांप्रदायिक असहिष्णुता को देखते रहे। स्वामी जी बीच बीच में संक्षिप्त व्याख्यान के सहारे ऊपरी तौर पर अपने देश तथा वहां के लोगों के रीति रिवाज समझाने का प्रयास करते, पर उनका असल उद्देश्य होता दर्शन तथा धर्म के किसी विषय में अपने मत की श्रेष्ठता प्रमाणित करना। इस भोज के समय ही हमारी मित्रता का सूत्रपात हुआ। बाद में बैठक खाने में उन्होंने मुझसे कहा, मिस गिबन्स, आपके तथा मेरे दार्शनिक मत एक ही हैं। हमारी धार्मिक आस्था की मूल बातें भी समान हैं। घर लौटकर मैंने अपनी माँ से स्वामी जी की बातें कही और माँ ने कहा,
4: क्या ही भयंकर सभा थी वो, जिसमें मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट और प्रेसबिटेरियन सभी थे, और वो भी था साथ में नारंगी रंग के कपड़े पहने कृष्ण वर्ण विधर्मी।
3: परंतु माँ ने क्रमशः विवेकानंद को पसंद करना तथा उनके विचारों के प्रति सम्मान दिखाना सीख लिया था। यहाँ तक कि बाद में वे एक वेदांत केंद्र की सदस्य भी बनी थी। स्वामी जी के लिए मेरी माँ थी बड़ी मजेदार, और इतने वर्षों बाद आज भी मेरे नेत्रों के सामने तैरने लगता है वो दृश्य जिसमें अपने बारे में माँ की टिप्पणियां सुनकर वे हंसते हंसते बेहाल हो जाते थे।
1: सन 1894 ईस्वी के वसंत काल का मौसम। एक रात कुमारी गिबन्स ने स्वामी जी को मेट्रोपॉलिटन ओपेरा में फाउस्ट नाटक देखने का आमंत्रण दिया। स्वामी जी ने पहले कभी ओपेरा नाटक नहीं देखा था। गिबन्स की मां ने आपत्ति की,
5: आप तो काले हैं, आपको हमारे साथ देखकर दुनिया के लोग क्या कहेंगे?
2: मैं तो अपनी बहन के पास बैठूंगा, मैं जानता हूँ वो बुरा नहीं मानेगी।
0: माँ चुप हो गई। ओपेरा गृह में उस दिन स्वामी जी बहुत सुंदर दिख रहे थे। मिस गिबन्स ने लिखा है,
3: आसपास जितने भी लोग बैठे थे वे मुग्ध होकर उन्हें देख रहे थे। उस रात शायद उन लोगों ने ओपेरा सुना तक नहीं। मैंने उन्हें फाउस्ट की कहानी समझाना चाही तो माँ कह उठी,
6: हे भगवान, तेरी जैसी युवा लड़की को ऐसी भयानक कहानी एक पुरुष को नहीं सुनानी चाहिए।
2: अगर ये अच्छा नहीं तो आपने इन्हें आने क्यों दिया?
5: वाह, क्यों ना आती, ओपेरा देखने जाना एक सामाजिक प्रथा है। कथा वस्तु खराब है पर उस पर चर्चा करना ठीक नहीं।
3: ओपेरा के वक्त स्वामी जी ने पूछा,
2: अच्छा बहन, वो व्यक्ति जो गाना गाकर उस सुंदर स्त्री के सामने प्रेम जता रहा है, क्या वो सचमुच उससे प्यार करता है?
3: हाँ स्वामी जी।
2: परंतु उस व्यक्ति ने तो महिला के प्रति अन्याय किया है और उसे दुखी बना दिया है।
3: हाँ स्वामी जी।
2: ओह, अब समझा, वो उस स्त्री से प्रेम नहीं करता, वो तो उस लाल धारी वाले वस्त्र पहने पूंछ वाले शैतान के प्रेम में डूबा है ना?
3: इसी बीच हमारे समाज की एक लोकप्रिय युवती इंटरवल के समय हमारे पास आई और माँ से बोली, ये नारंगी वस्त्र पहने सुंदर व्यक्ति कौन है? वो बोली,
6: हमारे मेहमान हैं।
3: क्यों? मेरी माँ उनसे परिचय कराने के लिए उतावली हो रही है। और स्वामी जी फिर हंस पड़े।
0: स्वामी जी के संबंध में कई महत्वपूर्ण व्यक्तियों के संस्मरण हमें प्राप्त हैं, क्योंकि स्वामी जी की स्मृति सर्वदा शाश्वत थी, अविस्मरणीय थी। महिला मूर्तिकार मैरलीना हॉफमैन ने अपने हेड्स एंड टेल्स ग्रंथ में लिखा है,
3: भारत मेरी बालिकाल की एक अति स्पष्ट स्मृति को जगा देता है। वो उद्दीपनामय संध्या मैंने अपने पिता के कृषिदार के यहाँ व्यतीत की थी। वे 38वीं स्ट्रीट पर स्थित एक साधारण से बोर्डिंग हाउस में निवास करते थे। इन प्राचीन पंथी नगरवासियों के साथ सहसा एक नए व्यक्ति का परिचय कराया गया। वे थे प्राच्य दार्शनिक तथा आचार्य स्वामी विवेकानंद। भोजन कक्ष में उनके प्रवेश करते ही सभी नीरव हो गए। उनका सांवला कांसे कासा रंग और उनकी विशाल तहदार पगड़ी एवं अजीब वेशभूषा सहजी दृष्टिगोचर हो रहा था। उनकी काली आँखें शायद ही कभी आसपास के लोगों को देखने के लिए ऊपर उठती थीं, परंतु उनके व्यक्तित्व में शांति एवं शक्ति की एक ऐसी छाप थी जिसने मुझ पर अमिट छाप डाली। वे मुझे भी सच्चे ब्रह्मवेत्ताओं की तरह रहस्यमय तथा आध्यात्मिक प्रतीत हुए। परंतु इसके साथ ही झलक रहा था उनका सभी मानव भाइयों के प्रति सहज कोमल सहानुभूति का भाव। काफ़ी दिनों के बाद 1931 ईस्वी में हम लोग कलकत्ते के बेलूर मठ में उनका संगमरमर का स्मृति मंदिर देखने गए थे। जब मैं उनकी वेदी पर चढ़ाने के लिए जूही की एक माला लेकर गई तो मुझे स्मरण हो आया कि जीवन में जब मैंने एक ही बार इन साधु पुरुष का दर्शन किया था, उस समय बिना कुछ बोले ही उन्होंने भारत का सच्चा अर्थ जितना मुझे समझा दिया था, उतनी जानकारी मुझे भारत के बारे में भारतवासियों से सुने हुए अनेक भाषणों से भी प्राप्त नहीं हुई।
1: न्यूयॉर्क के ही समान बोस्टन में भी स्वामी जी के अनेक मित्र बने। उनमें सबसे प्रमुख थी श्रीमती ओली बुल, जिन्होंने इसके बाद से सर्वदा अनेक प्रकार से स्वामी जी की सहायता की। अपने कैम्ब्रिज के मकान में वे पहली बार स्वामी जी से मिली थी। श्रीमती ओली बुल के बारे में अगली कड़ियों में अनेकों जिक्र आएंगे, क्योंकि स्वामी जी के अमेरिका प्रवास के दिनों में उनका अवदान नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब स्वामी जी के सफरनामे में अगला नगर होगा न्यूयॉर्क। 28 जून प्रातः काल वे न्यूयॉर्क पहुँचे।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार आदाब, मैं हूं पिनाज मसानी और आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद।
2: दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको, दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको।

0: रेडियो आजाद हिंद के सभी सुनने वालों फिनाज मसानी की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आपको बता देते हैं हमारी प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। सुबह 7 बजे सुनिएगा कार्यक्रम जीवन सौरभ। अक्षय निधि कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे 7:10 से। भक्ति गीतों का कार्यक्रम भक्ति संगीत आप सुन सकेंगे 7:20 से। जोरावर सिंह पारहट पर केंद्रित कार्यक्रम वतन का राग सुनिएगा 8 बजे से। इतिहास के पन्नों से कार्यक्रम में आपको सुनवाएंगे रानी दुर्गावती के युद्ध का इतिहास, समय 8:30 से। सुबह 9 बजे सुनेगा कार्यक्रम योग संवाद। पुरुषार्थ की श्रेष्ठता और देववाद की निराकरण, इस विषय पर बातचीत सुनेगा डॉक्टर शशिकांत त्रिपाठी जी से। के शंकर पिल्लई पर केंद्रित कार्यक्रम भारत विभूति सुनेगा 9:30 से। नगर से जुड़ी कुछ खास खबरें सुनेगा परिक्रमा के अंतर्गत 10 बजे। 10:30 पर आपको सुनवाएंगे भारत रत्न राजश्री पुरुषोत्तम मदास टंडन पर केंद्रित कार्यक्रम हिंदुस्तान हमारा। सुरसागर कार्यक्रम में सुनेगा डॉक्टर रश्मि मिश्रा का गायन 11 बजे से। और विवेकानंद जी के आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद सुनेगा 11:30 से। ये थी जानकारी कल की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। रात्रि के 10 बजे हैं। इसी के साथ हमारी आज की सभा अब यहीं संपन्न होती है। कल प्रातःकालीन सभा में हम फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए आपसे अनुमति चाहते हैं। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद।